100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार दिनांक 1 जून सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: पुष्प सा सुगंधित मन, ओस की बूंदों का आचमन, प्रातः काल की सुमधुर बेला,
1: वक्र तुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ,
0: सृष्टिकर्ता की आराधना, भक्ति संगीत की साधना,
2: जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है।
0: पुष्पा

0: अतः काल की सुमधुर बेला।
1: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ,
0: सृष्टिकर्ता की आराधना भक्ति संगीत की साधना।
2: जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है।
0: पुष्पांजलि

सुमंगल प्रभात 100.7 एफएम रेनबो पर मैं अंजु शुक्ला आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। प्रातः के 6:02 का समय 100.7 एफएम रेनबो पर प्रातः की इस पावन बेलामर में आप सभी का स्वागत। जब रात की निस्तब्धता धीरे धीरे विदा लेती है और सूरज की पहली किरण धरती को स्पर्श करती है तब मन अपने आप ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। मित्र, भक्ति कोई शब्द नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। भक्ति वो मौन विश्वास है जो कठिन से कठिन समय में भी हमें संभाले रखता है। जब संसार के सहारे सहारे छूट जाते हैं तब प्रभु का नाम ही तो जीवन की डोर बन जाता है। तो आइए प्रातः काल की ये मंगल बेला अर्पित करें, समर्पित करें अपने इष्ट के चरणों में अपने प्रभु को। अपने मन के सारे विकार, सारी चिंताएं उनके चरणों में अर्पित करें और आरंभ करें भक्ति संगीत की ये पावन यात्रा कार्यक्रम पुष्पांजलि।

मित्र, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समय है। जो पल बीत गया वो फिर लौट कर नहीं आता। धन, वैभव, पद और प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन प्रभु का नाम सदैव हमारे साथ चलता है। इसीलिए जब भी समय मिले, अपने इष्ट को याद करें, उनका ध्यान करें, उनका नाम लें, उनका नाम जप करें। वो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा तो देते ही हैं, हमारा समय उत्तम और अति उत्तम भी बना देते हैं।

सुकून छिपा होता है। आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि 100.7 FM रेनबो पर। समय हुआ है 6:14 और मैं आपके साथ हूं अंजू शुक्ला।

मित्र, प्रार्थना वो शक्ति है जिसे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। आंखों की नमी, मन की पुकार और हृदय की सच्चाई, इन सबको परमपिता परमेश्वर बिना कहे ही समझ लेते हैं। जब संसार सुनना बंद कर दे, तब विश्वास रखिए, ईश्वर उस समय भी सुन रहे होते हैं।

प्रभु का नाम पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ लीजिए। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, जो व्यक्ति विश्वास का हाथ नहीं छोड़ता, उसका साथ ईश्वर भी कभी नहीं छोड़ते। कई बार जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कुछ

कट टल जाते हैं तो कुछ परेशानियां बिना कारण समाप्त हो जाती हैं। शायद यही प्रभु की कृपा होती है जो बिना शोर किए हमारे जीवन में काम करती रहती है। इसलिए हर परिस्थिति में उनके प्रति कृतज्ञ रहना सीखिए, क्योंकि कृपा का सबसे सुंदर रूप धन्यवाद में ही दिखाई देता है। अपने हर पल, हर छोटी बड़ी खुशी, हर सुख के क्षण के लिए ईश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिए। उनका धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें आज ये दिन दिखाया, एक नया दिन, जीवन का एक नया अनुभव। सुनते रहिए पुष्पांजलि।

मित्रों, जब जीवन परीक्षा लेता है तब मन सबसे अधिक अपने प्रभु को याद करता है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो सुख में भी उतनी ही बनी रहे जितनी कि दुख में। क्योंकि ईश्वर केवल संकट में याद करने की कोई वस्तु नहीं, वे तो हर श्वास में बसने वाली अनुभूति हैं। उनकी स्मृति जीवन को संतुलित और शांत बनाती है। जब जब जीवन हार गया मैं, तूने हाथ पकड़ लिया, डूब रही थी नैया मेरी, तूने पार उतार दिया। आंसू बनकर दर्द बह रहा था, तू मरहम बनकर आया, दिल के मंदिर में फिर से तेरा ही नाम मुस्कुराया।

मित्रों, हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है, हर पतझड़ के बाद बहार आती है। इसी तरह कठिन समय के बाद राहत का वक्त भी अवश्य आता है। निराश मत होइए, बस अपने इष्ट पर विश्वास रखिए। जो आज अधूरा लगता है, क्या पता कल वही किसी सुंदर सी शुरुआत का कारण बन जाए।

कभी कभी हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ईश्वर का साथ हर पल हमारे साथ होता है। वे दिखाई नहीं देते लेकिन संभालते जरूर हैं। वे बोलते नहीं लेकिन संकेत अवश्य देते हैं। बस आवश्यकता अनुसार उन्हें महसूस कीजिए। आपके आसपास ही हैं वो। उनके प्रति सदैव अपना विश्वास बनाए रखिए और मानव मात्र की सेवा करिए। यही सच्ची ईश्वर की सेवा है।

मित्रों, भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। न किसी दिखावे की आवश्यकता है, न किसी विशेष पहचान की। बस मन में श्रद्धा हो, हृदय में प्रेम हो और कर्मों में सच्चाई हो। फिर देखिए, हर दिन एक प्रार्थना बन जाता है और आपका जीवन स्वयं ईश्वर को समर्पित एक सुंदर सी यात्रा।

मित्रों, यदि मन निर्मल हो तो हर स्थान मंदिर बन जाता है। ईश्वर केवल ऊंचे शिखरों में नहीं, वे हमारी सोच, व्यवहार और कर्मों में भी बसते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी का दुख बांटना भी तो एक पूजा है। और वास्तव में भक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप है मानवता और करुणा। मानव धर्म की सेवा करते रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। पुष्पांजलि में आज बस इतना ही। आज का दिन और आने वाला समय आप सभी के लिए अत्यंत मंगलमय हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं अंजू शुक्ला अनुमति लेती हूँ इस घंटे से। अगला कार्यक्रम है सदाबहार गीत। बने रहिए हमारे साथ।

सूरज की रोशनी के साथ चढ़ रहा है एक खूबसूरत दिन। नई उम्मीद, नए जोश और ताजगी के साथ आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, शक संवत 1948 यानी 1 जून सन 2026 और वक्त की इन घड़ियों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं आप हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कान

जोश और ताजगी के साथ। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, शक संवत 1948 यानी 1 जून सन 2026 और वक्त की इन घड़ियों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं आप हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ।

102.2 की फ्रीक्वेंसी पर धड़क रहे हैं आपके और हमारे दिल। और दिलों की धड़कनों को तेज करते हैं हमारे प्रोग्राम्स। तो आज कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं आपको दीवाना, चलिए जानते हैं। सुरों की पुरानी महफिल में आज सजेंगे खूबसूरत और मासूम अदाकारा नरगिस के चुनिंदा नगमे, उनकी जन्म जयंती पर सुबह 8:30 पर। हमारे स्मार्टफोन ने हमें स्मार्ट बनाया और रिश्तों को एक नया रूप दिया। जी हाँ, मोबाइल कनेक्शन दिलों का। इस थीम पर बेस्ड हमारा प्रोग्राम रसबहार एंजॉय करेंगे आप सुबह 9:00। फिल्म संगीत का प्रोग्राम चित्रपट से लेकर रहूंगी आपके साथ में 9:45 पर। हर रोज की तरह ठीक 11:00 आप कनेक्ट होंगे अपने पसंदीदा प्रोग्राम हम नवा के साथ, जहां एक खास दिन हम मनाएंगे आपके साथ, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। जहां हमारा आपसे सवाल, क्या इस डिजिटल युग में पेरेंट्स और बच्चों के बीच बातचीत कम हुई है, ये क्यों है? अपने विचार हमसे शेयर कीजिएगा जिन्हें हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में और बहुत सारी बातें भी। और आज जिस प्रोग्राम को लेकर मैं आरजी पूर्णिमा हूँ और मेरे साथ होंगी आरजी कौसर। म्यूजिकल प्रोग्राम म्यूजिक आर आप एंजॉय करेंगे दिन में 3:00। और 3:45 पर हेल्थ मैगजीन में आज सुनिए डॉक्टर शैली अग्रवाल से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत का भाग 2, विषय है किशोरियों का स्वास्थ्य। और बैक टू बैक म्यूजिकल सॉन्ग्स एंजॉय करेंगे आप ठीक 4:00। हमारे ये सारे प्रोग्राम्स पूरा दिन आप एंजॉय करने वाले हैं, एंटरटेन करने वाले हैं, तो रहिएगा कनेक्ट म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी के साथ दिन को खास बनाते और ये प्रोग्राम्स। और फिलहाल इस पल को बना रहे हैं खास हम आप तक गुड मॉर्निंग कानपुर का ये ब्यूटीफुल ट्रैक पहुंचाकर। तो कीजिए ना इस दिन का और हमारे अपनों का शुक्राना कि इस खूबसूरत जिंदगी इन खूबसूरत लम्हों से हमें नवाजा है।

और इतनी ही अनमोल चीज हमें उस रब ने दी है, ये जिंदगी जो हर लम्हा जीने का सलीका सिखाती है। हर दिन एक नया पाठ पढ़ाती है। जी हाँ, और ऐसे ही सीख दे रहा है हमारा आज का मॉर्निंग मंत्रा। फेमस ऑथर विलियम शेक्सपियर ने कहा था, खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। इट मींस सच्चा ज्ञान और समझ रखने वाला व्यक्ति हमेशा शांत और विनम्र होता है, जबकि बिना समझ के लोग अक्सर दिखावा ज्यादा करते हैं। जीवन में सफलता अच्छे कर्म और

नम्र व्यवहार से मिलती है। हर सुबह हमें ये याद दिलाती है कि अपने व्यक्तित्व को शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम और अच्छे व्यवहार से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल हमारी कोशिश एंटरटेनमेंट बनाए रखने की 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर एंजॉय कर रहे हैं आप हमारा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कानपुर। और आज इस प्रोग्राम को लेकर आरजी पूर्णिमा है आपके साथ।

0: वेल हमारे इस दिल ने कहा हम आपसे रहेंगे यूं ही कनेक्ट, बने रहिए फिल्म रेनबो कानपुर के साथ।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

102.2 की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हैं आप, जहां इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और एंटरटेन सब पहुंचता है आप तक। जी हां, हमारे इस एक शो के साथ। तो अब है बात सोशल मीडिया के साथ। स्वास्थ्य से जुड़े एक संदेश में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को गरीबों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। एक और पोस्ट शेयर की है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर ये पोस्ट है। उन्होंने कहा कि ये बैठक विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करेगी। बैठक में कुपोषण खत्म करने, स्कूल ड्रॉपआउट कम करने, साइबर हेल्पलाइन और जन कल्याण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। और क्रिकेट जगत में युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के भगवान से तारीफ मिलना उनके लिए गर्व और प्रेरणा का पल है। एंड रियली जिंदगी में हम सब के लिए वो पल बहुत स्पेशल हैं जब हम दूसरों से हमारे काम की तारीफें सुनते हैं। गहरा होता है रिश्ता और रिश्तों की गहराई को मजबूती मिलती है हमारे विश्वास से। जैसा कि आपका विश्वास कि हम हमारे शो में आप तक पहुंचाते हैं लेटेस्ट अपडेट, वो भी एंटरटेनमेंट के साथ। तो चलिए ना, प्ले हो चुका है आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर।

102.2 की फ्रीक्वेंसी हमारे ये मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कानपुर, आपकी रेनबो होस्ट आरजे पूर्णिमा और खूबसूरत दिन ये सब है आपके साथ और बना रहे हैं इसे और भी खास।

तो क्यों ना जान ले वो खास बातें जो अतीत के पन्नों में लिखी गई आज के दिन। भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन को मुंबई और पुणे के बीच हरी झंडी का सिग्नल 1 जून 1930 को मिला और ये पटरी पर दौड़ पड़ी। आज के दिन 1955 में भारत में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध घोषित करने वाला कानून लागू कर दिया गया। मदर इंडिया जैसी मशहूर फिल्म की भारतीय अभिनेत्री का जन्म आज के दिन 1929 में हुआ और 1842 में जन्मे सत्येंद्र नाथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी, जिनका जन्म आज के दिन 1975 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। और आज ही के दिन मनाए जाते हैं दो खास दिन, दूध और डेयरी उत्पादों के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व दुग्ध दिवस और माता पिता के बच्चों के प्रति निस्वार्थ बलिदान को सम्मान देता ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट यानी वैश्विक अभिभावक दिवस। तो इतना कुछ है खास आज के दिन में और इस मोमेंट को, आज के इस दिन के इस मोमेंट को हम बना रहे हैं खास आपके साथ एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग एंजॉय करके। कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट के साथ ट्यून है आप, आरजी पूर्णिमा है आज आपके संग।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: किधर है बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट?
3: ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
3: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस?
3: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
2: आरबीआई कहता है
4: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
5: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
6: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
7: जी हाँ, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट के साथ ट्यून्ड है, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर और इस प्रोग्राम के साथ पूर्णिमा है आपके साथ। और देखे ना, हर दिन, हर लम्हा, हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर चलता है ना। कहीं कोई मैसेज छुपा होता है या फिर कई बार तो ये हमारी ही लाइफ स्टोरी जैसा लगता है। बस यही तो है जादू म्यूजिक का, जिसे आप सुन रहे हैं हमारे इस शो के साथ। तो अतीत के आईने से आगे बढ़कर आ गए हैं हम देश विदेश की इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइंस के साथ। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर आज 4 दिवसीय अहम बैठक नई दिल्ली में शुरू होगी। अमेरिका के टेक्सास में बना दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ बॉल पिरामिड, जिसे बनाने के लिए 19,019 गोल्फ बॉल का इस्तेमाल किया गया। इस अनोखे प्रयास का उद्देश्य गोल्फ के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाना और नया कीर्तिमान स्थापित करना था। और इसके साथ ही

अब गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने को ये है बिल्कुल तैयार। भारत में सौर ऊर्जा का विस्तार तेजी से हो रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार देश की सौर ऊर्जा क्षमता करीब 40% की वार्षिक दर से बढ़ रही है और मार्च 2026 तक 150 गीगावाट के आंकड़े पार कर चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। बस इसीलिए हम कहते हैं कि हर दिन है बहुत खास, तो एंजॉय कीजिए दिन के हर एक लम्हे को। और हम एंजॉय करते हैं एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: जी हाँ, कानपुर के म्यूजिकल शो को एंजॉय कर रहे हैं आप, यानी गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ हैं आप। और अब हमारी सिटी अपडेट्स को लेकर मैं हूँ आपके साथ। तो कानपुर मंडी से जुड़े व्यापारियों और अन्य लाइसेंस धारकों के लिए आज से ई मंडी पोर्टल पर लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंडी प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों को 30 जून तक नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केसकों ने शिकायतों का समाधान करने के लिए 1 जून से 6 जून तक हेल्प डेस्क मेरा कैंप लगाया है और ये सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक रहने वाला है। तो अब कैसा इंतजार। जी हाँ, और अब आपके साथ इस खूबसूरत सफर पर चलते चलते आ गए हैं हम क्रिकेट की दुनिया में, जहां से जुड़ी है बहुत ही लेटेस्ट अपडेट। पूरे देश के लिए गर्व की है बात, रच दिया इतिहास। आईपीएल 2026 में हमारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने लगातार दूसरा खिताब अपने नाम कर लिया है। आरसीबी की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे किंग कोहली। फाइनल में नाबाद 75 रनों की ऐसी पारी खेले कि विरोधी टीम देखती रह गई। पूरे सीजन में विराट ने 16 मैचों में 675 रन लिए और सिर्फ कोहली ही नहीं बल्कि कप्तान रजत पाटीदार ने भी 192 रन के स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाए और देवदत्त पाटीकल ने भी 464 रन बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। तो बस खुशियों के लम्हों के साथ जश्न मनाइए हमारे साथ स्टूडियो से, हमारे इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ।

जब देश के लिए इतनी बड़ी गर्व की बात हमारे दिल है खुशनुमा, तो दिल के हर एक अरमान को पूरी तरह एंजॉय कीजिए। जी हाँ, और कोई मौका मत जाने दीजिए इन खुशियों को बयां करने का। फिलहाल गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में चलते चलते हम आ चुके हैं आपके साथ जानने मौसम का हाल। धूप छांव वाले इस गर्मी के मौसम में फिलहाल ठंडी हवाओं, बौछारों और आपके चेहरे के स्माइल ने बता दिया है मौसम का हाल। जी हाँ, की बहुत ही खुशनुमा है आज का दिन, तो जान लेते हैं आज का ये दिन के क्या हालचाल हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 74% और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। जी हाँ, तो चलते रहिए बस अपना ख्याल रखते हुए मौसम के साथ और एंजॉय करिए हमारे प्रोग्राम का ये लास्ट ट्रैक।

जी हाँ, चाह कर भी अब हम रुक नहीं सकते, जाना होगा वापस आने के लिए। अर्जी पूर्णिमा को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने की। रखिए अपना खास ख्याल और बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता।

0: आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक

0: 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
3: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने

0: वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो चुके हैं आप। 8:31 मिनट।

आज की इस सुरीली महफिल की शुरुआत करते हैं हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा को याद करते हुए जिनकी मुस्कान में सादगी थी। अभिनय में गहराई और आंखों में पूरी कहानी उतर आती थी। जी हाँ, बात हो रही है अभिनेत्री नरगिस की। उनकी जन्म जयंती पर सुरों की पुरानी महफिल में आज सजेगी वही यादगार धुने। वही सदाबहार नगमे जिन्होंने कभी प्यार को आवाज दी। तो कभी भावनाओं को एहसास, सुनेंगे नरगिस के वो सुनहरे गीत जो आज भी दिलों को उसी तरह छू जाते हैं जैसे बरसों पहले छूते थे। यादों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं श्री 420 के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे मन्ना डे और लता मंगेशकर ने अपनी आवाजों से सजाया, शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन के धुन से सजा।

हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को हम आप तक पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे धुन सजाई शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम चोरी चोरी।

में सुरों की पुरानी महफिल में और इस प्रोग्राम को लेकर पूर्णिमा है आपके साथ और अगला गीत अंदाज मूवी से कोई मेरे दिल में लता मंगेशकर की आवाज मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा और नौशाद के संगीत से सजा।

एक और खूबसूरत नगमा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हसरत जयपुरी का लिखा और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम आहा।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

102.2 की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हैं आप और प्रोग्राम सुन रहे हैं सुरों की पुरानी महफिल, जहां आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री नरगिस की जन्म जयंती पर उनकी फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत।

और आइए अब सुनते हैं शमशाद बेगम की आवाज में शकल बदायूनी का लिखा नौशाद अली के संगीत से सजा बाबुल फिल्म का ये गीत।

सुरों की पुरानी महफिल का ये आखिरी नगमा मदर इंडिया फिल्म से शकील बदायूं ने इसके लिरिक्स लिखे और कंपोज किया नौशाद ने और आवाज़ें दी लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर ने। आप एंजॉय कीजिए ये गीत और इस प्रोग्राम से पूर्णिमा को दीजिए इजाज़त। बने रहिए फिल्म रेनबो कानपुर के साथ।

0: पहला खुमार।
1: हाय दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
2: ट्यून्ड है आप शहर की हार्टबीट के साथ।

पल दिल का टेलीफोन हर पल रिंग करता है जब इस दिल में छुपे इमोशंस जाग जाते हैं। सोचिए ना, आपने कब सुनी है इस तरह से अपने दिल की आवाज़।

102.20 फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है आप प्रोग्राम रसबहार और आप सुन रहे हैं अपनी रेनबो होस्ट पूर्णिमा की आवाज। दिल के टेलीफोन की रिंग को आप सबने सुना, पर अब हम बात करने वाले हैं उस छोटे से साथी की जिसकी रिंग हम बराबर सुनते हैं, जो हर वक्त हमारे हाथों में रहता है। समझ गए ना आप बात, हम सब के मोबाइल फोन्स की, जिसने हमें स्मार्ट भी बनाया और रिश्तों को नए मायने भी दिए। सो ट्यून रही एफएम रेनबो कानपुर के साथ, बिकॉज हमारी प्यारी प्यारी बातों के साथ साथ हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग्स।

लोगों को खामोश कर जाता है। दोस्तों, टेक्निक्स बदलती रहीं, समय बदलता रहा, लेकिन इंसान हमेशा रिश्तों की गर्माहट ढूंढता रहा। और रिश्तों की इस कनेक्टिविटी को हमेशा बनाए रखा हमारे स्मार्टफोन ने। जहां एक टाइम था लोग लेटर्स के जरिए अपनी फीलिंग्स को लिखकर दूसरों तक पहुंचाया करते थे, होता था लंबा इंतजार, बट नाउ बस एक क्लिक और आपके दिल के सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस इमोजीज के साथ पहुंच जाते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ हमारे स्मार्टफोन के साथ। तो आप भेजिए अपने क्लोज फ्रेंड या फिर अपने लव वंस को एक प्यारा सा मैसेज, साथ ही एंजॉय करें हमारे रसबहार प्रोग्राम का ये अगला ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

102.2 की फ्रिक्वेंसी जिस पर इस वक्त सुन रहे हैं आप प्रोग्राम रसबहार, और हमारे बहुत से लिसनर्स सुन रहे होंगे ये प्रोग्राम अपने अपने मोबाइल फोन्स पर। जी हाँ, इस फ्रिक्वेंसी के साथ या फिर न्यूज ऑन AIR ऐप पर। तो है ना जादू और कमाल के कहीं भी हो आप, ना हम दूर ना हमारे प्रोग्राम्स। देखिए ना, अब वीडियो कॉल पर बेटे का चेहरा देख मुस्कुरा लेती है एक माँ। दोस्त हजारों किलोमीटर दूर होकर भी ऑनलाइन साथ रहते हैं। याद है मूवी इंग्लिश विंग्लिश में शशि का किरदार निभा रही श्रीदेवी, जो विदेश जाकर खुद को अकेला महसूस करती हैं, पर जब परिवार की आवाज फोन पर सुनती हैं तो वही मोबाइल उन्हें हिम्मत देता है। जैसे दूरियां अचानक छोटी सी लगती हैं। देखे ना, हम भी कहां दूर हैं आपसे, हर पल है साथ आपके पास। एंजॉय कीजिए इस बार प्रोग्राम का ये अगला ब्यूटीफुल ट्रैक जो प्ले किया है हमने हमारे इस प्रोग्राम के साथ। नौ बजकर 20 मिनट, प्रोग्राम रसबहार, पूर्णिमा है आपके साथ।

ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंजॉय कर रहे हैं आप प्रोग्राम रजबाहर में, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं ना जहां हम रिश्तों के कनेक्शंस को बखूबी महसूस करते हैं। एक मूवी आई थी कारवा, जहां अविनाश अपने पिता से खुलकर कभी बात नहीं कर पाया। रिश्तों में दूरी थी, खामोशी थी, लेकिन सफर के दौरान उसे एहसास होता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है कनेक्शन। अपनों का अपनों के अपनेपन का, जी हाँ। देखिए ना, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमारा मोबाइल फोन हमेशा हमारे साथ होता है। क्या कभी हम उसे एक पल को भी दूर रख पाते हैं? और रखते भी है ना, तो बस एक नोटिफिकेशन की बेल हमें अपने आप उसके करीब ले जाती है। पर कई बार मोबाइल नेटवर्क नहीं बल्कि दिलों का कनेक्शन काम करता है। जी हाँ, जैसे हमारा और आपका कनेक्शन एफएम रेनबो के साथ, और इस साथ को हम बना रहे हैं और भी स्पेशल इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ। तो बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ।

0: 102.2 की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हैं आप। बस लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी, यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो।

जी हाँ, आ गए हम हमारी प्यारी प्यारी बातों के साथ और याद आ गई टियर जिंदगी में कायरा की जिंदगी, जो बाहर से बहुत खूबसूरत दिखती है, सोशल मीडिया, काम, दोस्त, सब कुछ, लेकिन अंदर एक अकेलापन है। और आज की दुनिया भी तो कुछ ऐसी है ना, स्टेटस अपडेट होते रहते हैं पर कई बार दिल की बातें टाइप नहीं हो पाती। और थ्री इडियट्स की मूवी, उस मूवी की वो दोस्ती भला कौन भूल सकता है। रेंचो, फरहान और राजू, उनकी दोस्ती में कोई लास्ट सीन नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल चैट वाली दोस्ती नहीं बल्कि साथ बैठकर हंसने, रोने और एक दूसरे को समझने वाली दोस्ती थी। आज हम सब के फोन में हजारों कॉन्टेक्ट हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में कॉल करने के लिए हम कुछ ही लोगों को याद करते हैं। सोचिए ना, क्या है, आप इस बात से एग्री?

0: चैनल कौन कौन झूम रहे हैं हमारे इस ट्रैक के साथ, और आई एम श्योर मोबाइल फोन से जुड़ी इतनी सारी बातों को सुनने के बाद आपने भी हमारे साथ ये रियलाइज किया होगा कि मोबाइल ने हमें स्मार्ट बनाया। ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पेमेंट, दुनिया की हर जानकारी, कितना इजी हो गया ना। लेकिन दोस्तों, कभी कभी रिश्तों को भी डेटा पैक नहीं बल्कि थोड़ा सा वक्त चाहिए।
1: Let's go crazy.

एक छोटी सी बात, अगर सुबह उठते ही मोबाइल देखने से पहले हम घर वालों को मुस्कुराहट देकर गुड मॉर्निंग कह देना, तो शायद कई रिश्ते और खूबसूरत हो जाएंगे। मोबाइल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, लेकिन जिंदगी को सिर्फ मोबाइल मत बनने दीजिए। जी हाँ, क्योंकि असली खुशी नोटिफिकेशन में नहीं, अपनों के साथ बिताए गए हर एक लम्हे में छुपी होती है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आरजी पूर्णिमा वाइंड अप करती हूँ आज इस प्रोग्राम रस बहार को। इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ यू एंजॉय अनस्टिट्यून विद एफएम रेनबो कानपुर।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

और लीजिए एंजॉय कीजिए राजा हिंदुस्तानी फिल्म का कुमार सानू, अलीशा चुनाया और सपना मुखर्जी की आवाज में ये ट्रैक। और यहाँ से पूर्णिमा को दीजिए इजाजत, मिलूंगी आपसे ठीक 11 बजे हमनवा प्रोग्राम में, आज मेरी हमनवा आरजे कौसर के साथ।

नमस्कार, 10 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणि देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण कर लिए हैं। कल उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। वे ऐसे वक्त में ये पद संभाल रहे हैं जब इंडियन मिलिट्री कई बड़े बदलावों से गुजर रही है। राजा सुब्रमणि देश के तीसरे सीडीएस बन रहे हैं। सुब्रमणि को पाकिस्तान और चीन से जुड़े रणनीतिक मामलों का जानकार माना जाता है। उन्हें भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के साथ ही सेंट्रल कमांड का भी अनुभव है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार की जिम्मेदारी भी वे संभाल चुके हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन मार्क

पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वे अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 12 वर्ष के अपने कार्यकाल में खोले गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए अनमोल उपहार साबित हो रहे हैं। अमरोहा जिले में कुल 194 आरोग्य मंदिरों पर 14 प्रकार की जांच और 84 प्रकार की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, जिससे ग्रामीणों को बेहतर इलाज मिल रहा है। अमरोहा के ग्रामीण इस सुविधा को लाइफलाइन मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। मौसम

मूल उपहार साबित हो रहे हैं। अमरोहा जिले में कुल 194 आरोग्य मंदिरों पर 14 प्रकार की जांच और 84 प्रकार की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, जिससे ग्रामीणों को बेहतर इलाज मिल रहा है। अमरोहा के ग्रामीण इस सुविधा को लाइफलाइन मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों में तूफान, बारिश, ओले गिरने और बिजली गिरने की घटनाओं के पीड़ितों के त्वरित सहायता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के साथ ये बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है सुपरहिट सॉन्ग्स।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: 10:05 का समय, प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। अगले एक घंटे बहुत सारा म्यूजिक सिर्फ आपके साथ, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए अपने इस प्यारे से शो के साथ, सुपर हिट सॉन्ग के साथ। तो बस से सिलसिला प्रारंभ करते हैं आपके साथ हम और मिलकर। तो चलिए इस गीत के साथ आज के शो का करते हैं आगाज।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सिरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी हाँ दोस्तों, 10:31 का समय, 7:54, 55, 56, 57 सेकंड्स। प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग्स, और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ आपका अपना दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। तो बस आप हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 10:54 का समय और ये देखिए 10:55 का समय हो चुका है और ये समय इशारा कर रहा है कि सुपरहिट सॉन्ग को अब हम यहीं पर वाइंड अप करें। आशा करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा और आप हमें मेल के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं इस अंतिम गीत के साथ। बस अब हमारे साथ यहीं जुड़े रहिए और अगले प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में भी आपके साथ हमारी मुलाकात होगी, जिसमें आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं फोन कॉल्स के माध्यम से और मेल आईडी के माध्यम से। बस आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स. मैं हूँ आरजे पूर्णिमा. और कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे. और आज आप हम नया प्रोग्राम सुनकर और भी अच्छे हो जाने वाले हैं. और क्यों और कैसे, ये तो मेरी आज की हमनवा ही बताएंगी.
1: हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो डियर लिसनर्स, आप सब आज इंजॉय करने वाले हैं ये हमनवा प्रोग्राम आरजे कौसर और आरजे पूर्णिमा की जोड़ी के साथ, जिसमें बातें होंगी काम की, जो कि रोज ही होती हैं, और उन बातों का अंदाज होगा दिल से, जो पहुंचेगा आपके दिल तक, यानी कि पूर्णिमा, दिल से
0: दिल
1: दिल
0: तक,
1: तक।
0: बिल्कुल. और इस प्रोग्राम में आपको मिलती है ढेर सारी जानकारियां. और इन जानकारियों के साथ साथ आप हमारे इस प्रोग्राम में बीच बीच में एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग्स.
1: और साथ ही कौसर और पूर्णिमा की दिलचस्प जोड़ी की दिलचस्प और मीठी, शोक, शरारती, संजीदा, सभी कुछ मिक्स गपशप को भी आज साथ ही साथ एंजॉय करने वाले हैं। बस आप थोड़ा इंतजार करते रहिए, 1 घंटे तक जुड़े रहिए हमारे साथ।
0: बिल्कुल. फिलहाल अभी हम बता देते हैं हमारे लिसनर्स को कि आज हम दोनों मिलकर किन किन खास बातों को आपके साथ रखने वाले हैं. तो सबसे पहले कुछ खास जरूरी बातें करेंगे हम पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि आज हम मना रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स. और इससे जुड़ा एक सवाल आप लिसनर्स से हम पूछना चाहेंगे कि आज इस डिजिटल युग में पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो बातचीत है, जो कनेक्शन है, जो कन्वर्सेशन है, वो कम क्यों होती जा रही है. तो रहिएगा तैयार अपने इन सारे जो ये खूबसूरत सा सवाल है ना, आपको इसके जवाबों के साथ.
1: और इसके अलावा पूर्णिमा, आगे और भी बताएंगे, कुछ और भी सवाल हैं, वो भी सुनने के लिए तैयार रहें। फिलहाल
0: बिल्कुल.
1: आपको बता दें कि और क्या क्या हमारे विषय हैं, तो बहुत ही रोचक बातें होंगी वर्ल्ड मिल्क डे पर, जो कि आज पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। और इसके अलावा
0: इसके साथ साथ आकाशवाणी के 90 वर्ष के सेलिब्रेशन में आज बात करेंगे भारत के दिल की सुरीली धड़कन विविध भारती की.
1: और पूर्णिमा, देखो ना, आजकल दुनिया पर एआई का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो कुछ बातें इस विषय पर भी हम करने वाले हैं। साथ ही आज पुण्यतिथि है भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी की, तो उन्हें कैसे भाई याद हम नहीं करेंगे, बिल्कुल आज उनको हम अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे, और साथ में कुछ और चीजें।
0: इसके साथ ही सर, महिलाओं का जज्बा दिखेगा स्वयं सहायता समूह के सेगमेंट में.
1: और एट लास्ट वर्ल्ड मिल्क डे पर एक ठंडी ठंडी मीठी मीठी रेसिपी भी होगी आपके लिए।
0: तो हमारा आज आपके लिए सवाल कि दूध से बनी कौन सी मिठाई

0: करेंगे और साथ में कुछ और चीजें।
1: इसके साथ ही गौसर महिलाओं का जज्बा दिखेगा स्वयं सहायता समूह के सेगमेंट में।
0: और एट लास्ट वर्ल्ड मिल्क डे पर एक ठंडी ठंडी मीठी मीठी रेसिपी भी होगी आपके लिए।
1: तो हमारा आज आपके लिए सवाल कि दूध से बनी कौन सी मिठाई या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है।
0: तो ये हमारा आज का और दूसरा सवाल था, है ना। और इसके साथ एक और सवाल कर देते हैं ताकि लिसनर्स हमारे किसी भी सवाल का जो उनकी लाइफ के साथ बढ़िया सेट बैठता हो उसका जवाब दें। तो ये बताना है आपको कि एआई का ज्यादा यूज आपकी नजर में फायदेमंद है या हार्मफुल, और आपके जवाब हमें लिखकर जल्दी से भेजिए ईमेल के जरिए। और हमारा ईमेल एड्रेस है
1: aarkansomedia@gmail.com।
0: तो बस लिसनर्स जिस बात का है आपको इंतजार वो हम खत्म किए देते हैं पूर्णिमा और मैं ये सॉन्ग सुनवाकर।

0: और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा ये
1: सॉन्ग
0: सॉन्ग
1: सुना है।
0: सुनवा कर।
1: बिल्कुल, तो हम जो ये सॉन्ग सुन रहे थे ना कौसर, इसके बाद हम अब अपनी बातों का जो सिलसिला है ना खूबसूरत, वो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज हम बात करते हैं बहुत ही खास दिन की, क्योंकि आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जो हर साल 1 जून को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिन, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई, दुनिया भर के माता पिता यानी पेरेंट्स के निस्वार्थ बलिदान और बच्चों के प्रति उनके आजीवन समर्पण के सम्मान के लिए सेलिब्रेट किया जाता है।
0: वैसे भी माता पिता को जितना भी सम्मान दे उतना ही कम है, और जो एक दिन है ये तो बनाया गया है, उस दिन हम लोग खास तौर से इस चीज को मनाते हैं, लेकिन माता पिता के लिए एक दिन या पूरा साल भी
1: काफी नहीं है।
0: काफी नहीं है। तो माता पिता को तो हमें हर दिन सम्मान देना है, हर पल सम्मान देना है। फिलहाल माता पिता वो अनमोल छांव है जो खुद धूप सहकर बच्चों को सुकून देते हैं। उनका त्याग कभी शब्दों में पूरा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वही हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को सबसे बड़ी ताकत देते हैं।
1: बिल्कुल कौशल, देखो ना, जब हम परेशान होते हैं, हमारा मन अच्छा नहीं होता, तो हम सबसे पहले ना हमारे जो माँ होती है, कहते हैं ना कि जो बेटियां होती हैं वो माँ को अपनी एक फ्रेंड की तरह लेती हैं, और सारे दिल के जो जो भी राज होते हैं, जो दुख होती है, जो तकलीफ होती है, उनसे शेयर करती हैं, है
0: बिल्कुल
1: ना। और आज का ये दिन उनके त्याग को सम्मान है, उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों की खुशियों और भविष्य के लिए अनगिनत त्याग करते हैं, और ये दिन उनके इसी निस्वार्थ प्रेम को सराहने का, अप्रिशिएट करने का एक अवसर है।
0: बिल्कुल, और इसका मुख्य उद्देश्य भी है कुछ, जो बच्चों के बेहतर पालन पोषण में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना और बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये दिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताने और उन्हें थैंक्स कहने का एक खास मौका भी देता है।
0: बिल्कुल, तो थैंक्स कहने का मौका एक जरूर एक खास दिन बना दिया गया, एक बार फिर से कहूंगी, लेकिन आप जब भी उठिए अपने माता पिता को थैंक्स बोलिए कि सबसे पहले उन्होंने आपको जन्म दिया है, यही बहुत बड़ा उनके लिए थैंक्स है।
1: बिल्कुल
0: तो वैसे पूर्णिमा, अपने पेरेंट्स को सम्मान देने का, खुशियां देने का कोई दिन नहीं होता, ये तो हम लोग बता ही रहे हैं। हाँ, पर हम इसे और खास बना सकते हैं, कुछ स्पेशल प्लान कर सकते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाकर खाना खाएं आज के दिन, या उन्हें पसंदीदा, जो उनका पसंदीदा भोजन है, व्यंजन है, या उनकी पसंद पूछे कि आपकी पसंद क्या है, उसे खुद बनाकर खिलाएं, तो फिर तो बात ही क्या है।
1: बिल्कुल कौशल, क्योंकि हम देखते हैं ना कि हम मोस्टली जो प्लानिंग होती है बाहर डिनर की या लंच की, तो हम फ्रेंड्स को अपने कॉल करते हैं और फिर मिलकर वो समय बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी हम ये खास दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं, उन्हें स्पेशल फील करा सकते हैं कि वो है तो हम है, या फिर अपने हाथों से एक थैंक्स का लेटर, जैसे कि कौशल ने कहा कि वो दे सकते हैं। उनके साथ जो बिताए गए आपकी पुराने मेमोरी हैं, जो पुरानी यादें हैं, उन्हें हम ताज़ा कर सकते हैं, उनके साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर उन्हें किसी ट्रिप पर ले जा सकते हैं, कोई सुंदर सी फैमिली फोटो भी गिफ्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे आइडियाज हैं
0: या
1: कौशल,
0: फिर
1: है ना।
0: कुछ ऐसी पुरानी यादें होती हैं जिनसे वो, जिन्हें याद करके वो फिर से खुश हो सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो उनके साथ कम से कम नहीं तो कुछ आधा एक घंटा बैठकर वो यादें शेयर करिए, फिर देखिए जो उनकी खुशी का आलम होगा, जो उनके चेहरे की मुस्कुराहट होगी, शायद उससे बढ़कर कोई भी कीमत नहीं हो सकती, है ना।
1: बिल्कुल कौशल, उसके बाद बातों के साथ एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, ये जो एक सिलसिला है ना वो चलता जाता है, और समय का पता कहाँ चलता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज की तेज भागती दुनिया में हम अक्सर अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि मतलब माँ ने खाना खाया है कि या नहीं खाया है, पापा की तबीयत कैसी है, ये सारी बातें भी हम पूछना भूल जाते हैं, और ये थोड़ा सा लाजमी भी है इस वक्त में, आज के दौर में, क्योंकि आजकल इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी ही हो गई है।
1: बिल्कुल, हर कोई वर्किंग है और इसका असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, हमारे बिहेवियर पर पड़ता है, लेकिन सच है कौशल कि घर की जो असली खुशी होती है ना, वो पेरेंट्स की मुस्कान में छिपी होती है। यहाँ ना छोटी सी स्टोरी है, याद आ रही है कौशल, शेयर कर दें
0: बिल्कुल
1: कि एक लड़का बड़े शहर में नौकरी करता था, हर महीने पैसे तो भेज देता था, लेकिन माता पिता से बात करने का समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसकी माँ ने फोन पर बस इतना कहा कि बेटा, पैसे तो बैंक में आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ बहुत दिनों से घर नहीं आई। बस ये बात उसके दिल को छू गई, और उस दिन उसे एहसास हुआ कि माता पिता को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो हमारे समय, हमारे अपनेपन और हमारे साथ ही होती है।
0: और पूर्णिमा, मैं तुम भी आज सुबह से अभी तक आई हो, मुझे पता है कि तुम्हारी भी मम्मी का अभी फोन आया था, और मैं भी अभी जब आई हूँ यहाँ पर तो शाम तक रहने वाली हूँ, तो बीच में एक दो बार मम्मी को फोन जरूर करूंगी,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि आज एक तो खास दिन है और

0: और हम कौसर इतने ही प्यार के साथ, इतने ही प्यारेपन के साथ हमारे लिस्नर से जुड़ चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम में, और हमारे लिस्नर्स भी बिल्कुल बखूबी हमसे कनेक्ट है, क्यों ना।
1: और उनका इंतजार बस हमने खत्म कर दिया पहले तो स्टूडियो में आकर। और

0: फिर उनको अगर जब यहां से भी फोन करो ना, तो उन्हें लगता है हाँ कि हमारी इतनी फिक्र है हमारे बच्चों को, कि अपने काम के बीच से भी वक्त निकाल कर हमको एक पल दिया। वो सिर्फ एक पल ही जो उनकी मुस्कान लाने के लिए काफी हो सकता है ना। तो दोस्तों, माता पिता के लिए सबसे बड़ा उपहार महंगा सामान कोई देना नहीं, महंगा गिफ्ट नहीं देना, बल्कि कुछ पल उनके साथ बिताना है। उनके पास बैठिए, बातें करिए, उनकी पुराने यादें सुनिए, उनकी पुरानी बातें सुनिए, क्योंकि कुछ वक्त बहुत जल्दी निकल जाता है। और जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है ना, उस घर में हर दिन एक फेस्टिवल की तरह होता है।
1: तो क्यों ना कौशल, आज के इस खास मौके पर हम सब भी ना एक छोटा सा वादा करते हैं कि चाहे जिंदगी कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, हम कितने ही बिजी क्यों ना हो, अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालेंगे। और इसी फीलिंग के साथ हम सभी पेरेंट्स को समर्पित करते हैं
0: ये एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, जिसमें अगर आपने ये मूवी देखी होगी उसमें भी एक बच्चे की और उसके पेरेंट्स की कहानी है। तो बस ये गाना सुनिए और याद करिए उस मूवी के कुछ खास जो दृश्य थे और उसकी कहानी।

0: बिल्कुल, तुझे सब है पता मेरी माँ। माँ ही एक ऐसी शख्सियत, माँ ममता का एक रूप है, माँ ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रिश्ता है जिससे हम हर चीज़ बता सकते हैं, और माँ को बिना बताए सब कुछ पता होता
1: तो
0: है।
1: कौशल, यूं ही तो नहीं कहते ना कि माँ पूरी दुनिया होती है। तो हमारे जितने भी लिसनर सुन रहे हैं ना, तो हम सबको जो है क्या कहते हैं कि

0: अपनी जो एक माँ है ना उन्हें गले लगाएं। और हमारे इस जो
1: जो
0: है
1: हम ये बातें कर रहे थे, इन बातों के लिए हमारे पास कुछ एक्सपर्ट, कुछ माता पिता हैं, कुछ पेरेंट्स से हमने ये लिया हुआ है, तो क्यों ना हम उनकी भी बातों को शेयर कर
0: कि
1: दें अपने लिसनर्स से।
0: बिल्कुल, क्योंकि क्या वो कहना चाहते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर, है ना।
1: तो ये है शालिनी राय निगम, देखते हैं पहले ये क्या कहती है, और इसके बाद एक पेरेंट्स और हैं पंकज श्रीवास्तव,
0: ठीक है,
1: उनके भी
0: हम
1: विचार सुनेंगे कि उनके क्या विचार हैं इस दिवस पर।
0: बिल्कुल।
2: नमस्कार। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के अवसर पर मैं शालिनी राय निगम सभी माता पिता को दिल से नमन करती हूँ। आज के समय में माता पिता होना शायद पहले से कहीं अधिक जिम्मेदारी भरा काम है। बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनके सपने, उनका भविष्य और साथ ही उन्हें अच्छे संस्कार देना, इन सब के बीच माता पिता हर दिन एक नई चुनौती का सामना करते हैं। एक माँ के रूप में मैं महसूस करती हूँ कि बच्चों की मुस्कान के पीछे माता पिता की कितनी मेहनत और कितनी चिंताएं छिपी होती हैं। वे अपनी इच्छाओं से समझौता तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के सपनों से कभी समझौता नहीं करते। आज की डिजिटल दुनिया में बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाना, उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया के प्रभाव से संतुलित रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। माता पिता केवल बच्चों का पालन पोषण नहीं करते, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। वे हर दिन सीखते हैं, समझते हैं और अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ते हैं। इस विशेष दिन पर मैं सभी माता पिता को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जो बिना किसी अपेक्षा के अपने परिवार के लिए समर्पित रहते हैं। आइए हम सब अपने माता पिता को समय दें, उनका सम्मान करें और उनके त्याग को समझने की कोशिश करें, क्योंकि माता पिता का प्यार वो छांव है जिसकी कीमत अक्सर हमें तब समझ आती है जब हम खुद जिम्मेदारियों की राह पर चलते हैं। सभी माता पिता को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
3: नमस्ते, मैं पंकज श्रीवास्तव ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के अवसर पर दुनिया भर के सभी माता पिता को दिल से प्रणाम करता हूँ। माता पिता हमारे जीवन की पहली पाठशाला होते हैं। वे हमें चलना, बोलना और जीवन के सही मूल्यों को समझना सिखाते हैं। उनका प्यार निस्वार्थ होता है और उनका त्याग अनमोल। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वे हमारी हर सफलता पर मुस्कुराते हैं और हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़े रहते हैं। उनकी दुआएं हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। हमें चाहिए कि हम उनके सम्मान, स्वास्थ्य और खुशियों का हमेशा ध्यान रखें। आज मैं अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने माता पिता के साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। माता पिता केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि हमारी पहचान और हमारी जड़ें हैं। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की पहचान है। सभी माता पिता को समर्पित इस विशेष दिवस पर मैं उन्हें धन्यवाद, सम्मान और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्ते।
1: तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर ये हमारे जो कुछ पेरेंट्स थे उनके विचार हमने शेयर करे,
0: बिल्कुल।
1: और मुझे लगता है कि ये जो पेरेंट्स थे इन्हीं की तरह सारे पेरेंट्स के विचार होंगे।
0: बिल्कुल होंगे, क्योंकि संदेश और उसके अंदर जो भाव है ना कौसर, वो हर जगह यही मिलेगा।
1: बिल्कुल। तो पूर्णिमा, आप बता दें कि आज एक और खास और इंटरेस्टिंग डे हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सिर्फ हम ही नहीं पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है आज ये डे, और वो खास डे है वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि विश्व दुग्ध दिवस। और दूध का नाम वैसे भी सुनते ही लेते ही कितनी सारी वैरायटीज हैं जो हमारी आंखों के सामने नजर आने लगती हैं, और
0: बिल्कुल
1: जो बड़े फूडी लोग हैं उनके सामने तो और भी ज्यादा नजर

0: नजर आने लगती होंगी। दूध, घी, मक्खन, मलाई, दही, मट्ठा, आहा हा, दूध से बनी मिठाई, वाओ। और देखो ना, कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी सुबह चाय के साथ ही होती है, और कई लोग क्या मतलब भारत में तो मोस्टली लोग ऐसे ही हैं, और दूध के बिना तो भैया चाय कैसी।
1: बिल्कुल कौसर, और सबसे मजेदार बात ये है ना कि दूध सिर्फ एक एक पेय नहीं है, एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि हमारे बचपन, सेहत, परंपराओं, रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे पहली बार ना 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा स्थापित किया गया, और तब से विश्व दुग्ध दिवस हर साल आज के दिन 1 जून को मनाया जाता है।
0: और हर दिवस मनाने का कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता ही है। तो जो ये दिवस हम लोग मना रहे हैं, विश्व दुग्ध दिवस, इसको मनाने का उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध की इंपॉर्टेंस को पहचानना, डेयरी किसानों के योगदान का सम्मान करना, और डेयरी प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूक करना है। और पूर्णिमा, सच कहूं तो दूध सिर्फ पोषण नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी रोटी से भी जुड़ा है। और गांव में देखो ना, कितने सारे परिवार हैं जो डेयरी, जो इसी उत्पादकता पर ही निर्भर हैं, यही उत्पादन करते हैं।
1: बिल्कुल कौशल, और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश माना जाता है, और इसमें बड़ा जो सबसे बड़ा योगदान है ना, वो हमारे किसानों का, महिलाओं का है। और वैसे भी ना कौशल, अपने श्रोताओं से बता दें कि दूध को कंप्लीट फूड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, B1, B2, B3, B5, विटामिन डी भी पाया जाता है, और बहुत सारे जो है, इतने सारे न्यूट्रिशन से भरपूर है हमारा ये दूध,
0: इसीलिए तो कंप्लीट फूड इसे कहा जाता है। खाली दूध ही पी लो, यानी कि पूरा पेट आपने जितना भी, आपको जितने भी प्रोटीन और विटामिन चाहिए होते हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, शरीर को पूरा पूरक दे देते हैं, ये पूरकता हो जाती है उनकी। और यही नहीं, दूध 67% कैल्शियम, 35% मैग्नीशियम और 45% फॉस्फेट का समृद्ध स्रोत है, और ये सभी पोषक तत्व हेल्दी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वैसे पूर्णिमा, देखा जाए तो जो इंसान की जो जड़ें हैं ना, वो गाँव से जुड़ी हुई है, और गाँव की सुबह वैसे भी यहाँ कितनी खूबसूरत होती है ना, सुबह सुबह गौशाला की आवाजें, गाय बैल के गले में जो घंटियां बंधी होती हैं, वो घर के अंदर तक सुनाई देती हैं कि वो बाहर निकल रहे हैं, और गौशाला में मिलता वो फ्रेश ताज़ा दूध, और फिर उसी दूध से दही, मक्खन और घी बनाना, ये सब भारतीय ग्रामीण संस्कृति की एक पहचान भी है।
1: बिल्कुल कौशल, और गांव हो या शहर, अपने शहर में सुबह की शुरुआत अक्सर चाय या दूध से होती है। मेहमान नवाजी में चाय सबसे पहले पूछी जाती है, और त्योहारों में भी देखो ना, दूध का कितना अहम रोल होता है कि खीर, रबड़ी, पनीर, मिठाइयाँ, सबकी शुरुआत ना दूध से ही तो होती है। दूध सिर्फ भोजन नहीं बल्कि व्यंजन नहीं बल्कि आस्था और परंपरा से जुड़ा भी हुआ है।
0: तुम्हारे मुंह में कुछ पानी वानी तो नहीं आ रहा है?
1: नहीं नहीं,
0: क्योंकि इतना सारा दूध, मलाई, मक्खन, मिठाइयाँ, और तो मैंने तुम्हारे मुंह की तरफ एक बार देखा पूर्णिमा की शायद। और इसके आगे जैसे पूजा पाठ भी होती है ना मंदिरों में, प्रसाद हो या फिर शिवरात्रि, जन्माष्टमी जैसी परंपराएं हो, दूध हर जगह किसी न किसी रूप में शामिल होता है। और हाँ पूर्णिमा, जब हम भगवान श्री कृष्ण की कहानियां पढ़ते हैं ना, अक्सर हम लोग ने बचपन में कविताएं भी पढ़ी हुई हैं ऐसी कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना, उनको उनकी चोरी पकड़ी जाती है, कितनी नटखट वो चीजें होती थी, शरारती।
1: और हम छोटे होते थे कौसर, ये सारी चीजें देखते भी थे, मतलब पिक्चर्स में भी और सुनते हाँ। भी थे, और वाकई तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे परिवार और पूजा पाठ सबसे जुड़ी है ये।
0: बिल्कुल, और दूध सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं, हमारी संस्कृति को भी पोषण देता आया है, ये सारी स्टोरीज पढ़ के यही हम लोग जान सकते हैं।
1: बिल्कुल कौसर, ये जो पैकेट में दूध आता है ना, हम उसके पीछे की मेहनत को भी तो जान लें कि जो रात से ही डेयरी प्लांट्स में काम शुरू हो जाता है, और गांवों से दूध इकट्ठा होता है, फिर उसकी जांच होती है, पैकिंग होती है, फिर कहीं सप्लाई, यानी सुबह का जो एक ग्लास दूध है ना, वो कई लोगों की पूरी रात की मेहनत का नतीजा होता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने पूर्णिमा। और अब यहाँ ये भी बता दूं मैं कि ये जो विश्व दुग्ध दिवस आज मनाया जा रहा है, तो हर साल ये एक थीम के तहत मनाया जाता है, और इस साल की थीम है दुग्ध क्षेत्र में स्थिरता, जो स्वास्थ्य, पोषण और डेयरी उत्पादकों के दीर्घकालिक उत्पादन पर केंद्रित है। और पूर्णिमा, अगर बात भारत की करें, है ना, तो भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो आज मनाया जा रहा है ये विश्व दुग्ध दिवस है। और जो भारत में मनाया जाता है, ये दिन भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
1: इतना दूध जरूरी है, दूध, मक्खन, घी, सोचते हो क्यों ना, एक कान्हा को दूध मक्खन

0: ना प्रसन्नता, हम सब जानते हैं, और तो इस आज के इस मौके पर क्यों ना हम ऐसा ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुनवाएं जिसमें कान्हा के जैसी शरारतें शामिल हो।
1: हाँ बिल्कुल, अरे वो इस बारे में अपनी मैया से क्या बोलते हैं
0: ये
1: ये इस
0: हम नहीं
1: गाने में
0: बताएंगे,
1: सुन लेते
0: ये
1: हैं।
0: गौसर हम नहीं बताएंगे, आइए
1: हाँ
0: हमारे जो लिसनर्स हैं वो इस सॉन्ग के जरिए सुनेंगे।
1: हाँ
2: फिर माँ क्या कहती थी?

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है, जब देखो घूमती रहती हो मुझे। तुम्हीं ने तो जादू डाला है मुझ पे।

0: 102.2 की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हैं आप और हम नवा प्रोग्राम सुन रहे हैं अपनी फेवरेट जोड़ी के साथ, यानी आरजे कौसर और आरजे पूर्णिमा है आज साथ।
1: बिल्कुल, और पूर्णिमा अगर हम अपने चारों तरफ नजर डालें ना तो पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई धीरे धीरे हमारी लाइफ का एक पार्ट बनता जा रहा है। चाहे मोबाइल हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो या फिर सोशल मीडिया हो, एआई हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है।
0: बिल्कुल कौसर, और आज गूगल मैप रास्ता दिखाता है, रास्ता बताता है, मोबाइल कैमरा खुद अपने आप फोटो बेहतर कर देता है, शॉपिंग ऐप्स हमारी पसंद को समझने लगते हैं और सोशल मीडिया वही चीजें दिखाता है जो हमें पसंद आती हैं। सब पॉसिबल है सिर्फ इस एआई की वजह से।
1: बिल्कुल, और इतना ही नहीं पूर्णिमा, आज एआई खेती, मौसम, ट्रैफिक कंट्रोल, ऑनलाइन स्टडी, फिल्मों और संगीत की दुनिया तक पहुंच चुका है। अब मशीनें सिर्फ काम नहीं कर रही हैं बल्कि इंसानों की तरह सीख भी रही हैं, और यही वजह है कि एआई को आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता तकनीकी बदलाव माना जा रहा है और कई विशेषज्ञ तो इसे नई औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं।
0: तो चलो कौसर, यहाँ पर ना बात कर लेते हैं एआई के फायदों की। कि काम तेज और आसान होना, जैसे कि एआई की मदद से कई काम बहुत कम समय में पूरे हो जाते हैं, फिर चाहे डाटा मैनेजमेंट हो, टाइपिंग हो, ट्रांसलेशन हो या फिर ऑनलाइन सर्विसेज, अब पहले से ज्यादा तेज हो गई हैं।
1: और इसके अलावा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये हेल्प करता है, काफी हेल्प करता है। एआई आधारित मशीनें कई बीमारियों का जल्दी पता लगाने में हेल्प करती है, हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट्स एनालाइज करने में और साथ ही ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, शिक्षा को भी आसान बना रहा है एआई। स्टूडेंट्स अब एआई की हेल्प से नोट्स तैयार कर

0: सकते हैं, नई भाषाएं सीख सकते हैं और कठिन टॉपिक्स आसानी से समझ सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग भी पहले से ज्यादा
1: ज्यादा
0: स्मार्ट हो
1: स्मार्ट हो
0: गई
1: गई
0: है।
1: है बिल्कुल। यानी स्मार्ट जो हमारा देश है ना, उसके साथ स्मार्ट वर्किंग है और स्मार्ट है हम। इसके साथ ही देखो ना, खेती में भी हेल्प करता है। यानी AI सिर्फ मौसम की जानकारी देने, मिट्टी की जांच करके और फसलों की निगरानी करने में किसानों की मदद कर रहा है। साथ ही ट्रैफिक और सुरक्षा में भी हेल्प करता है। यानी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, CCTV मॉनिटरिंग और साइबर फ्रॉड डिटेक्शन में AI का यूज़ बढ़ रहा है। इससे
0: बिल्कुल
1: सुरक्षा व्यवस्था को सर देखो ना, बेहतर हो रही
0: बेहतर हो
1: है।
0: रही है बिल्कुल। साथ ही पूर्णिमा, AI रोजमर्रा की जिंदगी को स्मार्ट बना रहा है। इसके अलावा AI की वजह से नई फील्ड सामने आई है, जैसे डाटा साइंस, AI इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग और प्रॉम्प्ट राइटिंग। और वही होता है ना कि जहाँ पर एक चीज होती है
1: फायदे
0: उसके कुछ
1: हैं,
0: फायदे हैं, वहां उसके कुछ ना कुछ थोड़े बहुत नुकसान
1: नुकसान
0: भी
1: भी
0: होते
1: हैं बहुत
0: हैं।
1: सारे। तो बिल्कुल हर चीज़ के दो पहलू हैं, जहाँ फायदा वहाँ नुकसान, बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ साथ कुछ नुकसान जो हैं, जैसे कि इंसानों की सोचने की जो कैपेसिटी है उस पर असर पड़ा है। देखो ना, पहले हम कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए होता था तो हम उसमें दिमाग लगाते थे, अपनी थोड़ी सी जो एक क्रिएटिविटी होती है, हमारा जो दिमाग है उसकी ओर थोड़ा सा जोर लगाता था, सोचता था। लेकिन अब जरूर से ज्यादा हम AI पर डिपेंडेंट हो गए हैं। लोगों के खुद से जो सोचने समझने की जो आदत है ना, वो कमजोर पड़ती जा रही है। हमारा जो एक ब्रेन है वो उस चीज को, जब कहते हैं ना कि अगर हमें खाने की थाली बिल्कुल सजी हुई मिल जाए ना, तो हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि वो उस फूड को तैयार करने में कितना वक्त लगाए। यानी हम जब खुद से मेहनत करते हैं ना, उसके लिए जद्दोजहद करते हैं, तो हमें समझ आती है उसकी वैल्यू।
0: इसके अलावा पूर्णिमा, फेक कंटेंट और डीप फेक का खतरा बढ़ रहा है ना। AI की हेल्प से नकली फोटोज, वीडियोज और आवाजें बनाई जा सकती हैं, जो कि नुकसानदेह तो हो ही सकता है, सभी को पता है। प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा की चिंता भी बढ़ गई है। मोबाइल और स्क्रीन पर निर्भरता भी बढ़ती जा रही है ना। इससे क्या होता है, हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है
1: बिल्कुल,
0: और साथ में स्क्रीन जो एडिक्शन है वो
1: वो
0: भी
1: भी
0: बढ़ रहा है।
1: तो कसर हम ये कर सकते हैं ना कि हम अननेसेसरी जो एप्स हैं उनको कोई परमिशन ना दें, हम सोच समझ कर सारी चीज़ों का एक्सेस दें, ताकि हम जो है इन फ्रॉड से बच सकें और स्मार्ट जो कहते हैं ना कि स्मार्ट, इन चीज़ों को स्मार्टली यूज़ करना हमसे वो कर सके। साथ ही जो टेक्निक है उन पर लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ रही है। अगर फ्यूचर में हर काम मशीनों पर डिपेंड हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, तो इंसानी स्किल और क्रिएटिविटी काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है।
0: तो पूर्णिमा, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, है ना?
1: बिल्कुल,
0: तो बता देते हैं कि अपने श्रोताओं से उनकी भी बातें शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे श्रोताओं को उनकी बातों से कुछ लाभ मिले।
1: तो पहुंचाते हैं ये संदेश।
2: सभी श्रोताओं को दिनेश मौर्या, कंप्यूटर एक्सपर्ट का प्यार भरा नमस्कार। AI एक तकनीक है जो मशीनों और कंप्यूटरों को मनुष्यों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। AI के कई लाभ हैं, जैसे यह कार्यों को तेज और अधिक सटीक बनाता है, शिक्षा को अधिक प्रभावित बनाता है, स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता करता है। इसके साथ ही AI युवाओं के लिए कुछ चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। AI पर अत्यधिक निर्भरता रचनात्मक और स्वतंत्र सोच को कम कर सकती है। इसके अलावा गलत जानकारी, गोपनीयता संबंधी समस्याएं और डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग पढ़ाई और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए AI का उपयोग जिम्मेदारी और संतुलन के साथ किया जाना चाहिए, ताकि इसके लाभों का पूरा उपयोग किया जा सके और इसके संभावित नुकसानों से बचा जा सके।
0: तो पूर्णिमा, ये थे हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट दिनेश मौर्या जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई AI के बारे में, कि इसके क्या लाभ और कितनी सतर्कता से इसको यूज़
1: इस्तेमाल करना
0: करना
1: चाहिए।
0: चाहिए। तो पूर्णिमा, हम यही कहेंगे, हम दोनों भी यही कहेंगे कि AI दुनिया को बदल रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि तकनीक हमेशा इंसान की मदद के लिए होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि मशीनें तेज हो सकती हैं, लेकिन इंसानी सोच और जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता।
0: और पूर्णिमा, मुझे याद आ रहा है कि एक ऐसे ही मूवी बनी थी रोबोट, तो मुझे बस उसका एक सॉन्ग याद आ रहा है
1: और
0: इस
1: सर
0: मौके पर।
1: बिल्कुल, तुम्हारे इसी मौके पर मुझे भी यही मूवी, यही सॉन्ग याद आया। तो क्यों ना अब हमारे लिसनर्स तक भी हम पहुंचा दें ये खूबसूरत सा सॉन्ग।
0: बिल्कुल।

0: जैसा देश वैसा भेष वाली बात हो गई ना, जो हम लोग का टॉपिक था, जो बातें चल रही थी, जो विषय चल रहा था, गाना भी कुछ वैसा ही हो गया। और अच्छा लगता है ना जब मैचिंग मैचिंग कोई चीज होती है।
1: बिल्कुल कौशल, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्त भी बढ़ रहा है आगे, और बहुत ही जो अच्छी सी बात हम शेयर करने वाले हैं क्योंकि इससे जुड़े हैं हम, हमारे लिसनर्स और हमारा आकाशवाणी। और कौसा देखो ना, कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो दिलों में बस जाती हैं, और कुछ सफ़र सिर्फ वक्त के नहीं होते, वो पीढ़ियों की याद बन जाते हैं।
0: बिल्कुल, और जब हमारी ये बातें अब हमारी ये बातें समर्पित हैं उस आवाज़ को जिसने दशकों से पूरे भारत को एक सुर में बांधे रखा है, और हमारे जो श्रोता हैं वो पहचान ही गए होंगे कि हम बात कौन सी कर रहे हैं, फिर भी बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी और उसकी सुरमई पहचान यानी कि विविध भारती की।
1: बिल्कुल, और 90 वर्षों का ये सफर केवल प्रसारण का इतिहास नहीं बल्कि भारत की भावनाओं, संस्कृति, संगीत और यादों का जीवंत दस्तावेज है। एक समय था जब घरों में रेडियो बजते ही पूरा परिवार उनके उसके आसपास बैठ जाता था, है ना?
0: बिल्कुल,
1: और वो एहसास कितना प्यारा था।
0: बहुत सुबह की भक्ति, दोपहर के फरमाइशी गीत और रात की मधुर महफिलें, हर कार्यक्रम लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता था। और जब बात विविध भारती की हो तो याद आती है वो जादुई आवाजें जिन्होंने करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बना दिया था।
1: अमीन सयानी की वो मशहूर आवाज, बहनों और भाइयों, सुनते ही लोग समझ जाते थे कि अब शुरू होने जा रही है यादों और संगीत की सबसे प्यारी यात्रा।
0: बिल्कुल, उन्हें अपनी अपना नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ बहनों और भाइयों बोलते ही लोग समझ जाते थे कि हाँ बस ये अमीन सयानी जी हैं, है ना? और फिर चाहे यूनुस खान की वो नर्म और अपनापन भरी प्रस्तुति हो, उनकी भी आवाज़ पहचानी जाती है, आज भी हम लोग तुरंत पहचान जाते हैं। या फिर कमल शर्मा जी की आवाज़ हो, उनका सलीका, इन आवाज़ों ने रेडियो को सिर्फ माध्यम नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा बना दिया। पूर्णिमा,
1: बिल्कुल कौशल, और देखो ना ये आवाज़ का ही तो जादू है कि लोग सुनते सुनते पहचान जाते हैं, और आज हमारी हम सब की जो आवाजें हैं वो भी हमारे लिसनर्स हमें जब मेल करते हैं तो हमारी आवाज से पहचान जाते हैं, कि हम बताएं ना बताएं वो जान जाते हैं कि आज स्टूडियो में कौन है जो उनके साथ यूं रूबरू है।
0: और सबसे ज्यादा हम लोगों को पता तब चलता है जब हम लोग फोन इन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करते हैं हेलो कानपुर की, उसमें बस हेलो कानपुर बोलते ही लोग कह देते हैं कि आप कौशल मैम बोल रही है या आप पूर्णिमा मैम बोल रही है। तो ये हमारी आवाज ही हमारी पहचान बन गई, हमें नाम बताने की कोई भी जरूरत नहीं होती है ना।
1: तो दोस्तों, रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यही रही है कि यहाँ चेहरे नहीं, एहसास पहचाने जाते हैं, लोग आवाज से रिश्ता जोड़ लेते हैं। कोई खेतों में ट्रांजिस्टर लेकर चलता था तो कोई रात को तकिए के पास रेडियो रखकर सोता था, और कोई सिर्फ इसलिए जागता था कि उसका पसंदीदा गीत बजने वाला है।
0: बिल्कुल, विविध भारती सिर्फ चैनल नहीं, भारत की

0: धड़कनों की आवाज है पूर्णिमा, और आज डिजिटल दौर में भी रेडियो की चमक कम नहीं हुई। सबसे खास बात तो ये है, एफएम हो, मोबाइल ऐप हो या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, आकाशवाणी और विविध भारती आज भी नई पीढ़ी को अपनी परंपरा और संगीत से जोड़ रहा है।
1: तो कौशल, ये डिजिटल युग का ही तो जादू है कि हमारे लिसनर जो सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं या हम तक जो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा देते हैं, और ये भी बस इसी वजह से पॉसिबल हुआ है कि हम इस डिजिटल एरा में हैं।
0: और पूर्णिमा, तो अब आकाशवाणी पे मुझे मालूम है कि कुछ पुराने गीत जो बजते हैं ना, और वो लोगों की धड़कनों में एकदम बसे हुए हैं, तो मुझे पता है, कुछ कुछ याद है कि कौन कौन से गीत ये विविध भारती में ज्यादा बजते हैं। उनमें से एक गीत मैंने आज चुन के रखा है और मुझे पता है कि हमारे लिसनर्स को भी जरूर पसंद आएगा।
1: बिल्कुल, तो बिना किसी देरी के हम
0: प्ले कर देते हैं ये सॉन्ग।

0: और पूर्णिमा, अपने श्रोताओं की पुकार पर तो हमेशा हम भी हाजिर होते हैं, हमेशा आकाशवाणी हाजिर रहता है।
1: बिल्कुल।
0: और वैसे पूर्णिमा, बात अब करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो अपने आप में सादगी भरे व्यक्तित्व के लिए बहुत ही ज़्यादा याद किए जाते हैं ना, और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी नेता नीलम संजीवा रेड्डी को आज हम उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल कौन साहब, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के ऐसे छठे राष्ट्रपति थे, उनकी सबसे खास बात यही रही कि वो देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, है ना। उनकी पहचान एक शांत, सरल और ईमानदार नेता के रूप में हमेशा रही।
0: बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में जन्मे नीलम संजीवा रेड्डी बहुत कम उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे पूर्णिमा, और महात्मा गांधी के विचारों का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। देश सेवा के लिए उन्होंने कई संघर्ष भी किए।
1: स्वतंत्रता के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी निष्पक्षता की काफी सराहना भी हुई।
0: और जब वे राष्ट्रपति बने तो उन्होंने हमेशा संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोच्च महत्व दिया। उनका पूरा राजनीतिक जीवन सादगी और गरिमा का उदाहरण माना जाता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं कि सच्चा नेतृत्व हमेशा विनम्रता और सेवा से पहचाना जाता है।

0: वो देश मेरे, और जब जहां देश की बात आती है ना, तो जज्बा अपने आप ही अंदर से जोश मारने लगता है देश प्रेम
1: बिल्कुल
0: का।
1: सच कह रही हूँ कौसर। और इस सॉन्ग के साथ साथ हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ मेल्स आ चुके हैं।
0: बिल्कुल। और ये मेल है
1: अनिल कटियार जी
0: अनिल
1: की।
0: कटियार जी की है, और जहाँ तक मुझे इनके मेल्स पढ़ते हैं, इनका यहाँ पर मुझे एड्रेस नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जहाँ तक है मदारीपुर से हैं। और इन्होंने लिखा है, कौसर जी एवं पूर्णिमा जी सादर सप्रेम नमस्कार जी, आपको भी
1: आपको
0: हमारा बहुत
1: भी
0: बहुत नमस्कार।
1: बिल्कुल
0: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमनवा प्रोग्राम में आप लोगों ने चार चांद लगा दिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोग हम जनों तक पहुँचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी तन्मयता से, आप सभी श्रोता जो सुनते हैं प्रोग्राम, उसके बाद अपनी जो राय जो शेयर
1: बिल्कुल
0: करते हैं हमसे।
1: बहुत खुशी होती है। और ऐसे ही एक मेल हमारे पास है, ये है जाकिर की। जाकिर मंसूरी रेडियो क्लब से, यानी कि बाजार रोड मुंगीसापुर से इन्होंने मेल की है। मोहम्मद जाकिर मंसूरी और कमरुन निशा ने इन्होंने लिखा है कि कौसर जी और पूर्णिमा जी, आपको आदाब सलाम नमस्ते।
0: जी आपको भी हम दोनों का आदाब सलाम नमस्ते।
1: उन्होंने लिखा है कि आज का कार्यक्रम बेहद बेहद पसंद आ रहा है, और इन्होंने हमारे वो जो मोबाइल वाला एक
0: एआई
1: टॉपिक
0: वाला
1: है,
0: जो हमारा विषय था,
1: उसके लिए लिखा है कि मोबाइल ने कहीं ना कहीं हमें अपनों हम हमारे जो अपने हैं उनको अपनों से दूर कर दिया है।
0: जी बिल्कुल, अपनों से दूर कर दिया है। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना के फिर अपनों को करीब ले आए, ये
1: बिल्कुल
0: तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना।
1: बिल्कुल कि अपने जो बिजी वक्त है ना, उसे हम कुछ वक्त अपनों के साथ जरूर बिताएं।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने सेगमेंट स्वयं सहायता समूह में, जिसमें आज बात करेंगे।
1: आज हम बात करेंगे रायबरेली के हरचंदपुर ब्लॉक के हिडेन गांव में महिलाओं ने संतोषी माँ स्वयं सहायता समूह के जरिए एक ऐसी मिसाल पेश की जिसने गांव की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM के तहत जुड़ी इन महिलाओं ने सिर्फ घर संभालने तक ही इन्होंने खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि जैविक खेती और कंपोस्ट खाद निर्माण के क्षेत्र में भी इन्होंने आगे कदम बढ़ाया।
1: बिल्कुल, और इस समूह की महिलाओं को पहले कंपोस्ट खाद बनाने का विशेष जो है प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बताया गया कि खेतों और घरों से निकलने वाले जो जैविक कचरा है, यानी सूखी पत्तियां, गोबर, रसोई का जैविक अपशिष्ट और फसल अवशेष, इन सब को सड़ा करके किस तरह से प्राकृतिक खाद तैयार की जाती है।
0: और इसके बाद महिलाओं ने 18 दिवसीय कंपोस्ट खाद निर्माण अभियान भी शुरू किया, और इसके लिए उन्होंने किसी बड़े निवेश का इंतजार नहीं किया कि हाँ मेरे पास एक बड़ी रकम हो जाए उसके बाद हम इसको शुरू करें, बल्कि अपनी सामूहिक बचत और आत्मविश्वास और सबको मिलाकर इन्होंने वो जो ये चार सारी चीजें हैं इसको शुरू किया, और कंपोस्ट खाद बनने में गांव के किसानों को भी फायदा मिलने लगा। महिलाओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को ये भी समझाया कि जैविक खाद ना सिर्फ सस्ती होती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण दोनों

0: के लिए भी बेहतर होती है।
1: बिल्कुल, तो आर्थिक रूप से संपन्न हैं आज के महिलाएं, और ये तय है कौशल कि जब महिलाएं एकजुट होकर बदलाव की ठान लेती हैं ना, तो गांव की मिट्टी भी सोना उगलने लगती है। और रायबरेली के हरचंदपुर की संतोषी माँ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज इसी बदलाव की मिसाल बन चुकी हैं।
0: और महिलाओं ने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं पूर्णिमा की, उनको वीरांगना कहा जाता है। महिलाओं की ताकत आजकल तो दुनिया दुनिया में सर्वोपरि मानी जा रही है।
1: कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं पीछे हैं कौशल,
0: बिल्कुल अपने झंडे गाड़ चुकी हैं अपनी सफलता के।
1: और देखो जरा घड़ी पर एक नजर डालो, 11:53 हो चले हैं।
0: तो बिल्कुल अब हम आ चुके हैं अपनी हमनवा की रसोई की तरफ। और क्योंकि आज है मतलब कि वर्ल्ड मिल्क डे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा ही एक रेसिपी अपने श्रोताओं के साथ शेयर करी जाए। तो बस ठंडी ठंडी केसर पिस्ता ठंडाई की रेसिपी लेकर आ गए हम।
1: बिल्कुल, तो जल्दी से उठाइए पेपर और कलम और नोट कीजिए कि क्या क्या सामग्री चाहिए। 1 लीटर ठंडा दूध, 10 से 12 बादाम, 5-6 काजू, 8 से 10 पिस्ता, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच खसखस, 1/2 चम्मच इलायची, 5 से 6 धागे केसर के, 1 छोटा चम्मच केवड़ा जल और स्वाद अनुसार चीनी और साथ ही कुछ आइस क्यूब्स।
0: हाँ, आइस क्यूब्स आप अगर ठंडा पसंद करते हैं खूब तो बस डालिएगा। और आप क्या करना है आपको कि सबसे पहले बादाम, पिस्ता, काजू, सौंफ और खसखस को करीब 2 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। और इनमें बादाम के छिलके जो होते हैं ना उनको उतार लेना है और दूध के साथ सभी को मिलाकर पीस लेना है। इसके बाद एक बड़े बर्तन में ठंडा दूध लेना है और उसमें इस पेस्ट को मिला देना है। और अब क्या करना
1: अब
0: है,
1: क्या करना है, अब चीनी, इलायची पाउडर, केसर और केवड़ा जल इन सबको डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। फिर तैयार है आपकी टेस्टी और ठंडी केसर पिस्ता ठंडाई। इसे सर्व करते टाइम उसमें 3 से 4 आइस क्यूब्स या जितने आप चाहते हैं डाल दें, और ऊपर से बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम भी डाल सकते हैं
0: गार्निशिंग के लिए। बिल्कुल, गार्निशिंग तो आपके ऊपर है ताकि आपके जो गेस्ट हैं वो देख के बोले हाँ क्या खूबसूरती भी ऊपर से है और उसका क्या अंदरूनी उसका मतलब स्वाद भी है,
1: मतलब जो अंदाज से पेश करने का वो कितना खूबसूरत है।
0: बिल्कुल, मेहमान नवाजी ही तो मशहूर है हमारे भारत देश की। और इसके फायदे भी हैं कि ऐसी गर्मी में फायदे तो भाई क्या ही गिनाए जाएं। तो ये बॉडी को ठंडा रखता है, तरोताजा रखने में हेल्प करता है, साथ ही दूध और ड्राई फ्रूट जो होते हैं ना वो बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। सौंफ और इलायची जो इसमें रहती है वो शरीर और दिमाग दोनों को फ्रेश फील कराते हैं। दूध जो है वो बोन्स को स्ट्रांग करता है, साथ ही सौंफ और खसखस गर्मियों में पेट के लिए बहुत आरामदेह। तो बस गर्मियों में आपके जब भी कोई गेस्ट आए तो ये ठंडी ठंडी ठंडाई से उनका स्वागत करिए और सच में उनका दिमाग एकदम ठंडे के साथ हैप्पी भी हो जाएगा। फिलहाल तो हम आपके लिए ये हैप्पी हैप्पी वाला बहुत ही खूबसूरत
1: और उस सॉन्ग को सुनवाने से पहले कौशल जी, तुमने हमारी मेल पढ़ी थी उसका एक उन्होंने रिप्लाई भेजा है कि कौशल जी, पूर्णिमा जी क्या बात है, मैंने पता नहीं लिखा था, यानी अनिल कटियार जी ने मेल किए, पता नहीं लिखा था फिर भी आप लोगों ने मेरा पता बता दिया।
0: तो यही तो जुड़ाव है हमारा और श्रोताओं का कि हम अपने श्रोताओं की हर चीज याद रखते हैं।
1: बस तो दिल से दिल का है ऐसा ही कुछ कनेक्शन।
0: और फिलहाल तो आपका कनेक्शन इस गाने के साथ जुड़ रहे हैं।
1: बिल्कुल।

0: जी भैया।
1: तो श्रोताओं को भी ये गाना सुन के ठंडाई की याद आ गई होगी जो हमने रेसिपी बताई थी।
2: बिल्कुल कौसर, ठंडाई भी याद आई, ठंडाई की मस्ती भी याद आई इस सॉन्ग को सुनकर के, और इसी के साथ साथ हमारा जो वक्त
1: इसी मस्ती के साथ
2: इसी मस्ती के साथ अब हमारा यानी कौसर और पूर्णिमा का जो ये सफर था हमनवा के साथ वो यहीं पर होता है संपन्न। तो रखिए अपना खास ख्याल और कौसर रहेंगे दिन में आपके साथ।
1: 3 बजे मैं आपसे फिर से मिलूंगी म्यूजिक आर प्रोग्राम के साथ, तो बस जुड़ जाइएगा 102.2 FM रेनबो कानपुर से। और फिलहाल अभी के लिए आपसे कहते हैं कि नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक 72 जिलों के 1011 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई, जिसमें लगभग 90% अभ्यर्थी शामिल हुए। ये परीक्षा योगी सरकार की पारदर्शी और तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली का एक सफल उदाहरण है, जिसकी निगरानी एआई फेस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, 22,000 सीसीटीवी कैमरों और एक लाइव कमांड कंट्रोल सिस्टम से की गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कुल 4,44,958 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से लगभग 90% ने दोनों पालियों में भाग लिया। उत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक प्रवीण पांडे ने कल लखनऊ एवं आलमनगर रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। लखनऊ स्टेशन पर हालिया प्लेटफॉर्म शेड हादसे के बाद प्रवीण पांडे ने प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी पंकज सिंह के साथ लखनऊ स्टेशन पर निर्माणाधीन एयर कॉनकोर्स परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, संरक्षा मानकों के अनुपालन तथा यात्रियों की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध खानपान सेवाओं, कैटरिंग स्टॉलों, खाद्य गुणवत्ता, स्वच्छता एवं रेल नीर की उपलब्धता का भी जायजा लिया तथा यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने पर बल दिया। सुल्तानपुर जिले के मेधावी छात्र आर्यन गुप्ता ने जेईई एडवांस 2026 परीक्षा उत्तीर्ण कर आईआईटी में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया है। आर्यन की सफलता से परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। उनकी माता नीलम गुप्ता परिषदीय विद्यालय में शिक्षिका हैं, जबकि पिता भरत गुप्ता इंजीनियर हैं। योगी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रॉकेट लर्निंग मॉडल लागू कर रही है। वाराणसी जिले के लगभग 3700 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, 1,20,000 बच्चे और 15,000 अभिभावक इस अभियान से जुड़े हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की पहल पुस्तक के आधार पर वर्ष भर का विषयवार पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों से बच्चों में स्कूल के प्रति बढ़ रही है और ड्रॉप आउट की संभावना कम हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

जी 12:03 हो चुके हैं और हाजिर है तरन्नुम लेकर प्रोग्राम शत्रुपा। और बहुत सारे इमोशन आपको जगाना है अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि महिलाएं इस वक्त किचन में होती हैं या फिर ऑफिस में होती हैं या फिर अपने जहां पर भी उनका वर्क प्लेस होता है वहां पर होती हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए इमोशन जगाना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें करेंगे इस प्रोग्राम में, सुनते रहिए द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

हाँ बिल्कुल, जब भी आप डांस कर सकती हैं, जब भी आप मूड में रह सकती हैं, जब भी आप झूम सकती हैं, जब आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही फाइन होनी चाहिए। और अक्सर ये होता है महिलाओं में खासकर देखा जाता है कि वो अपनी सेहत को बहुत नज़रअंदाज करती हैं, क्योंकि सुबह का टाइम नाश्ते का टाइम है, दोपहर का टाइम खाने का टाइम है, और फिर दोपहर के बाद शाम के खाने की बात है, फिर बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर हस्बैंड को ऑफिस से आने का टाइम हो जाता है। ऐसे में अक्सर आप देखिए कि महिलाएं किचन से निकलती हैं, पसीना पोंछती नजर आती हैं, कहती हैं भाई अपने लिए टाइम ही कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें स्क्रॉल करती हैं, मोबाइल पे देखती हैं, रील्स देखती हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन टाइम कहाँ है। और ये टाइम जो है ना, ये जब आप टाइम को आपकी जो स्किप कर देती हैं अपनी हेल्थ के टाइम को, अपनी हेल्थ को देखने वाले टाइम को, तो फिर आप परेशानियों में पड़ जाती हैं, या कह सकते हैं परेशानियों में मुबतला हो जाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने फैमिली की सेहत और खुशियों का तो पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात अपनी हेल्थ की आती है तो उसे नज़रअंदाज कर देती हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज मंडे भी है और आज जून की शुरुआत भी है, और आज क्यों ना ऐसी बात कर ली जाए कि हेल्दी वुमेन हेल्दी फैमिली। और कहते हैं ना कि जो एक बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही हेल्दी महिला होती है, औरत होती है, वही एक स्वस्थ परिवार और समाज की नींव होती है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये हम खुद अपने से भी कह रहे हैं, और जो हमारी फीमेल लिसनर्स हैं जो इस वक्त बहुत ध्यान से प्रोग्राम सुन रही हैं, उनको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि लोग कहते हैं, अक्सर लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट की बात कर ली जाए। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह हम आपसे ये कहें कि भाई आप ये सब करिए, वो काम कीजिए, ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, आप कहेंगे नहीं, ये सारी बातें बहुत हैं। अगर आपको सुबह की शुरुआत करनी है तो क्यों ना सुबह आप हल्की चीज़ें ही भले लीजिए, लेकिन वो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती हैं। रात में सिर्फ आपको क्या करना है, 2 बादाम को भिगो देना है, ये तो आप कर ही सकती हैं ना, 2 बादाम भिगो दीजिए और 12 से 14 काली किशमिश के दाने उसमें भिगो दीजिए, 1 अंजीर भिगो दीजिए, और पम्पकिन सीड्स आते हैं थोड़े से, वो भिगो दीजिए। लेकिन अगर हाँ, अगर आपकी कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी है जिसमें आपको ये सारी चीजें बनाए, तो एक बार डॉक्टर से आप कंसर्न कर सकती हैं। ये सारी चीजें आप रात भर भिगो के रखिए, जब वो सुबह उठेंगी आप देखेंगे कि वो फूल गई हैं, तो आप किचन में अपना काम भी करती रहिए।

0: 7।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
6: हैंगओवर
5: Only 100.7 FM Rainbow।

बहुत दिनों बाद जब कोई मिलता है, कोई दोस्त मिलता है या कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाता है या फोन आ जाता है और अक्सर हम लोग पूछते हैं और बताओ सब बढ़िया, तो महिलाएं हमेशा ये कहती हैं हाँ ठीक ही है बस, अब उसमें क्या बताएं। तो सामने वाला पूछता है कि भाई ठीक ही है से क्या मतलब है? अरे बस ठीक है, बस ये बड़ा दर्द करता है, कंधों में बड़ा दर्द रहता है, सर घूमता रहता है, चक्कर आते रहते हैं, उठने का दिल नहीं करता है, पैरों में बहुत दर्द रहता है। अच्छा भाई तो कुछ खाने पीने में कुछ लो, अच्छा सा कुछ अच्छा सी डाइट लो, क्या करें टाइम ही कहाँ मिलता है, टाइम ही तो नहीं है बस। लेकिन ये जो वक्त आप कह रही हैं ना कि टाइम नहीं है, इसी में आपको अपने लिए टाइम निकालना है। और वही बात है ना कि जिंदगी लोग जीते हैं तो किस लिए जीते हैं? खाने के लिए जीते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीते हैं, कपड़े पहनने के लिए जीते हैं, घूमने के लिए जीते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि भले ही आपके पास दौलत ना हो लेकिन सेहत का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि बैलेंस्ड डाइट अगर आप लेते हैं, यानी हम अपनी महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें अपने खाने

में आपको प्रोटीन की बहुत जरूरत है, विटामिन्स की बहुत जरूरत है, आयरन है, कैल्शियम की एक कहते हैं ना कि एक पर्याप्त जो मात्रा है वो बहुत जरूरी है अपनी अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में शामिल करने के लिए। हरी सब्जियां हैं, फल है, दूध है, दही है, दाल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी और आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और देखिए भाई, अगर भारत की हम बात करें, अपने देश की बात करें, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनमें खास तौर पर आयरन की कमी होती है, यानी अनीमिया की शिकार वो जल्दी हो जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे थकान होती है, कमजोरी होती है, चक्कर आते हैं, और ये सारी चीजें जब होती हैं तो फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ दौड़ लगाते हैं। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसमें दवाएं भी देते हैं, उसमें सप्लीमेंट्स भी देते हैं, और करना आपको क्या है, वही जो आप अगर अभी कर लेंगी अपनी सेहत को, अभी ही कह सकते हैं ना, स्टोर करके रखेंगी अपनी एनर्जी को, तो फिर आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने की जरूरत क्या है, बताइए। तो इसलिए बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी है वो मांग करती है, डिमांड करती है कि भाई हमें भी अपना ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है। और आप रेनबो को एंजॉय करते करते कुछ ऐसा हल्का फुल्का अपने लिए बना लीजिए, कुछ नहीं है तो कुछ फ्रूट्स ही खा लीजिए, केला ही ले लीजिए आप, या कोई ऐसी चीज जो बहुत जल्दी जल्दी आप ऑफिस में है या कहीं है तो वो एटलीस्ट आप खा तो सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी डाइट को देखना, अपनी हेल्थ को देखना, क्योंकि जब आप सही रहेंगी तभी आप फैमिली को देख पाएंगी, तभी आप अपने बच्चों को देख पाएंगी, और तभी फिर आप और जगह पर पार्टी है या कहीं शादी है या कहीं किसी का कोई भी फंक्शन है तो आप मूव कर सकते हैं। 12:20 प्रोग्राम शत्रुपा तरनु में आपके साथ, सुनते रहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
5: हर

12:32 हो चुके हैं दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है शद्रुपा तरन्नुम है आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं वुमेन्स हेल्थ के बारे में। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक महिला ही समझ सकती है, और कहते भी हैं कि महिला ही महिलाओं को अच्छे से समझ सकती हैं। अब देखिए, कभी कभी ये भी होता है कि आप कुछ और कह रहे हैं किसी से, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, या सामने वाले ने आपको कोई ऐसी बात बोल दी जो आपके जहन में, आपके मन में, मस्तिष्क में बस कौनती रहती है, गूंजती रहती है। आप किचन में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग से वो बात नहीं निकल रही है, और आपका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि बैलेंस नहीं रह पाता। मानसिक संतुलन जो है वो बहुत जरूरी है, और आप समझ गई होंगी कि मेरा इशारा किस तरफ है। मेरा इशारा है मेंटल हेल्थ की तरफ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो घर में होती हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे होती हैं, या फिर ऑफिस में होती हैं, या फिर आप कहीं पर भी काम करती हैं, या कोई भी हुनर है आपके अंदर जो आप करने जाती हैं या घर में करती हैं, लेकिन आप दिन रात मेहनत कर रही हैं, लेकिन आपके दिमाग से वो बातें नहीं निकल पाती हैं जो बहुत पहले किसी ने कही हो, या फिर वो बातें जो बहुत किसी ने हंसी मजाक में कह दी हो और आपने उसको दिल पे ले लिया हो। बस यहीं पे गलती करती हैं आप, क्योंकि हमेशा ये होता है कि सामने वाला आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपके छोटे से नन्हे से मासूम के दिल को नहीं देख पा रहा है। उसने बोल दिया क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी है, वो उसका व्यक्तित्व है। आपका व्यक्तित्व क्या कहता है? आपका व्यक्तित्व ये कहता है, आपकी पर्सनालिटी आपसे ये कहती है, आपका जो माइंड है आपसे वो ये कह रहा है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, सामने वाला जो है वो आप

नहीं है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, अपने मानसिक संतुलन को बना के रखना है, अपने मेंटल पीस को हमेशा सहेज के रखना है, क्योंकि जब दिमाग एकदम काबू में रहता है, दिल एकदम काबू में रहता है, तभी हम सारे काम अच्छे कर पाते हैं। और हर टाइम ये उदासी, ये चिड़चिड़ापन, ये लोगों से कटना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, लाइफ को खुल के जिए। देखिए अभी की आप बात लीजिए, 12 बजा था और 12 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ था और देखते देखते 34 मिनट निकल गए। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त है बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर हम ये सोच लें कि हमारी लाइफ भी है वो भी गुजर रही है, जो ज़िंदगी है वो भी गुजर रही है। देखते देखते जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और अब देखिए जून आ गया, और इसी तरह साल दर साल गुजरते चले जाएंगे। लेकिन हमारी और आपकी सेहत अगर एक बार बिगड़ गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी। उसी तरह मेंटल हेल्थ के बाद अगर हम बात करें तो महिलाओं की फिजिकल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। अब फिजिकल हेल्थ में लोग कहते हैं कि भाई इतना तो काम करते हैं, सुबह उठते हैं, ये करते हैं, वहां जाते हैं, यहां जाते हैं, अब टाइम ही नहीं मिलता। देखिए फिर टाइम की बात आ गई, और अक्सर लोग कहते भी है कि इतना काम तो करते हैं लेकिन देखो वेट की कमी नहीं होता, कुछ भी नहीं खाते तब भी देखो इतना वेट बढ़ गया है। तो वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि एक जो एक्सरसाइज होती है वो मतलब एक्सरसाइज है, जो आपके घर के काम है वो घर के काम है। कैसे वॉक करना है आपको, कितनी दूर तक आपको टहलना है, कितनी दूर तक आपको दौड़ना भागना है, ये सारी चीजें अलग मैटर करती हैं। और जो घर के काम हैं, जो ऑफिस के काम हैं, वो तो अलग मैटर करते हैं। तो फिलहाल ये बहुत सीरियस सीरियस बातें मैं नहीं करनी है, बहुत अच्छा सा एक रॉकिंग सा नंबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप खूब अच्छे से अपने को कहते हैं ना शेक कर लीजिए, और बाद में फिर ये सोचिएगा कि तरन्नुम ने आज बिल्कुल सही कहा था, हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर ध्यान देना है। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपकी जो लाइफ है ना वो एकदम नई चेक हो जाएगी, बिल्कुल इस ट्रैक की तरह।

0: गोल्ड टीम की सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: और 12:39 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा तरन्नुम में, आपके साथ सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की। बोले तो FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL।

जी चिकरी चिकरी 12:43 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा तरन्नुम है आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं वुमेन्स हेल्थ को लेकर। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, टाल देते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हमारी और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनको टाल मटोल करना या इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना, ये सारी चीज़ें हमारे और आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं। तो जैसा कि हमने कहा आपसे कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को ये मत सोचिए कि सामने वाला कहाँ तक लोगों को आप खुश करते रहेंगे, कहाँ तक हर एक का आप ध्यान रखते रहेंगे। कहीं ना कहीं हर फैमिली में, हर रिलेशन में, हर दोस्ती में एक ऐसा ज़रूर बंदा होता है जो आपसे खुश नहीं होता। अब क्यों नहीं खुश होता? क्योंकि आपका उसका नेचर नहीं मैच करता। क्यों नहीं खुश होता? क्योंकि आपकी थिंकिंग उसकी थिंकिंग अलग है। तो कहाँ तक आप उसकी तरह नहीं बन सकती तो वो भी आपकी तरह नहीं बन सकता। मान लीजिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत ही आप नरम दिल रखती हैं, लेकिन सामने वाला आपकी तरह दिल तो नहीं रख सकता।

वाला आप की तरह सोच तो नहीं रख सकता, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको अपनी सोच खुद के लिए अच्छी रखनी है, हमेशा अपने लिए सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और कभी कभी तो लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसको कुछ भी नहीं करना है लेकिन आपको खुश रहने के लिए वो काम करना है। मान लीजिए आपको डांस का बड़ा शौक था, अब आप डांस नहीं करते क्योंकि आपको लगता है अरे बच्चे बड़े हो गए, अरे बड़ा काम है, लेकिन आपको डांस अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल डांस कीजिए आप। अगर आपको लगता है कि गाना गाना है, कहाँ गाना गाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर वही बात कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लोगों को अपनी जिंदगी में लॉग इन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब फिर हम अपने लिए थोड़ा सा एक कॉर्नर जो होता है ना, एक गोशा जिसे कहते हैं, वो हम अपने लिए सिक्योर करते हैं कि हाँ ये मेरी खुशी का एक छोटा सा कॉर्नर है, एक छोटा सा गोशा है, एक छोटा सा खजाना है जिसमें हमें अपने आप को खुश रखना है। तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत जरूरी है कि घर और ऑफिस के काम के बीच में अक्सर जो महिलाएं होती हैं वो एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं, लेकिन अगर आप ये ठान लें कि हमें दिन में सिर्फ 30 मिनट की वॉक करनी है, योगा करना है या फिर कोई भी हल्की एक्सरसाइज व्यायाम करना है, तो आपकी जो बॉडी है, शरीर है, वो तंदुरुस्त रह सकता है। और ऐसा नहीं है कि योगा, अब अभी आप मान लीजिए ऑफिस में हैं तो अब एकदम गहरी गहरी सांस ले सकती हैं, बहुत गहरी गहरी सांस ले सकती हैं, बहुत ही अच्छी कोई ऐसी बात जो आपको मुस्कुराहट दे जाए, आप ये भी सोच सकती हैं। साथ ही साथ आप पैरों को थोड़ा सा मूव कर सकती हैं, हाथों को एक्सरसाइज कर सकती हैं, थोड़ा सा रिवॉल्व कर सकती हैं अपनी बॉडी को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस एक आम प्रॉब्लम बन चुकी है। महिलाएँ घर और काम दोनों की जिम्मेदारियां निभाती हैं जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है और बढ़ता है, इसलिए अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना बहुत जरूरी है। अपनी पसंद की एक्टिविटीज करिए, किताबें पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, परिवार के साथ समय बिताइए, और इसी को कहते हैं जिंदगी। और जिंदगी किसी की भी बहुत स्मूथ नहीं होती, कहते ना कि जब हम बहुत एक अपने एक्सप्रेस वे देखा होगा, एकदम भागती रहती है लाइफ, बहुत तेज गाड़ी चली जा रही है, लेकिन स्पीड ब्रेकर जरूरी है क्योंकि एकदम लगातार अगर हम लोग भागते रहेंगे जिंदगी में, सिर्फ भाग रहे हैं, भागने से खुशी खुशी मिल रही है और अगर गम नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो भी एक प्रॉब्लम है कि भाई, क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएंगे, तो फिर हम और आप दूसरों के दुखों को कैसे समझेंगे। तो दुख का आना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि सुबह के बाद शाम का आना जिस तरह लाजमी है, जरूरी है, उसी तरह खुशी के बाद दुख या दुख के बाद खुशी का आना भी लाजमी है। फिलहाल एक ट्रैक और आप तक सुनते रहिए रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: कहानी है बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
3: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
4: जोर का झटका है जोरों से लगा लगा,
2: अंदाज है सबसे निराला,
3: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
2: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

और 12:53 हो चुके हैं। प्रोग्राम अभी तक चल रहा है, शत्रुपा और तरन्नुम है आपके साथ और अगले कुछ घंटे आपके साथ फिलहाल हम रहने वाले हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं वुमेन्स हेल्थ की, क्योंकि प्रोग्राम शत्रुपा है और आज जो मंडे है और आज का सेगमेंट भी यही है। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ एक और आपसे बतानी है और वो ये है कि अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको ज़रूर करवाना है। मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में एक अलग सी लग रही है, कहीं पे दर्द है, कहीं पे आपको गांठ महसूस हो रही है, तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, उसको दिखाइए, चेकअप कराइए कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है। और अक्सर क्या होता है कि समय समय पर, वक्त वक्त पर आपको ब्लड प्रेशर की जांच करानी है, शुगर लेवल है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी जांच करवाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब खास बात यह है कि आपको जो चलते चलते बतानी है वो ये है

कि बहुत ही भरपूर यानी पर्याप्त जो नींद है वो लेना महिलाओं को बहुत जरूरत है। अब देखिए, आप कहेंगे कि भाई सुबह से लेके शाम तक काम करते रहते हैं, अब रात में थोड़ा टाइम मिलता है तो मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल देखते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप सुबह से लेके शाम तक आपका दिमाग भी थका हुआ है, आप फिजिकली भी थकी हुई हैं, बहुत सारे आपने काम भी निपटाए हैं, और अब वक्त है कि आप बहुत से बहुत 20 मिनट, आधा घंटा या बहुत हो गया तो 1 घंटा आप मोबाइल चला लीजिए, लेकिन 11 बजे के बाद अगर आप मोबाइल से दूरी बना लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है कि एक जो हेल्दी महिला होती है, कह सकते हैं व्यस्क जो महिला होती है, उसको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारा पानी पीना ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी हैं कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, और अब इसीलिए तो हम महिलाएं जो हैं वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, चाहे विज्ञान हो, खेल हो, कोई भी काम हो, लेकिन देखिए आप महिलाएं करती हैं, लेकिन तभी आप कर सकती हैं जब आप अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को आप प्राथमिकता देंगी। नियमित आपको व्यायाम करना है, आज आप ये शपथ ले लीजिए कि आपको नियमित व्यायाम करना है, साथ ही साथ आपको बैलेंस डाइट लेनी है, और साथ ही साथ समय समय पर आपको हेल्थ चेकअप करवाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने आज हमारे साथ शपथ ली है, आपने कहा है, ओथ ली है कि हम ऐसा करेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि जो हमारी फीमेल लिसनर्स हैं इस प्रोग्राम को सुनती हैं और बहुत ही ध्यान देती हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देती हैं, अपने खाने पीने पर ध्यान देती हैं, अपनी खूबसूरती पर ध्यान देती हैं, और देना भी चाहिए। फिलहाल अब ध्यान दिला दें आपको कि 12:55 हो चुके हैं, प्रोग्राम शत्रुपा को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाज़त, तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है होठों पे तेरी बात, और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके घर में क्या कोई चुगलखोर है, आपके घर में क्या कोई ऐसा है जो चुगली करता है, कि बहुत सारे लोग होते हैं घर में कि भाई बहन की चुगली करता है, आने दो मम्मी को बताएंगे, आने दो पापा को बताएंगे, या बहन को ही बताएंगे, बहन बहन बताना नहीं, प्लीज मत बताना, लेकिन वो बता देते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई चुगलखोर है तो आप हमें आंसर कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर मेल करके। फिलहाल आपके मेल का हमें इंतजार है, और आपको इंतजार है खूबसूरत ट्रैक का जो धीरे धीरे आ रहा है आप तक।

नमस्कार। दोपहर के 1 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। माध्यमिक शिक्षा विभाग की परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सम्मान समारोह में 223 छात्रों का सम्मान किया जा रहा है। इसमें छात्रों की संख्या 85 है, छात्राओं की संख्या 138 है, यानी छात्राएं मेरिट में ज्यादा आई है। प्रदेश स्तर पर हाईस्कूल की परीक्षा में 115 बच्चों में 34 छात्र हैं, 81 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट की टॉप की सूची में देखें तो छात्र 9 है, छात्राएं 14 है। ये संख्या बताती है कि छात्राएं ज्यादा मेहनत करती हैं और ज्यादा मेहनत करके ज्यादा अंक प्राप्त करने के सामर्थ्य भी रखती हैं। मेरा मानना है कि बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। ये इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश बहुत स्पष्ट आ गया हम सबके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए लोगों से मुलाकात की, उनके प्रार्थना पत्र लिए और उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री ने सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण समय सीमा के भीतर हो, विलम्ब होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाए। सीएम योगी ने कुछ बच्चों से शिक्षा के बारे में भी पूछा और अभिभावकों से कहा कि बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा ही सशक्त भारत की नींव है। प्रदेश में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक 72 जिलों के 1011 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई, जिसमें लगभग 90% अभ्यर्थी शामिल हुए। यह परीक्षा योगी सरकार की पारदर्शी और तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली का एक सफल उदाहरण है, जिसकी निगरानी एआई, फेस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, 22,000 सीसीटीवी कैमरों और एक लाइव कमांड कंट्रोल सिस्टम से की गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कुल 4,44,958 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से लगभग 90% ने दोनों पालियों में भाग लिया। योगी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रॉकेट लर्निंग मॉडल लागू कर रही है। वाराणसी जिले के लगभग 3700 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, 1,20,000 बच्चे और 15,000 अभिभावक इस अभियान से जुड़े हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की पहल पुस्तक के आधार पर वर्षभर का विषयवार पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों से बच्चों में स्कूल के प्रति रुचि बढ़ रही है और ड्रॉप आउट की संभावना कम हो रही है। पीलीभीत जिले में आज एक जिला एक नदी योजना के तहत ग्राम पंचायत शेरपुर मकरनपुर के चंदुया घाट पर पुनरुद्धार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने फावड़ा चलाकर खुदाई का श्री गणेश किया। इससे पहले बंगाली समुदाय के लोगों ने विशेष शंख ध्वनि निकालकर पूजा अर्चना की। श्रमदान के लिए काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और श्रमदान किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज, घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक हुई।

0: होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और 1:04 हो गए हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, लेकिन उससे पहले मेरी भी सुन लीजिए। और सुनना ये है आपको कि आपको बताना है कि आपके घर में क्या कोई चुगलखोर है, क्या कोई स्निचर है? अगर है तो आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन के ऑडिटोरियम में मुनक़दा होनहार तलबा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं पूरे नतायज को देख रहा हूं। खास तौर पर आज यहां मुनक़द तकरीब में जहां 223 तलबा को इजाज़त से नवाजा जा रहा है, जिनमें से 85 लड़के और 138 लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा लड़कियों ने मैरिट हासिल किए, जबकि लड़कों ने कम मैरिट हासिल की है। ये नंबर बताते हैं कि लड़कियां ज्यादा मेहनत करती और मेहनत के जरिए अच्छे नंबर हासिल करने की सलाहियत रखती हैं। ये लड़कियों के लिए भी एक तहरीक होना चाहिए कि लड़कियां घर में अपने खानदान की किफालत करते हुए भी अच्छे नंबर हासिल कर रही हैं।
1: इस समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और परिणाम हमेशा सुखद होता है और सुखद होने की अनुभूति आज आपको यहाँ पर इस सम्मान समारोह के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा, जिसमें 223 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश हम सबके सामने है।
0: कई अजला में तूफान, बारिश और खराब मौसम के वाकयात के पेश नजर उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर, मुतल्लिका महकमों को मुसलसल चौकसी बरकरार रखने और किसी भी आफत की सूरत में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे शहरी दिफा के काम का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए, स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: दरियस्त उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स डिपार्टमेंट की एक और मीटिंग में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि होमगार्ड्स तंजीम रियासत के दाखिली, सलामती, अमनो अमान, डिजास्टर मैनेजमेंट और अवामी खिदमात का एक अहम सतून है। बदलते वक्त और नए चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इस तंजीम को ज्यादा काबिल, तरबियत याफ्ता, तकनीकी तौर पर माहिर और जदीद बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा को रियासत का परमानेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किया गया है। जनाब कृष्णा पहले कारगुजार डीजीपी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मंजूरी के बाद महकमे दाखिला ने मिस्टर कृष्णा को तकरीरी का हुक्म जारी किया। वो जून 2029 तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर राजीव कृष्णा ने कल वक्ती पुलिस कमिश्नर के तौर पर तकरीरी पर कहा कि वज़ीर-ए-आला की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश पुलिस की और हुकूमत की तरजीहात को पूरा करने के लिए अथक मेहनत कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताजा तरीन आदाद और शुमार उत्तर प्रदेश में समाजी तरक्की की बदलती हुई तस्वीर को जाहिर करते हैं। 2015-16 और 2023-24 के दरमियान आदाद और शुमार का मुवाजना जाहिर करता है कि रियासत ने सेहत, तालीम, खवातीन को बाख्तियार बनाने, खानदानी मनसूबाबंदी, माँ और बच्चे की सेहत और बुनियादी ढांचे में नुमाया पेश रफ्त की है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान सेहत खिदमात की तौसी, समाजी तहफ़ुज़ की स्कीमों के वसी पैमाने पर निफाज, खवातीन के बहबूद के प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे की तरक्की का असर अब कौमी सतह के सर्वे में भी

1:16 हो चुके हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात तरन्नुम है आपके साथ। और आज हमने आपसे सवाल ये किया है कि क्या आपके घर में कोई चुगलखोर है, और इतने सारे मेल आ गए हैं, यानी हर घर में एक चुगलखोर का होना बहुत जरूरी है। ये सारे जो मेल आपके आए हैं, जो आपने आंसर किया है हमें, उसको जरूर हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा ट्रैक आप तक।

और 1:20 हो चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, होठों पे तेरी बात, तरन्नुम है आपके साथ। और अब भाई वक्त हो गया है कि आप लोगों ने जो मेल किए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। बहुत सारे मेल मेरे पास आए हैं और शुरुआत कहाँ से करते हैं। प्रतिभा शर्मा जी ने हमें मेल किया है, लिख रहे हैं कि मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है और मैं सीतापुर में रहती हूँ, वहाँ से ई मेल कर रही हूँ। मेरे घर में मेरा भाई चुगलखोर है, अगर कोई चीज़ खाओ तो मम्मी को बता देता है, मगर मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं और मुझे कुछ नहीं कहती हैं। अक्सर ऐसे ही होता है भाई कि अगर भाई है तो वो बहन को परेशान करेगा, बहन है तो भाई को परेशान करेगी, लेकिन बहनें बड़ी चालाक होती हैं। मतलब बहनें आपस में तय कर लेती हैं कि ये बात इसको नहीं बतानी है और वो बात मम्मी पापा को नहीं बतानी है। ये चीज़ एक बहुत अच्छी है, लेकिन अब घर में कोई अगर ऐसा है तो भाई क्या किया जाए। महेंद्र दीपन जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं, आदरणीय आरजे तरन्नुम मैम जी बहुत बहुत नमस्ते, मैं महेंद्र दीपन राजस्थान के नागौर जिले के गांव रूर से हूँ। आपका प्रोग्राम होटो पे तेरी बात सुनकर दिन बन जाता है और इनको मेरा जो होस्ट करने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र। लिख रहे हैं कि आज का आपका सवाल बहुत ही मज़ेदार है कि घर में चुगलखोर कौन है। तो सच बताऊँ, मेरे घर में मेरी लाडली बेटी मोनिका दीपन से बड़ी कोई चुगलखोर नहीं है। अच्छा, लिख रहे हैं कि वो मेरी सबसे प्यारी और नटखट साथी है, लेकिन साथ ही मेरी सबसे बड़ी राजदार भी है। क्या बात है, अक्सर ऐसा होता है, बल्कि अक्सर क्या, हमेशा ऐसा होता है कि जो बेटियां होती हैं वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा चाहती हैं। और ये भी आपके घर में है तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजदार हैं ये थोड़ी अलग बात है। अगर घर में मैं ऐसा कुछ कर लूँ जो मैं अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता तो मेरी बेटी की प्यारी नज़रें मुझे तुरंत पकड़ लेती हैं। बस फिर क्या होना है, वो तुरंत अपना सौदा पक्का करने के लिए मेरे पास आती है और मासूमियत से बोलती है, पापा मुझे मेरी पसंद की चीज़ ला कर दो वरना मैं मम्मी को सब बता दूंगी। और ये जो प्यारी सी ब्लैकमेलिंग है, मुझे हार मानकर उसकी बात मानने पर मजबूर कर देती है। सच कहूँ तो उसकी इन्हीं शरारतों से घर में जो रौनक है वो बनी रहती है। बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। सुल्तान रजा साहब का मेल आ गया है, सलाम वालेकुम मेरी प्यारी तरन्नुम अप्पी और मेरी पूरी फैमिली आपको बहुत मिस करती है। आहा, क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम। और लिख रहे हैं आपकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से हैं, लिख रहे हैं जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिस रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा, संजीदा भी, सहाना भी, घर वालों ने आपको बुलाया है। और आज के विषय में कैसे ले लिया, सबकी पोल खुलवा देंगे आप। क्या फिलहाल मेरे घर में, मैं अब नाम नहीं लूंगा जो है वरना लड़ाई हो जाएगी। और घर पर आज छोटे भैया की बीवी है, वो कभी कभी ऐसी बातें करती हैं, इधर की उधर करके लड़ाई कर देती हैं। अच्छा, हाँ देखिए, चुगलखोरी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की चुगलखोरी करिए और आप उसको लड़ाई करवा दीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत ख़राब बात है। लेकिन अगर कोई ऐसी मज़ेदार सी चुगलखोरी कोई करता है तो फिर बड़ा मज़ा आता है। और सच में ये सारी जो चीज़ें होती हैं घर में, देखिए चुगलखोरी भी होती है, ब्लैकमेलिंग भी होती है, और कह सकते हैं कि घूस जो है वो भी ली दी जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं बचपने में होती हैं या फिर बड़े होने पर भी होती हैं, तो अच्छा लगता है। और इस तरह की जो हंसी खुशी की बातें होती हैं वो होना अलग बात है। गुलफशा सिद्दीकी जी का मेल आ गया, लिख रही हैं कि मैं संडीला से हूँ और हर घर में एक चुगलखोर है जो ज़रूर मिलेगा, लेकिन सबसे बड़े चुगलखोर हम खुद होते हैं। अगर हम अपनी बात सबके सामने ना करें तो वो चुगली कर ही नहीं पाएगा। ये बड़े पते की बात कर दी आपने भाई, लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है। कहा जाता है ना, औरतों के पेट में कोई बात टिकती नहीं है तो वो किसी न किसी को बताती ज़रूर है। और अक्सर ऐसा होता है कि लालच के चक्कर में भाई बहन की चुगलखोरी कर देते हैं या बहन भाई की चुगलखोरी कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे लग जाती है आग। लेकिन आग अगर मोहब्बत की हो तो फिर उसको बुझने नहीं देना चाहिए। 1:23 प्रोग्राम, लीजिए 24 मिनट हो गए प्रोग्राम चल रहा है, होठों पे तेरी बात, सुनते रहिए द हार्टबीट ऑफ लखनऊ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: करियर पर है ध्यान,
8: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
7: पॉजिटिव है फैशन,
8: क्रिएटिव है पैशन,
7: टेक्नोलॉजी में रुचि,
8: बने पर्सनालिटी ऊंची,
7: फॉलो करें ट्रेंड्स,
8: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
7: ओनली ऑन यूथ वेव,
8: यूथ की बात यूथ के साथ,
7: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
8: धड़कन लखनऊ की।
9: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

और सच में मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि बिल्कुल सावन की एकदम तैयारी शुरू हो चुकी है। और फिलहाल तैयारी शुरू हो चुकी है नेक्स्ट मेल पढ़ने की। और पढ़ लेते हैं नेक्स्ट मेल। आ गया है बबीता राव जी का, एड्रेस बेली कला, गोसाईगंज, नवाबों का शहर, लखनऊ, यूपी से मेल कर रही है। मैम जी आपको 12 बजे से सुन रही हूँ, फैबुलस प्रोग्राम लग रहा है। आहा क्या बात है, बहुत सारी तारीफें इन्होंने लिखी हैं। लिख रही हैं कि मैम जी मेरे घर पर चुगलखोर तो मैं खुद ही हूँ। क्या बात है बबीता। लिख रही है कि मेरे भैया और दी जो बात कहेंगे वो घर पर मम्मी पापा को ना बताना, वो मैं सबसे पहले बताती हूँ। और घर पर पापा जी हों, भैया हों या दी हों या किसी भी, मैं वॉट लगाने में सबसे आगे हूँ। अच्छा बबीता, बहुत सारे इन्होंने जो हार्ट हैं वो भेजे हैं। और लग तो नहीं रहा कि आप इतनी चुगलखोर हैं, लेकिन अब आपने खुद से कबूल दिया है कि आप चुगलखोर हैं, तो इसका मतलब आप चुगलखोर हैं। और नेक्स्ट जो मेरे पास मेल आ गया है वो आया है बाबू अंसारी जी का मेल आ गया है। बाबू अंसारी जी ने कहां से मेल किया है, बाराबंकी से हैं। लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम, आप कैसी हैं? आप टॉपिक के बारे में ये कहना चाहता हूं कि मेरा एक छोटा भाई है शाहिद, जो कोई भी बात हो वो इधर से उधर कर देता है और बहुत ही प्यारी बातें होती हैं। अच्छा, अच्छी बातें होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मिलती है। तो बाबूजी बहुत बहुत, बाबू अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मेल किया। रामराज जी का मेल आ गया है। लिख रहे हैं, तरन्नुम बिटिया को प्यार भरा नमस्कार। रामराज जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप? और जिला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से मेल कर रहे हैं रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से प्यार भरा तरन्नुम बिटिया, जब आप कहते हैं ना रामराज जी, बड़ा अच्छा लगता है और आप रहें और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, बस यही हम चाहते हैं। और लिख रहे हैं कि हमारे घर में चुगली खोरी करने वाला चुगलखोर घर में नहीं है, लेकिन हमारे गांव में बहुत है, चुगली करते हैं, इसलिए अपना नाम ऊंचा करने के लिए और दूसरों की नजरों में ऊंचा बनने के लिए चुगली करते हैं। अच्छा, मतलब चुगलखोर हैं, हर तरफ है, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे लोग चुगली ना करते हों। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें मेल किया। सुधाकर जाधव जी का मेल है। लिख रहे हैं, हमारे घर के बाजू में एक शिजारी रहती है, बहुत चुगली खोर है, बहुत औरत ने जाग देती है। और बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जाधव जी, आप की थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो हम लोगों से अलग है, समझ में नहीं आ पाती, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें मेल किया। बसंत कुमार सिन्हा जी हैं, लिख रहे हैं, घर में चुगलखोर, तो देखिए सभी के घर में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होता है जो किसी की चुगली करना करता है, लेकिन ये गलत बात है। मैं रेडियो सुनता हूँ, मेरी चुगली कर देती है कि मैं रेडियो सुनता रहता हूँ। और अजय, रिमी, तानुश्री गुप्ता और नन्हे मुन्ने ने भेजा है ये मेल, कहाँ से? कैलकटा से भेजा है बसंत कुमार सिन्हा शॉ ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी बसंत जी, और अच्छा लगा कि आपने हमें मेल किया। 1:37 हो गए हैं और अब वक्त हो गया है कि भाई इस तरह की जो चुगली वाली बातें हो रही हैं और लोग बता रहे हैं कि लोग अक्सर घर में घुस भी चल जाते हैं ना कि ये बात मत बताना, ये लो इतने पैसे रख लो, ये लो ये आम खा लो, ये लो ये कर लो, वो कर लो, तो तुम ऐसा कर लो। तो अब सौदा जो है ना वो एकदम पक्का होना चाहिए और खरा होना चाहिए, भले ही कोई आपकी चुगली करे या आपकी चुगली ना करे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल, एफएम रेनबो।
3: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
4: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM Rainbow.
5: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

और ध्यान टनन तो चला गया और अब नेक्स्ट ट्रैक भी आने वाला है आप तक, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेल आ चुके हैं उनका क्या, वो भी तो भाई पढ़ना है हमें, क्योंकि 1:47 हो चुके हैं। उसके बाद तो जो मेल है ना उनकी झड़ी लग जाती है, मतलब ऐसी बरसात होती है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर कि बस पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते उसमें भी लोग इतने नाराज़ हो जाते हैं, इतने नाराज़ हो जाते हैं कि एक दूसरे से चुगली तो ज़रूर करते होंगे कि देखा आज तो रनू वहीं थे लेकिन हमारा मेल नहीं पढ़ा, हम ही को नज़रअंदाज करती हैं, ऐसा करती है वैसा करती है, सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल जाती हैं। बस कैसे पता चल जाती हैं ये मत पूछिएगा। फिलहाल जो अभी मेल आप लोगों ने किए हैं उनको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। अमन नवाब का मेल आ गया है, लिख रहे हैं हेलो गुड आफ्टरनून अप्पी, इनको सॉन्ग बड़े अच्छे लग रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने थोड़ी सी हमको एक सलाह भी दी है कि पॉप टाइम प्रोग्राम करिए, वो आपके सॉन्ग्स धमाल कर देंगे। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको, बिल्कुल करेंगे पॉप टाइम। और आगे लिख रहे हैं कि आप मुझे अपना बॉडीगार्ड रख लीजिए, एकदम फ्री सेवा करूंगी आपकी, क्या बात है अमन। और लिख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक आपने लिया है वो उसको दिल इनका खुश हो गया है, और मेरे घर में 3 लोग हैं, बड़ी चच्ची, मंजली चच्ची और मेरी खाला अम्मी, टॉप लेवल चुगलखोर और हम तो फोन ही नहीं करते हैं तीनों को, और हम 2 भाई बहन हैं, दोनों में से कोई चुगलखोर नहीं है। मेरा भाई मुझसे 8 साल छोटा है, मेरी इज्जत करता है और अप्पी से डरता भी है। आपने बना के ऐसा रखा होगा अपना ऑरा कि आपसे लोग डरते हैं अमन, और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें मेल किया। वकील अमन साहब जी हैं, मेल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि अगर घर में कोई बात हो तो चुगली चाची करती हैं, और हमारे यहाँ बारिश हो रही है। कहाँ बारिश हो रही है भाई, सीतापुर। साहिबा अंसारी हैं, शाजी अंसारी, शमा परवीन, रिंकी, पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी और अमन नवाब। ये देखिए सारा जो एक गिरोह है ये सब वहीं पर हैं, एक दूसरे से मेल करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग एक दूसरे को मेल में अपने नाम शामिल करते हैं, बड़ा ही एक यूनिटी जो है वो दर्शाता है। रामेश्वर जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं तरंगम बहन जी को मेरा सा प्रेम नमस्कार। रामेश्वर हमें हमेशा तरंगम कहते हैं, कानपुर देहात से मेल कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, इनको प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है और लिख रहे हैं कि हर घर में एक चुगलखोर होता है। लेकिन रामेश्वर जी आपने ये नहीं लिखा कि आपके घर में कौन चुगलखोर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इशारा आप ही की तरफ है। फिलहाल ग्राम पोस्ट मुंगी सापुर कानपुर देहात से हैं रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी कठेरिया फैमिली को कि आपने हमें मेल किया।

बबीता राव जी हैं और लिख रहे हैं कि मेल कर रही हैं, फिर से कर रही हैं कि गांव पास पड़ोस वाली चुगली से तो मैं बहुत दूर रहती हूँ, और आपको लगता है कि मैं इन सब में रहती हूँ ना? कभी नहीं, हमें लगता है ऐसा है कि आप ऐसे नहीं करती हैं फिलहाल। अब देखिए, चुगली की बातें भी हो रही हैं और मेल की बातें भी हो रही हैं, गाने की बातें भी हो रही हैं, खाने की भी बातें हो रही हैं, और साथ ही साथ वक्त जो है उसकी भी बातें हो रही हैं। सारी बातें तो ऐसी ही चलती रहेंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आ गया है आप तक। और आपको बता दें कि आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हॉट मेल तरन्नुम के साथ।

भैया हमें पता है कि आपका जो दिल है वो रेनबो ने चुरा के रख लिया है और इसीलिए आप लोग लगातार हम लोगों को मेल करते हैं और आपके जो मेल हैं उनको हम लोग शामिल भी करते हैं और अब वक्त हो गया है कि एक और ट्रैक आप तक पहुंचा दें और इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर दें। तो प्रोग्राम होटो पे तेरी बात को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत तरन्नुम को, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है हॉट मेल। और ऑलरेडी बहुत सारे मेल जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, बस पढ़ना उन्हें बाकी है और आपके जो रिक्वेस्टेड नंबर हैं उनको भी प्ले करना बाकी है। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की, बोले तो FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
4: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
5: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
4: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
6: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रूपये होगी। मुंबई में 43.50 रूपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रूपये होगी। कोलकाता में 53.50 रूपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रूपये होगी। चेन्नई में कीमतों में

0: 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मेल शामिल कर चुके हैं और इसलिए प्लीज आप हमें दोबारा मेल मत कीजिए।

और सीन हाशमी जी का मेल आ गया है। आगे इन्होंने क्या लिखा है, अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनवा दे। मोहसिन हाशमी जी, आपने कहाँ से हमें मेल किया ये आपने हमें मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम आपका जो एड्रेस है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। हितेंद्र दास जी का, हेलो आरजे जी नमस्कार, आसाम से एक बार फिर से मेल किया हितेंद्र जी, आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, इसलिए प्लीज़ अब मेल मत कीजिए। इसके अलावा जो मेल हैं बहुत सारे हैं। शरफुद्दीन अंसारी का मेल आ गया है, आदाब, किसी भी गीत में शामिल करें, बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुनीत रमेश साहू, और डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य सारिमपुर बक्सर से हैं, राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। अब आप लोगों ने मैं जो गाना पसंद किया उसमें से एक गाना है, और ये जब गाना आया था और जब पिक्चर आई थी तो ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई थी। इसके जो डांस नंबर्स हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन हैं, जो डांस के स्टेप्स हैं वो भी सब बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। अब थोड़ा सा जो सीक्रेट था ना उसको रिवील करते हैं और बता पहुँचाते हैं ट्रैक आप तक।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, आंखों से आपने क्या कहा ये तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपने दिल से जो कहा और आपने लिखा वो हम तक पहुंचा दिया, वो हम जरूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रणधीर गुप्ता जी का भी मेल आ गया मेरे पास, लिख रहे हैं कि भाई कैसे हैं आप, और गाने की फरमाइश की है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें मेल किया और हम आपकी जो फरमाइश है उसको जरूर हम शामिल करेंगे। साई गायकवाड़

जी का मेल आ गया है। हॉटमेल सादर करने वाली तरानू दीदी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और साईं जी, आप लोग की जो मोहब्बत की जो लैंग्वेज होती है ना, उसको हम लोग समझ जाते हैं। गुड आफ्टरनून जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं। गाने की फरमाइश की ओम रेडियो श्रोता संघ कॉलोनी नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साईं गायकवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और इसके अलावा जो मेल आ गया, सुरेश नारंग जी का मेल आ गया है, बहुत ही खूबसूरत सा मेल भेजा है, खूबसूरत से सजा के भेजा है। और रिस्पेक्टेड जी लिख रहे हैं कि अच्छा, सीधे इन्होंने बात की है, बस रिस्पेक्टेड लिखा, गाने की फरमाइश कर दी है, प्यारा सा गीत सुनवाना है। सहारनपुर से है अनु, मोना, अलका, विक्की, आशा, सोनाली, एस के नारंग, आज ये गीत सुनवा दिए जी। और ये भी लिखा है कि इन्होंने कौन से फोन से मैं मेल किया है। दिनेश वर्मा जी का भी मेल आ गया है। दिनेश वर्मा जी रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। अब्दुल गफ्फार साहब का मेल आ गया है, किसी भी गाने में शामिल करने के लिए कह रहे हैं, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं। अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी और पायल जोशी, तहे दिल से शुक्रिया आपका, तहे दिल से आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया। पवन कुमार जी का मेल आ गया है, सिंहपुर सिधौली सीतापुर से, घर पर हूँ, कॉलेज बंद है, मैम आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छे हैं पवन, उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे। इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, कोई भी गाना सुनवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। दीपेश वर्मा जी का है, हमेशा की तरह जय जोहार कर रहे हैं, गाने की फरमाइश कर रहे हैं। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, गाने की फरमाइश बहुत अच्छी आज आपने की है, गाना जरूर प्ले होगा। सुरेश नारंग जी अगेन मेल कर रहे हैं, सुरेश जी आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं। रोजी डिकैस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से हैं, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पॉल वेलिस डिकैस्ट्रो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गाने की फरमाइश इन्होंने भी की है और आपका गाना हम जरूर प्ले करेंगे। ताज मोहम्मद साहब का भी मेल आ गया है, ताज मोहम्मद साहब आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, फिर से लिखा है। भाई ऐसे होता है जब इंसान अपनी मोहब्बत करता है अपने शहर से, अपने वतन से, और अपने जो भी आसपास के, कहते ना कि एक अगर कोई जानवर भी मिल जाता है अपने मोहल्ले का, तो उसको देख के, अगर आप कहीं बाहर हैं तो उसको देख के जो खुशी होती है उसको लफ्जों में पिरोना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो गाने आप लोग हमें भेजते हैं उनको भी बड़ा मुश्किल होता है सिलेक्ट करना और कोई भी एक ट्रैक आप तक पहुंचाना, लेकिन एक जो ट्रैक है वो उसमें से हमने चूज किया, प्ले कर दिया और पहुंचा दिया आप तक। टाइम आपको बता दें 2:42, प्रोग्राम चल रहा है हॉटमेल, तरन्नुम है आपके साथ, सुनते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन, बोले तो एफएम रेनबो।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी, घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और कभी कभी ऐसा लगे कि जाऊं मैं तुझे छोड़ के, लेकिन सच में ऐसा लग रहा है कि आपको इस प्रोग्राम से छोड़ के जाने के लिए हमें कहना होगा, लेकिन जाते जाते हम आपके जो मेल है उसको जरूर पढ़ेंगे। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से मेल आ गया है, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्ण और पीहू स्वर्णकार धन्यवाद कर रहे हैं। लालगिरी जी का मेल आ गया है, नबी हसन साहब का मेल आ गया है, पंकज शर्मा जी का भी मेल आ गया, गुड मॉर्निंग जी, और गाने की फरमाइश लिखी है मॉडल टाउन करनाल से हैं, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, बहुत सारे लोगों के नाम भेजे हैं। जय के मेल आ गए हैं और बहुत देर में जय को होश आया कि भाई इस प्रोग्राम में मेल करना है, और उन्होंने इकट्ठा फोन पे मैसेज टाइप किए और हमें मेल कर दिए हैं, कम से कम 10 मेल इन्होंने किए हैं। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खुरवाल, सचिन खुरवाल, अमन खुरवाल, दीपांशु खुरवाल, गाने की फरमाइश तो बड़ी जबरदस्त की है, बहुत सोच रहे होंगे तब इन्हें लगा कि 2:55 हुए हैं तो चलो वही मेल कर देते हैं। राजकमल यादव जी का मेल आ गया है, ग्राम परैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से, नमस्ते मैम जी कैसी हैं आप, मुझे ये गाना सुनना है, रमजान मास्टर।

लाई करते हैं, आपको नमस्कार बोल रहे हैं, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार बोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। राधे कुमार विद्यार्थी जी हैं, मेल कर रहे हैं कहाँ से, गोकुल चौक गंग जला सहरसा बिहार से। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, बुल्की वाली और फलना झा का हमारे पास मेल आ गया। निसार अली साहब का भी मेल आया है, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू आगे लिख रहे हैं कि आपका हर पल खुशियों से भरा हो। सुनील पाठक जी का भी मेल आ गया है, कहां से मेल कर रहे हैं। प्रिय प्रस्तुतकर्ता मैडम तरन्नम जी, सादर प्रणाम जी, प्यार भरा प्रणाम आपको भी हमारा। और कहां से, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा और साथ ही साथ भाई सुच्चा सिंह पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और अब 2:56 हो गए हैं तो भाई अब इजाजत दीजिए इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए। तरन्नम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसका नाम है सतरंगी दुनिया। सुनते रहिए सतरंगी चैनल, बोले तो रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मी

दोस्तों, गुड आफ्टरनून, यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। एंड स्टूडियो में एक बार फिर आ चुकी हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो हम सफर कौसर, म्यूजिक आर प्रोग्राम को लेकर। दोस्तों, कभी गौर किया है कि कुछ तारीखें बस कैलेंडर पर नहीं आती, बल्कि अपने साथ मौसम, यादें, रिश्ते और ढेर सारे एहसास लेकर आती हैं। और आज की तारीख भी कुछ ऐसी ही है। जून का पहला कदम, एक तरफ गर्म हवाएं तो दूसरी तरफ है बरखा के आने की उम्मीदें। जून के महीने की आज से हो रही है शुरुआत, और यही नहीं जनाब, हफ्ते की भी शुरुआत है आज, यानी हफ्ते और महीने का पहला दिन दोनों एक साथ। और भी बहुत कुछ है आज आपको बताने के लिए, बस धीरे धीरे इस दिन के सारे रंग बिखेरूंगी, जिसमें बचपन भी शामिल होगा, माता पिता का प्यार भी शामिल होगा, पुराने सिनेमा की खुशबू भी महसूस होगी और मौसम की तपिश के साथ बरखा का इंतजार भी। इन सब के साथ कुछ ऐसे होंगे गीत जो बन जाएंगे हम सब के मनमीत।

जी, 3-3 हो चुके हैं। इससे पहले कि हम कहें कि 3-5 करने चलते हैं तो आप भी नाराज हो जाएंगे, और फिलहाल शो को शुरू कर देते हैं। 3:03 हो चुके हैं। प्रोग्राम सतरंगी दुनिया लेकर हाजिर है तरन्नुम। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, वो पहुंचाएंगे हम आप तक। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक आर प्रोग्राम में आज मैं आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौशल बातें करूंगी जून की पहली दस्तक और सरगोशियों की। तो दोस्तों आपको पता ही है कि 25 मई से लग गया था नौ तप्पा, जो कि 9 दिन तक रहता है और आज है इसका सेकेंड लास्ट डे और कल होगा इसका लास्ट डे, यानी कल से नौ तप्पा खत्म। जी हाँ, नौ तप्पा जो अपने नाम के हिसाब से ही तपता है उतना ही तपता है जिसका जितना इसका नाम है नौ तप्पा, और नौ दिन के लिए तपता है ये, और जितना तपता है ना बरखा भी उतनी ही अच्छी होती है। एक उम्मीद होती है नौ तप्पा की तपिश के बाद अच्छी बारिश की, पर देखिए ना बरखा के नरम मिजाज को कि नौतप्पा के तपिश वाले माहौल के बीच से ही बरखा आ गई और मौसम के साथ साथ हमारे दिलों को भी खुशनुमा बना कर लुभा गई। वैसे दोस्तों इंतजार का भी अपना एक मजा होता है ना, पहली बारिश का इंतजार, मिट्टी की वो सौंधी खुशबू का इंतजार, और छत पर गिरती बूंदों को कैसे भूल सकते हैं भाई, छत पर गिरती बूंदों का भी तो इंतजार रहता है। जून का महीना इसी उम्मीद का तो दूसरा नाम है।

मेघा जी हाँ, मेघा तो खुश होकर आ ही गई है, उसने नौतपा को भी पीछे छोड़ दिया है। वैसे पता चल गया ना कि कितनी नरम दिल है ये बरखा, जो कि अपने टाइम से पहले ही आ गई। जब नौतपा का टाइम था तो उसने सोचा भाई क्यों सबको परेशान किया जाए, इस गर्मी में वैसे भी सब परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बारिश कर दी जाए, और बस आ गई वो हम लोग के पास। तो दोस्तों, कुछ तारीखें बस कैलेंडर पर नहीं आती, बल्कि अपने साथ मौसम, यादें, रिश्ते और ढेर सारे एहसास लेकर आती हैं। आज की तारीख भी कुछ ऐसी ही है। आज महीने का भी पहला दिन है और हफ्ते का भी पहला दिन है, और भी बहुत कुछ है आज बताने के लिए। बस धीरे धीरे इस दिन के सारे रंग बिखरेंगे, जिसमें बचपन भी शामिल होगा, माता पिता का प्यार भी, पुराने सिनेमा की खुशबू भी महसूस होगी आपको, और मौसम की तपिश के साथ बरखा का इंतजार भी। वैसे कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज सुबह उठकर सोचा होगा कि इस महीने या इस हफ्ते कुछ नया शुरू करेंगे। कोई अपनी आदत में थोड़ा चेंज लाना चाहता होगा, तो कोई अपने ड्रीम्स को थोड़ा और वक्त देना चाहता होगा, और यही नहीं, कोई खुद को बस फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहता होगा, जैसे कि मैं। जी हाँ, मैं तो अपने को हमेशा मुस्कुराते ही हुए देखना चाहती हूँ। लाइफ की सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि हमें बार बार नए मौके देती है जिंदगी। तो चलिए, नई डायरी, नए प्लान्स, नई उम्मीदें और नए पेन के इस एहसास के साथ सुनते हैं ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग।

दोस्तों, कभी पुराने खिलौने मिल जाएं या अचानक किसी शॉप पर रंग बिरंगी टॉफीज दिख जाएं। टॉफीज से याद आया ना कि बड़ा ही खाने का मन करता था, वो मीठी मीठी टॉफियां। जी हाँ, वही टॉफी की बात कर रही हूँ। तो दिल कुछ पल के लिए वहीं रुक जाता है ना, क्योंकि बचपन कभी पूरी तरह से जाता ही नहीं, वो बस बड़े होने पर जिम्मेदारियों के पीछे कहीं जाके छिप जाता है। और आपको बता दूं कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी आज मना रहे हैं, और उस दिन मासूमियत का दिन है जो हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। हमारे अंदर, आपके अंदर मासूमियत तो जिंदा है ही ना, मानते हैं ना आप? वो मासूमियत जो हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रहती है, वो बचपन जहां बारिश का मतलब सिर्फ भीगना होता था, जहां समर वेकेशंस किसी त्योहार से कम नहीं लगता था, जहां पर कल क्या होगा जैसी कोई चिंता नहीं होती थी। सुबह कार्टून, दोपहर में खेल और रात में दादा नानी की कहानियां। सच कहूं तो जिंदगी का सबसे अमीर और बेहतर दौर बस वही था। जी हां, बचपन का दौर, जब जेबें खाली होती थी पर दिल, अरे बाप रे जनाब, दिल को क्या ही कहें। जेबें भले ही खाली हो पर दिल खुशियों से एकदम फुल होता था। और शायद इसलिए बड़े होने पर भी इंसान सबसे ज्यादा अपने बचपन को ही मिस करता है। आप भी अपने बचपन को मिस करते हैं तो लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल एड्रेस है airkansomedia@gmail.com। तो चलिए एक सॉन्ग अपने अंदर के छिपे हुए उसी बच्चे के नाम, उसी बचपन के नाम।

0: चकरा चकला कबिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़दुम जगड़दुम चिकी चका चो
1: Ha ha ha ha!

102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे FM रेनबो कानपुर प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर और इस प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आज आपकी अपनी रेडियो हम सफर कौसर और प्रोग्राम की थीम वो भी आपको बता देती हूँ एक बार फिर जून की पहली दस्तक और सरगोशियाँ। तो गाइज आज के दिन की एक खास बात ये भी है कि आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि विश्व दुग्ध दिवस। इस दिन की शुरुआत 2001 में हुई ताकि लोगों को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके। लेकिन अपने भारत देश में दूध सिर्फ पोषण ही नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा है। सुबह की रसोई उबलते दूध की खुशबू और माँ की वही प्यारी सी डांट, पूरा ग्लास खत्म करना है दूध का। कोई हल्दी वाला दूध पीने की चाह करता है तो कोई मलाई हटाकर दूध देना ये आवाज लगाता है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें बाद में सबसे प्यारी याद बन जाती हैं। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में गिना जाता है। दूध यहाँ सिर्फ खाने पीने का ही हिस्सा नहीं बल्कि त्योहारों और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए इन्हीं मीठी यादों के साथ सुनते हैं एक मीठा सा गीत।

दोस्तों अगर बात पुराने हिंदी सिनेमा की करें तो उसकी तो बात ही कुछ अलग रही है। धीमी सी बारिश, ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स, आंखों से बोलते कलाकार और नरगिस दत्त उन्हीं चेहरों में से एक रही हैं। हिंदी सिनेमा की एक बेहद खूबसूरत और शानदार एक्ट्रेस, जी हाँ नरगिस दत्त, आज है उनकी जन्म जयंती। उन्होंने अभिनय को सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रखा बल्कि भावनाओं को जिया। उनका असली नाम फातिमा राशिद था लेकिन दुनिया ने उन्हें नरगिस कहकर अपने दिलों में बसा लिया। कहा जाता है कि कैमरा उनके चेहरे पर नहीं उनकी सादगी पर ठहर सा जाता था। उनकी फिल्म मदर इंडिया आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है और उस दौर के गीत, उफ, ऐसा लगता था कि हर धुन बस दिल से निकल रही हो। तो चलिए उसी सुनहरे सिनेमा से नरगिस पर फिल्माया ये सॉन्ग सुनते हैं आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर।

वैसे आज से जून के महीने की स्टार्टिंग है और ये महीना आते ही दिल अपने आप बादलों की तरफ देखने लगता है। भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं माना जाता बल्कि किसानों के लिए उम्मीद, बच्चों के लिए मस्ती और संगीत प्रेमियों के लिए, जी हाँ, पुराने गीतों का मौसम।

पहली बारिश की वो मिट्टी की खुशबू, विंडो के पास बैठकर चाय की चुस्कियां लेना और बैकग्राउंड में कोई पुराना गाना बजना। यकीन मानिए कि ये कुछ पल इतने खूबसूरत होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयां तो किया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस जरूर किया जा सकता है। और बॉलीवुड ने बारिश को जितना खूबसूरत तरीके से दिखाया है ना, शायद ही किसी और चीज को दिखाया हो। तो महसूस करिए जरा ये एहसास।

तो दोस्तों देखा आपने कि एक तारीख अपने अंदर कितनी सारी कहानियां छुपा कर लाती है, वो भी 1 जून। नई शुरुआत की उम्मीद, गर्मी की तपिश, बारिश का इंतजार, माँ बाप की दुआएं, बचपन की मासूमियत, पुराने सिनेमा की खुशबू, यही तो जिंदगी है, हर दिन कुछ नया जोड़ती हुई। तो ये था आज का म्यूजिकल प्रोग्राम और इसे पेश किया आपकी अपनी रेडियो हम सफर कौशल ने, और थीम थी जून की पहली दस्तक और सरगोशियां।

0: कार्यक्रम का आज का ये अंक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता। और आज एक बार फिर से हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैली अग्रवाल को, जो कि GSVM मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी में प्रोफेसर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी कानपुर के हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद दीपशिखा।
0: डॉक्टर साहब, आज हम आपसे किशोरियों के स्वास्थ्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातचीत, कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्यूबर्टी से क्या तात्पर्य है और किशोरियों के लिए इसका क्या महत्व है।
1: प्यूबर्टी जो है एक जीवन की अवस्था है, बालपन से एडल्टहुड की तरफ जाने का जो बीच का ब्रिज है वो प्यूबर्टी है, टीनेज जिसको हम बोलते हैं। तो इस समय जो बच्चा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसके शरीर में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। और जो हमारा मार्कर होता है, इसका एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है मेनार्की, जो पहला मेंसेस लड़कियों को आता है, तो ये भी इसी अवस्था में आता है। तो ये तो ग्रोथ स्पर्ट होता है, ग्रोथ आपकी जो हाइट होती है तेजी से बढ़ती है, आपके बॉडी में ब्रेस्ट चेंजेस आते हैं और चेंज आपके लड़कों में वॉइस की डीपनिंग होती है और महिला लड़कियों में फिर मेनार्की का आना। तो ये सब चीजों को मिलाकर हम एक प्यूबर्टी का नाम देते हैं। मोटे तौर में कहा जाए तो बालपन से एक वयस्क बनने के बीच

0: की जो अवस्था है ये प्यूबर्टी है।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि प्यूबर्टी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है मीनार, यानी कि पहली बार मेंस्ट्रुएशन का आना, और इसका किसी भी लड़की के लिए, किसी भी बालिका के लिए बहुत महत्व है अपने जीवन में। तो जब पहले पहले मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो उस समय किन किन तकलीफों का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है किशोरी को, ये हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं।
0: जब पहली बार महीना आता है, इसको मीनार्क बोलते हैं। एक बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि आजकल जो प्यूबर्टी की एज है, जो मीनार्की की एज है, वो काफ़ी जल्दी आने लगा है। जो पहले 11-12 साल में आता था वो अब 9-10 साल में आने लगा है। तो अपनी बच्चियों को इस बारे में एजुकेट करें, माँ जो है वो अपने बच्चों को एजुकेट करें और इसके बारे में बात करें, घर में बात करें, इसको बात को छुपाएं ना, खुल के इसके बारे में बात करें कि ये शारीरिक परिवर्तन ही आएगा ही आएगा, तो बच्ची इसके लिए तैयार रहे। दूसरा है कि जब आपको चेंजेस आते हैं, जब आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उस टाइम माओं की बहुत जिम्मेदारी है कि बच्चे को समझाएं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे उनको मेंटेन करना है, उससे घबराना नहीं है। तो बच्चा अगर पहले से तैयार है, प्रिपेयर्ड है कि ये चीज आनी ही आनी है, तो घबराएगा नहीं। दूसरा है कि अगर आपकी बच्ची उस एज ग्रुप में है तो आप उसके बैग में एक पैड जरूर रखें, ताकि उसको अगर कोई जरूरत पड़े तो किसी उसके पास पैड हो, साफ सुथरा पैड उसके पास हो। उसके अंडर गार्मेंट्स का ध्यान रखें, सूखे, धूप में सूखे हुए साबुन से धुले हुए अंडर गार्मेंट्स ही बच्ची पहने। और थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है बच्चे को जब पीरियड्स आते हैं, तो उस टाइम हल्की फुल्की सिकाई से काम चल जाता है। अगर उसके बाद भी आराम नहीं मिलता है तो जरूर डॉक्टर से परामर्श लें। और सबसे ज्यादा जरूरी है हाइजीन का ध्यान रखना, तो पैड नियमित रूप से चेंज करते रहें, क्योंकि बहुत देर तक एक ही पैड लगाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है। जननांगों में इन्फेक्शन हो जाएगा तो आगे दिक्कत हो सकती है, तो इस बारे में लड़कियों को समझाना बहुत जरूरी है। स्कूल्स में बात की जाए इसके बारे में।
1: डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है, बड़े लोगों का कर्तव्य बनता है कि किशोरियों और बच्चियों को समझाएं इस विषय में और मार्गदर्शन करें उनका। कार्यक्रम में बातें अभी हम और भी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चाहेंगे कि अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप हमारे लिसनर्स को सुनवा दें।
0: बादल पे पांव है, अब छूटा गांव है।
1: महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और महिलाओं को सशक्त करता हुआ ये गाना डॉक्टर साहब की पसंद पर हमारे सभी लिसनर्स के लिए।

0: गाना सुनकर एक बार वापस आ चुके हैं अपने स्टूडियो में, जहां आज बात हो रही है डॉक्टर शैली अग्रवाल से, जो कि शहर की एक विख्यात गायनेकोलॉजिस्ट हैं, साथ में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी में प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि बढ़ती हुई किशोरियों में खान पान के क्या ऐसे तरीके अपनाए जा सकते हैं जिनसे उन्हें समुचित पोषण मिल सके, और क्या ज़रूरत है उनके जीवन में पोषण की?
1: जी दीपशिखा जी, ये जो आपको मैंने बात करी, हमें ये एज है, बदलाव की एज है, बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, तो उनको पोषण भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए
0: जी,
1: और लड़कियों को स्पेशली ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये भावी मदर बनेंगी, आगे जाके अगली पीढ़ी को जन्म देंगी। तो जो सर्वे किए गए हैं, तो हमारे जो भारत की किशोरियाँ हैं, सबसे पहले तो एनीमिया से ग्रस्त पाई गई, खून की कमी बहुत ज़्यादा है, तो इनको खाने पीने में आयरन युक्त चीज़ें, जिसमें कि आपका जो दालें हैं, समुचित दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चना है, सोयाबीन है, मौसम के फल हैं, इन सब का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जो जंक फूड वगैरह है, इसका सेवन कम से कम करें, और हरे पत्तेदार सब्जियां को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बच्चे मुंह बनाते हैं देख के, तो उनको समझाना है कि आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपको खानी है। साथ ही कैल्शियम युक्त आहार, जैसे कि दूध या दूध से जो बने प्रोडक्ट्स हैं, वो भी लें। साथ ही इस एज के बच्चों में डीवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है, तो नेशनल प्रोग्राम भी चलते हैं किशोरियों के लिए, जिनमें उनको आयरन की टैबलेट दी जाती हैं, उनको डीवॉर्मिंग की जाती है, तो इसका भी ध्यान रखें। और साथ ही अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान रखें, क्योंकि आजकल मोबाइल्स टीवीज की वजह से बच्चे बाहर निकलना बंद कर दिए हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चे आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर करें, सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है उनके लिए, उनके हड्डियों के विकास के लिए, तो अपनी एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें बच्चे।
0: डॉक्टर शैली, आजकल किशोरियों में अक्सर देखा है हमने कि ओबेसिटी, पीसीओडी और थायराइड जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में आजकल ये समस्याएं सामने आ रही हैं?
1: जो आपने बात करी पीसीओडी की, ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है
0: जी।
1: जैसा कि अभी हमने बात करी कि बच्चे आजकल मोबाइल्स में, टीवी में, स्क्रीन में बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर रह गई है बच्चों की, और साथ ही खान पीन, जो बच्चे हैं आजकल घर में अगर खाना बनाए तो नहीं खाते, बाहर से मोमोज, पिज़्ज़ाज ये सब खाते हैं, तो जंक फूड इज़ जंक, उसमें कोई आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, तो समझाना ज़रूरी है, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो जो पीसीओएस है वो ओबेसिटी की वजह से भी होता है, तो अगर बच्चा फिजिकली एक्टिव रहेगा, तो अगर पीसीओएस होगा भी तो वो कंट्रोल में रहेगा। तो हमें दो बातों का बहुत ध्यान रखना है, एक तो बच्चे की डाइट, और दूसरा बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, और इसके साथ ही बच्चे के जो हेल्थ मॉनिटर करते रहें, अगर बच्चे के सामान्य रूप से चेहरे पे बाल दिख रहे हैं, या जो उसका पीरियड्स है बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो रहा है, तो समय रहते डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, उसको इग्नोर ना करें।
0: जब आप इरेगुलर पीरियड्स की बात करते हैं, तो इससे आपका तात्पर्य क्या होता है?
1: देखिए, सामान्य जो पीरियड होता है वो होता है हमारा 28 से 35 दिन
0: जी,
1: या माना कि 24 से 35 दिन, तो अगर आपका महीना 24 से 35 दिन के अंदर आ जाता है तो वो रेगुलर है
0: जी।
1: अगर इससे जल्दी आ रहा है या 35 दिन के बाद आ रहा है तो वो असामान्य हो गया। दूसरी चीज़ है फ्लो, पीरियड का जो फ्लो होता है वो 2 से 5 दिन, 3 से 7 दिन तक रहता नॉर्मल है, 5 से 7 दिन तक रहना नॉर्मल है, लेकिन अगर पीरियड आपका 8 दिन से ज़्यादा आ रहा है या 2 दिन से कम आ रहा है, वो भी असामान्य है। तीसरी चीज़ है फ्लो, जो आपका अमाउंट है, अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी आपके अनियमित उसमें आएगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, साइकिल की जो ड्यूरेशन है, जो आपके ब्लीडिंग का अमाउंट है, एंड ब्लीडिंग की ड्यूरेशन है, तो इन 3 चीज़ों का अगर ये नॉर्मल के बाहर आ रही है तो अनियमित हो जाए।

0: करती हैं।
1: जी, अभी आपने बताया कि ब्लीडिंग का बहुत ज्यादा होना भी एक अनियमितता का एक पैटर्न है, तो क्या ब्लीडिंग का कम होना भी अनियमित माना जाता है?
2: अगर 2 दिन से कम ब्लीडिंग हो रही है तो वो असामान्य है, तो उसमें हो सकता है कि बच्चे में कोई हार्मोन्स की दिक्कत, जैसे थायराइड हार्मोन की दिक्कत हो सकती है और कोई हार्मोन की दिक्कत हो सकती है, तो उसमें हमें कुछ चेकअप्स टेस्ट करने होते हैं और उसके बाद वो उसका निदान किया जाता है।
1: जी डॉक्टर शैली, चलते चलते हम चाहेंगे कि किशोरियों के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी कुछ समस्याओं को या ऐसे कुछ लक्षणों को आप इंगित करें जिनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनके दिखने पर एक गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत परामर्श करना चाहिए।
2: यदि किशोरी के चेहरे पर असामान्य रूप से बाल आ रहे हैं, हर्सुटिज्म इसको हम बोलते हैं, तो उसको इग्नोर ना करें, उसमें आके दिखाएं। इसके अलावा बच्चा अगर थका हुआ फील कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा काम में, तो वो एनीमिया से ग्रसित हो सकता है, उसको आके दिखाएं। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, बच्चे को हर 4 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है या क्लॉट्स पास हो रहे हैं, तो उसको तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये प्यूबर्टी मेनोरेजिया की तरफ इंगित करता है, उस पर ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा बच्चे में यदि कोई इन्फेक्शन बता रहा है, बच्चा जननांगों में खुजली बता रहा है या उसको डिस्चार्ज की हो रही है, तो उसको भी इग्नोर ना करें। कई बार बच्चे नहीं समझ पाते मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, या फिर कई बार बच्चे सिंथेटिक कपड़े पहन लेते हैं, अंडरगार्मेंट्स, तो उसकी वजह से भी बच्चों को रैशेस वगैरह हो सकते हैं। अगर उस टाइम इग्नोर किया जाए तो आगे जाकर ये बड़ी समस्या का रूप ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि बच्चों में सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है आजकल के बच्चों को।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर शैली, इतने सारे महत्वपूर्ण सुझावों को आज आपने हमारे सामने रखा, हमारे लिसनर्स के सामने रखा, इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: कार्यक्रम के किसी और अंक में पुनः आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल आज के लिए इजाजत दीजिए मुझे यानी दीपशिखा गुप्ता को। नमस्कार। जय हिंद।

0: की घंटी बजे और कानपुर की धड़कनें हमसे जुड़ जाए। कुछ ऐसा ही रंग लेकर आ गया है आपका पसंदीदा शो हेलो कानपुर। यहाँ बात होगी आपकी, अंदाज होगा अपना और हर पल में होगा मुस्कुराने का बहाना। तो चाहे ऑफिस से लौट रहे हो या छत पर ठंडी हवा का मजा ले रहे हो, बस फोन उठाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। मैं हूँ आरजे वंदना और आज की इस महफिल में आपके किस्से, आपकी फरमाइशें और आपका साथ बनाएगा इस शाम को और भी खास। तो चलिए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। हेलो कानपुर।
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं?
1: बस मैं बोल रहा हूँ, मुजम्मिल अहमद।
0: मुजम्मिल जी बताइए क्या हाल चाल है? बहुत गर्मी कर रखी है आपने भाई।
1: हाँ गर्मी तो होनी चाहिए मौसम में, हर मौसम का अलग केस।
0: अरे बाबा इतनी नहीं होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम सब लोग खड़े खड़े एकदम जले भुने जा रहे हैं।
1: ये इंसानों का पाप है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो इस पाप से कैसे उभरा जाए भाई?
1: उभरने का क्या तरीका है भाई? अपने इंसान अपनी केयर करनी चाहिए,
0: अपनी केयर करनी चाहिए, कुछ धरती की केयर करनी चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए।
1: एग्जैक्टली, पानी की तो बचत करनी चाहिए, दूसरों की भी केयर करनी चाहिए।
0: हाँ
1: पशु पक्षी हैं उनके लिए भी पानी का इंतजाम।
0: बिल्कुल, बहुत ये अब आपने बात कही एकदम काम की, पशु पक्षियों की, ये सब हमारा जो इकोसिस्टम है इसके सब अंग हाँ। हैं, जब इनको नुकसान पहुंचता है तो कहीं ना कहीं कुदरत हमें नुकसान पहुंचाती है।
1: तो ये सब करेंगे तो इन सबको देखकर हमको थोड़ी सी राहत मिलेगी।
0: हाँ बिल्कुल, जब छोटी छोटी छोटे छोटे जीव जंतुओं को हम मदद करते हैं गर्मी में, उनको कुछ सहारा देते हैं, कुछ उनको खाने पीने का रखते हैं, तो बहुत दिल में खुशी होती है, सुकून मिलता है।

0: और एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे सबके पशु पक्षी होते हैं तो और पानी तो रख देते हैं, लेकिन बस एक बार रख दिया भूल गई ना करें, थोड़ी थोड़ी बार बदलते रहे।
1: नहीं, वो भी हमारे घर के, देखिए जो पले हुए हमारे पशु पक्षी हैं वो हमारे घर के सदस्य ही हैं ना
0: जी,
1: वो हमारे सदस्य हैं घर के, तो उनके लिए तो जैसे हम अपने घर के और लोगों को, बच्चों को बोलते हैं जाके पानी पियो, ये खा लो वो खा लो, वैसे उनके लिए तो हमें खुद करना चाहिए, है ना। हम उनको पालते हैं तो पूरा ख्याल,
0: पाले हुए कई बार पली हुई, हम उनको हर दो तीन बार पानी बदलते रहते हैं,
1: बहुत बहुत
0: ज्यादा गर्म ना हो पाए,
1: बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा।
0: आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, बात कर रही हैं। आपको मैं बताऊं, इतने दिन से मिस कर रहा था नंबर के आरजीएस की आवाज सुनने का, जिससे प्रोग्राम चला गया था।
1: जी जी जी, आप लोग, आप हमारे सब नियमित श्रोता हैं तो मिस करना तो बनता है भाई, आप नहीं मिस करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा।
0: बिल्कुल,
1: जैसे हम जो भी रोज मिलते रहता है हम लोगों से, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी जो भी लोग हमसे रोजमर्रा मिलते रहते हैं या कभी कभार मिलते ही रहते हैं फ्रिक्वेंटली, वो अगर एक महीना भी बीच में गैप हो जाए तो बहुत उलझन सी होती है कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तो बहुत अच्छी ये फिर से, हम लोग को सबको भी बहुत खुशी है कि फिर से प्रोग्राम शुरू हो गया है। और चलिए आप अपना गाना बता दीजिए।
0: आप कुमार सानू की आवाज में कोई सा सुनाते,
1: कुमार सानू का कोई भी। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हेलो कानपुर में कॉल की, नमस्कार।
0: थैंक यू मैम, बाय
1: बाय।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो कानपुर।
5: हेलो
4: हेलो
5: हेलो कानपुर।
4: हेलो कानपुर, बताइए कौन बात कर रहे हैं?
5: हम रजनीश कांत सक्सेना, आवास विकास नौबस्ता कानपुर।
4: रजनीश कांत सक्सेना, आपका बहुत स्वागत है रजनीश जी।
5: और
4: क्या करते हैं आप?
5: कुछ नहीं, सीनियर सिटीजन है, घर पे रहते हैं, ब्लाइंड है।
4: अच्छा अच्छा, तो और बताइए क्या हाल चाल है? गर्मी बहुत पड़ रही है।
5: गर्मी पड़ रही है, घर में रहते हैं।
4: घर में, चलिए आप तो सीनियर सिटीजन हैं, वैसे भी बच्चों और इस समय बुजुर्गों को अपना खास ख्याल रखना भी है, और अच्छी बात है, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, खाने पीने पे भी विशेष ध्यान रखिए अपना।
5: खाने का तो विशेष ध्यान रखते हैं।
4: हाँ बिल्कुल रखना चाहिए अपनी अच्छे सेहत और स्वास्थ्य के लिए। और कौन कौन है घर पे आपके?
5: घर में लड़का है, बहू है।
4: अच्छा,
5: बच्चे हैं।
4: अच्छा अच्छा, चलिए तो बच्चों के साथ तो इस समय छुट्टियों में अच्छा धमा चौकड़ी का आलम होगा।
5: और क्या बताए, BCom सेकंड ईयर में है बड़ी वाली।
4: अच्छा,
5: इंटर पास किया है।
4: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा छोटे बच्चे हैं, तो मैंने कहा धमा चौकड़ी हो रही होगी, लेकिन बड़े बच्चे हैं तो वो अपने में बिजी होंगे। जी
5: हाँ, अपने अपने काम में व्यस्त है।
4: हाँ

0: हाँ तो बताइए रजनीश जी, कौन सा गाना सुनवा दें आपको आज?
1: गाना सुनवा दीजिए आप तो भरोसा पिक्चर का है, वो दिल कहाँ से लाऊं जो तेरी याद बुला दे।
0: बहुत खूबसूरत गीत आपने पसंद किया आज के प्रोग्राम के लिए।
1: आपसे बात हो चुकी है एक बार?
0: जी हाँ, पहले बात हो चुकी है, मुझे आपके नाम से ध्यान है, आपके से बात मेरी हो चुकी है। और चलिए सर सुनवाते हैं आपको प्यारा सा ये गाना आपकी पसंद का। नमस्कार।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो, बच्चू गुप्ता बोल रहा है सचिन जी।
0: बच्चू गुप्ता जी, आपका स्वागत है, बताइए कैसे हाल चाल है।
1: बढ़िया है।
0: बढ़िया है, क्या करते हैं आप?
1: कॉस्मेटिक का काम करते हैं।
0: कॉस्मेटिक का काम करते हैं, अच्छा अच्छा, चलिए बताइए। आज आपने फोन किया है हेलो कानपुर के लिए, तो कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: अच्छा ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे हम बोलेंगे, और लेकिन सुनेंगे तो हमको सब लोग रेडियो पर। चलिए सर सुनवाते हैं आपको प्यारा सा ये गाना, आपकी पसंद का। नमस्कार।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर।
0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं पप्पू यादव, मोहल्ला गांधीनगर, यूपी वेस्ट, बदायूं डिस्ट्रिक्ट।
0: बदायूं से पप्पू यादव जी।
1: जी
0: बताइए, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया। आप कौन मैम बोल रही हैं?
0: मैं वंदना तिवारी बात कर रही हूँ।
1: आपसे फर्स्ट बार बात हो रही है?
0: जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल पहली बार बात हो रही है और उम्मीद करते हैं आगे होती रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: बताइए पप्पू जी, क्या करते हैं आप?
1: के अपना ये पशुपालन का काम है।
0: अच्छा, पशुपालन का काम है, तो इस समय तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई होंगी।
1: हाँ मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि कहीं आ जा नहीं सकते। बहुत जिम्मेदारियां होती हैं।
0: बेचारे भोले भाले जानवर हैं, उनका गर्मी में बहुत ख्याल रखना पड़ता है।
1: बहुत ज्यादा।
0: बिल्कुल। कैसे आप करते हैं सारा काम इनका, कैसे सब जिम्मेदारी निपटाते हैं?
1: मैम मॉर्निंग में उठते हैं जल्दी
0: जी,
1: और उसके बाद सब काम होता है।
0: तो अकेले करते हैं या कोई सहयोगी है आपका?
1: नहीं, मम्मी वगैरह।

0: अच्छा, तो पप्पू यादव जी, आप आपके घर में कौन कौन है?
1: मम्मी है, पापा तो एक्सपायर हो गए।
0: अच्छा,
1: और ये भाई वगैरह हैं, ये और भाई की वाइफ वगैरह सब लोग हैं, बच्चे हैं।
0: अच्छा अच्छा, आज हम मना रहे हैं 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स तो सभी जानते हैं हमारे जो जीवन की शुरुआत ही यहीं से होती है, है ना। हर इंसान के जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। और आज का ये जो दिन है, ये माता पिता के प्रेम, त्याग, समर्पण और बच्चों के जीवन में उनका क्या अमूल्य योगदान है, इसको सम्मान देने के लिए हम समर्पित करते हैं, है ना। तो बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस दिन के लिए?
1: जी मैम, ऐसा है, इसमें हमें उनके लिए हमारी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने हमारे लिए इस लायक बनाया है, है ना। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी उनकी जिम्मेदारियां समझे और हम भी उनके साथ निभाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मेडिसिन वगैरह की आवश्यकता है तो जरूर हम साथ में लेके जाएं। हाँ, साथ में लेके आए।
0: वैसे आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में परिवारों के पास तो एक दूसरे के लिए समय बहुत कम होता जा रहा है।
1: बहुत कम हो रहा है। पता नहीं मैम ये क्या हो रहा है कि सब जगह ऐसा ही हो रहा है कि माँ बाप को बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, और उनको ये पता नहीं है कि हमें भी इसी एज में आना है,
0: कह सकते हैं आप। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि जो बहुत ज्यादा भौतिकवादी हम हो गए हैं, भौतिकता हमें घेर रही है, इस वजह से हम अपनों से दूर हो रहे हैं।
1: अपनों से दूर है, नफरत आदमी के एक बार कोई बात हो जाती है वो माइंड में बैठा लेते हैं, फिर उसी को लेके चलते हैं।
0: सहन शक्ति खत्म हो चुकी है हम लोगों की। रिश्तों के प्रति जो एक प्रेम भावना होती थी कि चलिए कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दिया लेट गो करिए, वो चीज अब थोड़ी सी इग्नोरेंस कम हो गई। इग्नोरेंस अदर जगह, एक और दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है कि अब हम लोगों को इग्नोर करने लगे हैं।
1: जी जी,
0: है ना। तो आज ये जो दिन हम मना रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, तो इसमें हम सभी आपकी तरफ से भी और आपके द्वारा भी हम पप्पू यादव जी अपने सभी सुनने वालों से कहना चाहते हैं कि माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बहुत त्याग करते हैं और अक्सर अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया करते हैं। तो आज का दिन सिर्फ उन्हें धन्यवाद आज के दिन नहीं कहना है, बल्कि आज हमें ये प्रण लेना है कि हम उनके साथ भी अपने पूरे दिन का 1% कम से कम समय तो इतना निकालें कि वो समझ सकें कि हमारे बच्चे बहुत कामों में बिजी होने के बाद भी उनके पास हमारे लिए वक्त है। भले ही 15-20 मिनट आप उनके पास बैठिए, उनसे बात करिए, लेकिन अपना थोड़ा सा स्नेह उनको दीजिए,
1: बहुत जरूरी है मैम। जैसे मूवी आई थी बागवान,
0: जी,
1: तो उसमें भी हमारे संसार को देखकर ही मूवी उन लोगों ने बनाई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखिए, फिल्में जो होती है वो समाज का ही तो आईना होती है।
1: आईना होती, मैसेज था उसमें।
0: बिल्कुल मैसेज था, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने इससे सीख ली होगी और बहुत लोगों ने इसको इग्नोर किया होगा।
1: अब देखिए मैम, उसमें ये दिखाया एक अनाथ बच्चा था, उसने उनको इतना प्यार दिया, जो पेट के बच्चे थे, अपने सगे थे, उन्होंने उनका प्यार भी बांट दिया और अलग अलग कर दिया था।
0: तो इसके लिए बस हम अपने सभी, हम सभी मनुष्यों को ये सोचना
1: चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी ना करें जीवन में।
0: हाँ, अपने करें। आपने भी एक बात कही थी कि इस दौर से सबको गुजरना है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा हम अभी आज पौधा लगा रहे हैं, उसी के तो फल हमें काटने होंगे, है ना?
1: वही काटने होंगे।
0: बिल्कुल। तो बहुत अच्छी आपने बात कही पप्पू जी। और बताइए, अब गाना भी बता दीजिए कोई बहुत ही खूबसूरत सा।
1: जी, बहुत खूबसूरत सा गाना है मैम, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ।
0: जी चलिए ठीक है पप्पू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गाना। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेलो कानपुर में कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू।

0: जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: हेलो कानपुर,
3: हेलो
2: कानपुर,
3: हेलो कानपुर
2: जी, जल्दी आइए बात करने भाई।
3: अरे नहीं, हमारी छोटी बहन कोमल बात करें।
2: जी जी, अच्छा बताइए, जल्दी बुलाइए।
4: हेलो
2: हेलो,
4: नमस्ते
2: नमस्ते, कौन बोल रही है, अपना नाम बताइए।
4: जीवन कोमल बोल रहे हरदोई से।
2: हरदोई से, चलिए कोमल, क्या करते हो आप?
4: जीवन पढ़ाई करते।
2: कौन सी क्लास है?
4: अच्छा, पाँच।
2: पाँच, अरे तो इस समय तो मजे मजे हैं, छुट्टियां चल रही हैं।
4: यस मैम।
2: है ना, कब तक छुट्टियां हैं?
4: 25 जून को खुलेगा।
2: अच्छा, तो क्या इरादा है, छुट्टियों में क्या धमा चौकड़ी करनी है?
4: कुछ नहीं मैम।
2: कुछ नहीं, अरे भाई ऐसा कैसे चलेगा, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे? थोड़ी तो शैतानी करो भाई, पता तो चले छुट्टियों में घर पर हैं बच्चे। तो बताइए क्या करेंगे शैतानी, आज तो बताना पड़ेगा आपको भाई।
4: हेलो,
2: हाँ क्या शैतानी करनी है बताओ तो।
4: शैतानी कुछ नहीं करनी है।
2: शैतानी नहीं करनी है, आप भोले भाले सीधे बच्चे हो क्या?
4: जी मैम।
2: अरे बाबा शैतानी करो भाई, थोड़ी बहुत जब बड़े हो जाओगे तब शैतानी करने नहीं मिलेगी।
4: अच्छा, मैं अपने भाई को परेशान कर।
2: हाँ ठीक है ठीक है, आप खूब शैतानी करिए, खूब मस्ती से रहिए और खूब मजे करिए छुट्टी में, और कुछ अच्छा सीखिए भी, ठीक है? छुट्टियों में अपने होमवर्क, जो हॉलीडे होमवर्क मिला होगा उसको करने के साथ साथ कुछ अच्छा सीखिए, जैसे म्यूजिक अगर आपको पसंद है म्यूजिक सीखिए, डांस सीखिए, कुछ भी सीखिए जो आपको पसंद है, ठीक है? अपनी मम्मा से अपने पापा से कहिए कि आपको सिखाएंगे। पढ़ाई करना अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है
4: जी।
2: अच्छा लगता है
4: जी।
2: कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है?
4: विज्ञान।
2: अरे वाह, विज्ञान पसंद है
4: जी।
2: चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें भविष्य का एक नया साइंटिस्ट हमको लग रहा है तैयार हो रहा है। चलो आपके बहुत अच्छे फ्यूचर की हम कामना करते हैं, आपको बहुत सारा शुभकामनाएं, आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से पढ़िए लिखिए और अपना भविष्य संवारिए।
3: मैम मुझसे कुछ कविताएं सुन लीजिए और छोटी भी भतीजी है उससे भी बात कर लीजिए, अच्छा लगेगा ना।
2: अच्छा, तो जल्दी से फटाफट एक कविता सुना दो।
4: हिंदी है भावों की गंगा बहती, इसमें रसधार है मातृभूमि की आबादी, हमको इससे इसमें गीत निराले मिलते भरी कल्पना, नई उड़ाने पढ़कर ही इसको पहचाने।
2: पढ़कर ही इसको पहचाने
4: जी मैम।
2: बिल्कुल, तो हिंदी से प्रेम अगर होगा तो आप इसको पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तो और प्रेम बढ़ेगा, है ना
4: जी।
2: हिंदी
4: जी
2: बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है और हमें हिंदी से बहुत प्यार है। आपने बहुत प्यारी कविता सुनाई कोमल, आप बात करी। हाँ बताइए।
3: हमारी एक छोटी भतीजी वो भी बहुत बात करना चाहती, वो भी देखो अभी आपको कुछ सुनाएगी, आप चलो बोलिए, नाम पूछिएगा मैम, बताइए।
5: हेलो, कौन बोल रहा है, क्या नाम है आपका?
6: रोहिणी वर्मा।
2: रोहिणी, आप कितने बड़े हो?
6: पाँच।
2: 5 इयर्स के हो, पढ़ाई करते हो?
6: हाँ मैम।
2: कौन सी क्लास में? 1 में जाते हो?
6: हाँ।
2: ओके, चलो हमको फटाफट कुछ सुना दो।
3: हाँ, कविता सुनाइए।
6: लकड़ी की गाठी, गाठी पे घोड़ा, घोड़े के दम पे मारा घोड़ा, दौड़ा दौड़ा दम उठा के दौड़ा।
2: वेरी गुड, क्लैपिंग कर रही हूँ मैं यहाँ से। बहुत प्यारी आपने एक पोयम सुनाई, बहुत प्यारा लगा, आपकी आवाज बहुत स्वीट स्वीट है। ठीक है, चलिए मामा आपको सुनवा रहे हैं, यही लकड़ी की काठी सुना देगा ना, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ,
6: सुना दो।
2: चलो आपकी प्यारी सी आवाज के साथ अब मिला रहे हैं फटाफट से ये वाला गाना, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, सुनो इसको और एंजॉय करो। बाय बाय।
3: जी बहुत अच्छा लगा बात करके, मैं राजेश विद्यार्थी कुर्सा था, तभी घर ही आया था।
2: अच्छा अच्छा, मैं वंदना बात कर रही हूँ।
3: जी जी वंदना तिवारी, आपका प्रोग्राम सुना है
2: जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, नमस्कार,
3: धन्यवाद।

0: हेलो कानपुर।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: जिला सागर, तहसील बंडा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। करण सिंह।
0: करण सिंह क्या करते हैं? करण,
1: हाँ, किसान बाड़ी का काम करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, बताइए गाना कौन सा सुनवा दें?
1: चल मेरे भाई का।
0: कौन सा?
1: थोड़ी सी, ठीक है। धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो कानपुर।
2: हेलो।
1: हेलो, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं एडवोकेट विवेक वर्मा बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका हेलो कानपुर में। बताइए क्या हाल चाल है?
2: सब ठीक है, बढ़िया।
1: बढ़िया है, गर्मी अच्छी पड़ रही है?
2: बहुत गर्मी पड़ रही है। 9 दिन तो पड़ेगी, नौतपा चल रहा है।
1: हाँ, नौतपा चल रहा है, इस समय बहुत क्रेज है, सबको पता है नौतपा चल रहे हैं।
2: जी जी जी, सबको पता है।
1: सोशल मीडिया ने बहुत अवेयर कर दिया सबको।
2: जी जी जी जी।
1: और विवेक, कौन कौन है घर पे आपके?
2: मेरे घर पे मेरे 2 बच्चे है, वाइफ है।
1: अच्छा अच्छा, तो बच्चों की छुट्टियां हैं और बच्चे घर में मस्ती कर रहे हैं खूब, है ना?
2: जी जी, सब मस्ती कर रहे हैं।
1: चलिए, तो आपने बताया आप एडवोकेट हैं, है ना?
2: जी, एडवोकेट।
1: तो इसके अलावा और क्या शौक है आपके?
2: कोई शौक नहीं है, सिर्फ गाना सुनने का शौक है। कोई पुराना गाना सुना दीजिए।
1: अच्छा, तो गाना बता दीजिए अपने मन का फिर हमें।
2: कोई भी पुराना धर्मेंद्र का गाना सुना दीजिए, जट यमला पगला दीवाना।
1: अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपको सुनवाती हूँ जट यमला पगला दीवाना। ये गाना आप धर्मेंद्र जी को डेडिकेट कर रहे हैं ये गाना।
2: जी, जी।
1: और किसी का नाम लेना चाहेंगे, किसी को डेडिकेट करेंगे?
2: मैं

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं गुजरात से नयन बात कर रहा हूँ।
0: गुजरात से नयन जी?
1: जी।
0: अच्छा बताइए, क्या हाल चाल है आपके?
1: जी एकदम ठीक, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं अखबार में पत्रकार।

0: अच्छा अच्छा पत्रकारिता करते हैं आप
1: जी।
0: बढ़िया, और बताइए घर में कौन कौन है?
1: घर में माता पिता है, वाइफ है, बेटा है।
0: अच्छा अच्छा चलिए, हैप्पी फैमिली है आपकी। और नयन जी, आज आपने हेलो कानपुर में कॉल करी है, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज का जो ये दिन है, 1 जून का, 1 जून को हम मना रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। तो ये दिन जाहिर सी बात है माता पिता के प्रेम, त्याग और समर्पण और बच्चों के जीवन में जो उनका अमूल्य योगदान है, इसको सम्मान देने के लिए समर्पित है। तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे सभी सुनने वालों को?
1: मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है
0: जी,
1: वो एकदम पहले से ही परिवार से बनी हुई है, परिवार से जुड़ी हुई है।
0: जी हाँ।
1: हमारी संस्कृति में जैसे कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम,
0: जी हाँ।
1: तो एक पारिवारिक भावना है, बच्चों के लिए स्नेह होता है, माता पिता के लिए आदर होता है, और जो माता पिता और गुरु इनका सम्मान करने वाला ये देश है।
0: बिल्कुल, हमारी संस्कृति है
1: जी, और इसी संस्कृति पर हमारा देश ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहे और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना जो है वो निरंतर बनी रहे, लोगों में आपस में प्यार, एकता और एक दूसरे के प्रति स्नेह सम्मान बना रहे। ये मैं सभी लोगों से विनती है मेरी की।
0: जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। आज हम वैसे तो ये माता पिता के लिए ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मना रहे हैं, लेकिन आपने जो बात कही उसमें हम सभी को लेकर चल रहे हैं, और जब सभी को लेकर चलते हैं और एक कुटुंब की बात होती है तो कुटुंब की शुरुआत ही माता और पिता से होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी बात हमें माता पिता से फिर से जोड़ रही है। और चलिए इसी बात पर हम एक अच्छा सा गीत आपके द्वारा सुनवाना चाहेंगे अपने सभी श्रोताओं को। बताइए कौन सा गीत आज आप फरमाइश कर रहे हैं?
1: माता पिता के लिए है, परिवार के लिए है,
0: कोई भी गाना तो, जो आपको बहुत पसंद हो।
1: तो तुझे सूरज कहूँ या तारा,
0: तुझे सूरज कहूँ या चंदा, बहुत ही
1: करेगा रोशन जग में मेरा रात दुलारा।
0: हर माता पिता की यही एक सपना होता है,
1: और वही बेटा आगे बढ़कर वो भी कभी ना कभी पिता बनने वाला है।
0: जी,
1: तो जो स्नेह दुलार उनको मिला है वो उनकी अगली पीढ़ी को मिले।
0: जी जी, वो ट्रांसफर होना चाहिए जरूर से अगली पीढ़ी में, और अगली पीढ़ी को भी चाहिए कि अपनी पीछे वाली पीढ़ी का हाथ पकड़ के ही चले।
1: बिल्कुल,
0: है ना। चलिए नयन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे हेलो कानपुर में कॉल करी, और आपको हम फिर से धन्यवाद देते हैं। और करते रहिएगा कॉल, जुड़े रहिएगा हमारे साथ FM रेनबो कानपुर पर, आप 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर।
1: थैंक यू।

हाँ तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम हेलो कानपुर। आप सुन रहे थे अपनी दोस्त वंदना के साथ। तो दीजिए अब इजाजत इस कार्यक्रम से। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर।
1: मेल मिलाप।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों और पूर्व सैनिकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए, साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और अराजकता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिना जाति और धर्म के भेदभाव के विकास परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जिनका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आज अपने कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर लेखा जोखा रखा। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया गया, इससे अपराध में कमी आई है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत

सभी थानों पर शक्ति केंद्र बनाया गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक अपराधों जैसे दहेज, घरेलू झगड़े के बारे में लोगों को अवेयर किया गया है। महिला अपराधों में भी काफी गिरावट आई है। शिकायतों की थाने व चौकी स्तर पर जवाबदेही तय की गई है। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश में आज से 7 जून तक सभी गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गो संवर्धन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि देसी गायों को पालने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की जाए। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को कार्यस्थल प्रबंधन और संगठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 5S प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि इस प्रणाली अपनाने से न केवल कार्यक्षमता और स्पष्टता में सुधार हुआ है, बल्कि रेल कर्मियों के लिए अधिक सकारात्मक व तनाव मुक्त कार्य वातावरण तैयार हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

5:04 हो गए हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, और आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम FM टॉप 10 में। यह खूबसूरत सा प्रोग्राम ऐसे टॉप 10 सॉन्ग्स को लेकर के आता है जो आपको कुछ एक खूबसूरत से इंडेक्स को दर्शाते हैं आपके सामने। हो सकता है वो किसी हफ्ते के खूबसूरत टॉप 10 हो सकता है किसी एक जॉनर के हों, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर समय के हों। ये खूबसूरत से टॉप 10 सॉन्ग्स आपको ले जाते हैं एक अलग सी दुनिया में। जी, आपका पसंदीदा शो है FM टॉप 10 और मैं आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ जुड़ गई हूँ। और टुडे वी आर काउंटिंग डाउन द टॉप 10 रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑफ द 2000s। जी हाँ, आपको ले चलने वाले आज बॉलीवुड संगीत के सुनहरे दौर में, जब मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं की जाती थी बल्कि खूबसूरत धुनों, दिल को छू लेने वाले अल्फाजों में भी वो मोहब्बत होती थी। आज का हमारा खास जो खूबसूरत प्रोग्राम है, सेगमेंट है, ये जो खूबसूरत पेशकश है, टॉप 10 रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ द 2000s, 2000 के दशक के खूबसूरत 10 गाने आज आपके प्रोग्राम में लेकर के आई हूं मैं। तो नंबर 10 से शुरू करें। अब याद रखिएगा, ये खूबसूरत रोमांटिक गाने हैं और इस खूबसूरत शाम में आपको किसी और तरफ भी ले जा सकते हैं। ये खूबसूरत सा गाना नंबर 10 आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं लेकर के नंबर 9।

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर जो आया था, ये था आज के प्रोग्राम एफएम टॉप 10 का नंबर 10th गाना। लेकिन बिना देरी के खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर जो कि है आज प्रोग्राम एफएम टॉप 10 का नंबर 9th।

पाँच बज करके 15 मिनट और ये खूबसूरत सा प्रोग्राम चल रहा है और ये जो अलग सा एहसास है ये है 2000s के सॉन्ग्स का खूबसूरत सा सिलसिला। ये खूबसूरत फीलिंग आपको मिल रही है FM टॉप 10 में, जहां हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 गाने आज खास सेगमेंट में 2000 के मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स में। नंबर 9th अभी आपको सुनाया था, अब आपके रेडियो सेट पर आने वाला है नंबर 8th सॉन्ग। खूबसूरत, रोमांटिक और दूसरी दुनिया में ले जाने वाला। फिर से ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है FM

हाँ, जब प्यार करने वाले के दिल में कोई ना कोई गीत बसता था, जब इश्क की कहानी कभी जरा जरा बनकर गुनगुनाती थी तो कभी मेरे हाथ में बनकर, ख्वाबों को हकीकत का रंग देती थी। इन गीतों में प्यार था, इंतजार था, तड़प थी और वो एहसास थे जो आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने पहली बार सुनने पर लगे थे। आप सुन रहे हैं ना ये गीतों का, यादों से भरे इस खूबसूरत सफर का जो चल रहा है। इस यादों के सफर को, इन गीतों के सफर को एंजॉय कर रहे हैं आज आप प्रोग्राम FM टॉप 10 में। ये जो खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे, लम्हा लम्हा गैंगस्टर से, ये था आपके रेडियो सेट पर नंबर 8। लेकिन ये खूबसूरत सा रोमांटिक अगेन, जिन लाइनों को कहा था गीतों के बारे में, उन्हीं गीतों में से एक, रूहानी आवाज, नंबर 7 आपके रेडियो सेट पर। एंजॉय करिए, तुरंत वापस आते हैं नंबर 6 लेके।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

ये खूबसूरत सा गाना आपने सुना था अपने रेडियो सेट पर, और ये खूबसूरत रूहानी आवाज आप सुन रहे थे सोनू निगम की, और ये जो आवाज थी ना आपको बता रही थी कि ये FM टॉप 10 की लिस्ट में आज नंबर 7th पे गाना था, और नंबर 6th गाना आपकी रेडियो सेट पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है, और अदनान सामी का ये ट्रैक है, और बहुत दिनों बाद इसे हम भी सुन रहे हैं, लेकिन इस लिस्ट में इस गाने का होना बनता ही था, और बिना देरी के आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से रोमांटिक हिट को।

और नंबर सिक्स, ओह नंबर सिक्स तो हम सुन चुके, इतना खो चुके हैं हम, इतना गुम हो चुके हैं हम इस आज के सेगमेंट में, आज के एफएम टॉप टेन में, कि हम तो भूल ही गए कि हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं नंबर फाइव, नंबर फिफ्थ की तरफ। बंटी और बबली से ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर आ रहा है। दो खूबसूरत आवाजें, वो खूबसूरत दौर और वही खूबसूरत फीलिंग। बस आज का एफएम टॉप टेन यही तो कह रहा है इसी धुन की तरह। ट्यून इन करके रखिए और ये रहा आपके रेडियो सेट पर नंबर फिफ्थ आज के एफएम टॉप टेन का।

और ऐसे बंटी की बबली हुई और वो रोमांटिक दौर जो जो जो जो हम आज जिसकी सैर कर रहे हैं, जो हमें ले जा रहा है एक अलग सी दुनिया में, उस प्रोग्राम का FM टॉप 10 का नंबर 4th आपके रेडियो सेट पर ये आया बिना देरी के। कितना खूबसूरत है ये गाना और कितना हिट हुआ था उस समय, आज भी इसका एहसास ऐसा ही है। सुनिए, एंजॉय करिए, वापस आते हैं नंबर 3rd लेकर।

बेशक ये खूबसूरत सी आवाज आपके कानों में गूंजती रही है और दशक हो गए कई, ये आवाज आपके कानों में अब भी गूंज रही है और ये खूबसूरत सी आवाज गूंजती रहेगी। और ये आवाज है इन गानों की जो आज हम लेकर के आए हैं FM टॉप 10 में। और खूबसूरत गानों के इस सेगमेंट में आज के FM टॉप 10 में हम तो बड़ी जल्दी पहुंच गए नंबर 3 पे। Yes, and this is your 3rd song. आज के FM Top 10 का number 3rd, Top 3.

5:51 हो गए हैं और अब हम पहुंच गए हैं टॉप सेकंड सॉन्ग की तरफ को, जरा जरा करके धीरे धीरे. और ऐसे ही खूबसूरत गानों का ये सेगमेंट आज का एफएम टॉप 10 खूबसूरत तरीके से हमें लेकर के आया है एंड तक. लेकिन टॉप सॉन्ग को सुनने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, ट्यून इन करके रखना पड़ेगा. लेकिन ये जो धुन बज रही है पीछे, ये है आज के एफएम टॉप 10 का टॉप सेकंड सॉन्ग. टॉप सॉन्ग तक पहुंचने के लिए इसे सुनना है पहले. लेकिन सुनना क्यों है, इंजॉय करना है. इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी. ये रहा टॉप

5:54 हो गए हैं और ये खूबसूरत सफर अब वाइंड अप होने की तरफ को बढ़ चुका है। और 5:54 का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि अब छुट्टी की जाए, लेकिन छुट्टी उसके साथ की जाए जो सबसे खूबसूरत जायका हो उसके बाद। और जायका खूबसूरत होता है, हाँ ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत होता है, तो उसके बाद छुट्टी की जाए। तो ये वक्त है वाइंड अप करने का, लेकिन आज के एफएम टॉप 10 का टॉप सॉन्ग आपके रेडियो सेट पर, एंड आई मस्ट से दिस सॉन्ग इज शो स्टॉपर। और ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आता है, और इसी के साथ आज के एफएम टॉप 10 का सफर यहीं होता है खत्म। अगला प्रोग्राम आपका अपना, आपके अपने शहर की बात शाम अवध। मुझे दीजिए आप इजाजत, अगला प्रोग्राम आपके साथ में फिर रहूंगी। ट्यून इन करके रखिए 100.7 एफएम रेनबो। ये रहा आज एफएम टॉप 10 का नंबर 1 शो स्टॉपर सॉन्ग आपके रेडियो सेट पर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल की तरह चिलुआ ताल घाट भी पर्यटन के साथ रोजगार का केंद्र बनेगा। इसके लिए घाट पर 7 कियोस्क बनाए गए हैं। 20 करोड़ 39 लाख रुपए से चिलुआ ताल के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पर्यटन विभाग के उप निदेशक राजेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार चिलुआ ताल घाट पर एक तरफ लोग मनोरंजन करेंगे तो वहीं दुकानों पर जायके का आनंद भी ले सकेंगे। लोगों को बोटिंग करने की भी सुविधा यहां मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन की ओर से आज जारी आदेश में प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है। इसी प्रकार प्रभारी निदेशक वैकल्पिक एवं साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। रामपुर के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के साथ मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के बिंदुओं की समीक्षा की। बैठक में विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, विभागीय प्रगति और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पारदर्शिता एवं तत्परता के साथ पहुंचना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानपुर देहात में आज मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 के अंतर्गत विधायक रसूलाबाद पूनम शंखवार और जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस सेवा तिस्ती रसूलाबाद से कन्हीजरी सुरूरा होते हुए अकबरपुर माती तक संचालित होगी, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ एवं सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को और अधिक

मजबूती मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। कई दिनों से रुक रुक कर यहां वर्षा हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम। FM Rainbow।
2: नमस्कार, आदाब और गुड इवनिंग। 6:04 हो गए हैं और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ। मैं चंद्रकला जुड़ गई हूँ आपके साथ और ये आगाज है अभी प्रोग्राम शामे अवध का। 6 से 7 बजे तक आप सुनते हैं आपका अपना प्रोग्राम शामे अवध, और इस प्रोग्राम में बात होती है इस खूबसूरत धरती अवध की शाम की। और इस समय जो मौसम है, जो करवट ली है मौसम ने, इस मौसम में ऐसा एहसास बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल से होता है। इतनी अच्छी हवाएं इस महीने, बहुत मुश्किल से। और किसी समय इस तरीके की हवाओं का, इस तरीके की सुकून भरी ठंडक का और ऐसी ठंडी शामों का, उसके बारे में सोचने का, इस खूबसूरत ताजी ठंडी हवा की उम्मीद करने का बहुत कम कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन इस समय ये मौसम है और इसी मौसम में, इसी खुशनुमा माहौल में और ये थोड़ी थोड़ी ठंडक भरी हवाओं में आपके साथ ये प्रोग्राम जो शुरू हो चुका है शामे अवध, ये लेकर के आया है आपकी ज़मीन की, आपकी शाम की, आपके शहर के कोने की खबरें और खूबसूरत एंटरटेनमेंट। आपकी खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है। आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। आप ट्यून इन करके रखिए, तुरंत वापस आते हैं।

आपके शहर में, आपके धरती में जो सुकून है इस समय, आपकी शाम जो खुशनुमा है इस समय, और जो ठंडी ठंडी थोड़ी सी बयार आप थोड़ी सी जून के महीने में इतनी अच्छी बयार महसूस कर पा रहे हैं, उसकी मेहरबानी है। किसकी मेहरबानी है? मौसम की मेहरबानी है। और उसी के साथ एक बात आपको बताएं कि राजधानी में अपने मौसम के करवट लेते ही एक चीज की डिमांड कम हो गई है। सोचिए वो क्या चीज होती होगी जिसकी डिमांड मौसम सही होते ही कम हो गई। देखिए बीच में हम लोग बिजली कट से कितना परेशान थे, और जो मौसम के बदलते ही डिमांड घटी है वो है बिजली की। आपको पता है बिजली की डिमांड एकदम से 600 मेगावाट एम्पियर कम हो गई है। 27-28 मई को बिजली की डिमांड लखनऊ में 2196 मेगावाट के आसपास थी, और सबसे ज्यादा आपको पता है गोमती नगर के लोग सबसे ज्यादा बिजली यूज कर रहे थे, 192 मेगावाट एम्पियर बिजली। और तापमान कम होते ही बिजली की डिमांड जो है 30 मई को यानी कि परसों 1582 हो गई। सोचिए 2196 से 1582 हो गई। 31 मई को यही बिजली की खपत 1582

0: 500 21 हो गई। आप समझिए अगर मौसम थोड़ा गिरता जाए तो बिजली की जो खपत है वो ऐसे ही मतलब बढ़िया होती जाएगी। नहीं, कहने का मतलब ये है कि मौसम तो ठीक है, खुशखबरी है, लेकिन ये जो ऊर्जा है इसका संकट जो है ना गहराए, इसके लिए आप थोड़ा सा अननेसेसरी बिजली का इस्तेमाल कम करें। पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, और आपको जल्दी से बाहर बेल किया, कोई गेस्ट आ गई दूसरे रूम में जाना है या किसी ने बुलाया, आप कमरे का कूलर एसी पंखा ऑन करके चले गए, खुला छोड़ के चले गए। और कई कई बार तो आप तुरंत गए तुरंत आने के लिए, लेकिन आए नहीं, आपको लग गए घंटों, डेढ़ घंटा दो घंटा, फिर आए और फिर आपने बोला अरे बिजली तो खुली रह गई, एसी तो ऑन ही रह गया, कूलर तो चला ही रह गया। लेकिन आपको चिंता इस चीज़ की नहीं होती है कि ये ऊर्जा जो है वेस्ट हो रही है, एनर्जी जा रही है, बर्बाद हो रही है। चिंता आपको इस बात की थी कि बिजली का जो बिल है ये कौन भरेगा, कौन भरेगा इतना बिजली का बिल, ये आपको चिंता थी। हालांकि आपको कहने का मतलब ये है कि आप समझदार हैं, अन्यथा अननेसेसरी आप बिजली को इस्तेमाल ना करें। अगर बाहर निकलें तो बंद कर दें, कूलिंग तो हो ही रही है, जब आप बैठे दो दो तीन तीन इक्विपमेंट्स आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, जितने से हो सकता है गुजारा उतना करने की कोशिश करें, कितना अच्छा होगा। अब सोचिए खपत भी कम हो रही है और मतलब इसी तरीके से छोटी छोटी खुशियां तो मिलती ही रहती हैं। आपके रेडियो सेट पर एक गाना भेज रहे हैं, उसे सुनिए, उससे खुश होइए, तुरंत वापस आते हैं और बात करते हैं और क्या नया है, क्या है नई बात।
1: Listen to me, baby. Say, ooh, la, la, la.

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

6:24 हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है शाम में अवध, आपके दोस्त चंद्रकला आपके साथ। इस खूबसूरत शाम में आपसे यही कहूंगी कि अगर आप हमें फोर व्हीलर में सुन रहे हैं तो यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें, ये जो दुर्घटनाएं हैं इसके जिम्मेदार ना बने, अपनों का ख्याल रखें, अपनों के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें और यातायात नियमों के साथ साथ अपनी सुरक्षा का सोचें। आप सुरक्षित हैं तभी आपके सुरक्षित होने से आपके अपनों में सुरक्षा का भाव है। आप घर लौट रहे हैं तो भी जल्दी ना करें और बाहर जा रहे हैं तो भी जल्दी ना करें, क्योंकि आपने 100.7 FM रेनबो को ट्यून किया है और प्रोग्राम भी आपकी जमी का, आपकी सरजमी का है। अवध का प्रोग्राम है, शाम में अवध है और इस खूबसूरत शाम को आप खुशनुमा ही बनाए रखें। कुछ नियमों का पालन करते हैं ना अगर आप, तो आपके चेहरे पर अलग सा नूर होता है, कॉन्फिडेंस होता है। ढेर सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, रोज तो आपको याद दिलाया जाता है। ट्रैफिक नियमों के साथ साथ ये आपको याद दिला दिया है, बस ये है मौसम का हाल आपको बताने वाले हैं तुरंत। मौसम का हाल ये है कि आज 1 जून है, आपने देखा ही है, आज थोड़ा बहुत राहत तो थी लेकिन कल फिर से मौसम करवट लेने वाला है, ऐसी संभावना है, ऐसा लग रहा है, ऐसा मौसम विभाग ने बोला है कि 2 जून को फिर से थोड़ी सी गर्मी होगी, समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा और सहना पड़ सकता है। हालांकि ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, जितना दिया है ऊपर वाले ने वो भी क्या कम दिया है। जून के महीने में ऐसी हवा और ऐसी ऐसी शाम कहां उम्मीद कर रहे हैं आप, चिपचिपी गर्म एकदम उबलती हुई शाम होती थी, लेकिन अवध की शाम की बात कुछ और है। हालांकि मैंने आपको टेम्परेचर बढ़ने की खबर दी है लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इससे बहुत ज्यादा टेंशन ना ले रहे हो, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ अपडेट्स और हैं आपके लिए, आपके शहर की, बस ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो। ये रहा आपका अपना गाना आपके रेडियो सेट पर।

एक अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी, अगर आपके जानने में कोई है या आप ही हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो आपको बता दें डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 8 से 10 जून तक यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा होने वाली है। आपको बता दें कि 8, 9 और 10 जून को आपकी लिखित परीक्षा यूपी पुलिस की होने वाली है, कांस्टेबल की लिखित परीक्षा। ध्यान रखिएगा और अपना एडमिट कार्ड जो आपको निकालना है वो देख लीजिए। जो अगली अपडेट ये है कि इस समय ट्रैफिक का जो हाल है शाम के समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, खासकर उन जगहों पर जहां पर आप जाते हैं, जैसे फूड वैली है, उस चक्कर में 10-90 की तरफ को काफी लोग चलते हैं। लेकिन ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखना और अपनों के बारे में सोचना हर वक्त इसलिए जरूरी है क्योंकि ओवर स्पीडिंग, ट्रैफिक जाम और गलत टर्न लेने से कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं। कई लोग इन गलत टर्न से और लापरवाही से चलने से बहुत कुछ झेलते हैं, तो इन सब से बचते हुए आपको जाना है, ध्यान रखना है और इस खूबसूरत शाम का इसी तरीके से इंजॉय करना है।

6:46 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध, और ढेर सारी बातें होती हैं आपसे करने के लिए, लेकिन जरूर ये ध्यान रखा जाता है कि आपका इंटरटेनमेंट का जो सिलसिला है वो चलता रहे, कहीं से कोई कमी ना आए, तो इसीलिए खूबसूरत गाने आपके रेडियो सेट पर तो आते ही रहे हैं। अब लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है और दिव्यांग जनों की सुविधाओं का आकलन होने वाला है, मतलब इनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो सरकारी योजनाएं मिल रही हैं, उसका आकलन होने वाला है। और

जो एलिजिबिलिटी एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत आज से लेकर के पूरी की पूरी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजनी है, कितनी सुविधाएं यहाँ पर मिली हुई हैं और कितनी मिलनी है, ये सारी। ये बस इसलिए क्यों हो रहा है, मतलब ये इसके बता रही हूँ उनको दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, पेंशन के लिए उनको इतने कार्यालयों के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए ये सारी व्यवस्था हो रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आकलन किया जा रहा है कि दिव्यांगजनों के साथ इतनी सारी परेशानियां क्यों आती हैं, इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, इसके लिए ये किया जा रहा है। खैर, आपके शहर में बहुत कुछ होता जाता है, जैसे जनता दर्शन लगता है योगी जी का और वो अधिकारियों को बड़ा कड़ा निर्देश देते रहते हैं समय से योगी जी की, भाई कोई समस्या ना हो, कोई समाधान तुरंत मिलना चाहिए, त्वरित मिलना चाहिए, और ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाए और जो जरूरी खबर है आप तक वो पहुंचाई जाए। तो जरूरी खबर आपको पहुंचाने के लिए ये जो गाना है आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, इसके बाद आप तक आती है वो जरूरी खबर।

6:53 हो गए हैं और ये जो समय है ये कह रहा है कि तेजी से आगे बढ़ा जाए। वो गुड न्यूज जो थी आपके लिए वो ये थी कि कई धरने प्रदर्शन हो गया, विरोध प्रदर्शन हो गया, बहुत सारी चीजें करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो विधि शिक्षा है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP लागू करते हुए LLB 3 साल की, 5 साल की, मतलब दो तरह की होती है ना, LLB 3 साल वाली, 5 साल वाली, इसके छात्रों को बड़ी राहत मिली है भाई इतनी मेहनत के बाद। और वो राहत ये मिली है कि आपके अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी LLB के छात्र हैं उनके थ्योरी और जो इंटरनल आपके मार्क्स होते हैं दोनों को मिलाकर 40% प्राप्त करने पर छात्र पास होंगे। मतलब पहले इंटरनल जो आपके मार्क्स मिलते थे, कॉलेज जो आपको मार्क्स देता था 30 नंबर में से 25 नंबर में से, उनका भी महत्व बढ़ाया गया है, समझ रहे हैं आप। मतलब थ्योरी और इंटरनल मार्क्स मिला करके टोटल आपके 40% प्राप्त जब आप कर पाएंगे नंबर, तब आप छात्र, मतलब जो भी हैं पढ़ने वाले, आप पास हो पाएंगे। और साथ ही जो इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है, उनका कॉपी जांचने का तरीका है, उसमें भी बदलाव किया गया है। आंतरिक मूल्यांकन का जो महत्व है उसको बढ़ाया गया है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। तो बस ऑड इवन जितने भी सेमेस्टर जिसमें भी आप हैं उसको बहुत इजी तो आप लेते ही हैं, क्योंकि आपको पता तो है कि अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, चाहे ऑड में इवन में है, आपको पास तो होना ही है, प्रमोट तो किया ही जाता है। सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है ये पास होने के नियमों में किया गया है। तो ध्यान रखिए दोनों अंकों को मिलाकर के, जैसे इंटरनल में भी पास होना होगा, एक्सटर्नल में भी पास होना होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मार्क्स मिला के टोटल आपके 40% मिनिमम होने चाहिए, तभी आप पास कहलाएंगे। और इसके पूरे सेमेस्टर के सब सब्जेक्ट्स में टोटल 45% या उससे अधिक होना अनिवार्य रहेगा। तो बस इसी खबर के साथ आपसे कहती हूँ बाय। और शाम अवध प्रोग्राम का सफर यही होता है खत्म। ये खूबसूरत से गाने के साथ हम आपसे कह रहे हैं बाय, लेकिन टॉप 10 समाचारों के उस पार आपका अपना प्रोग्राम हेलो FM शुरू होगा। तो ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, आप सुनिए यूपी की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल की तरह चिलुआ ताल घाट भी पर्यटन के साथ रोजगार का केंद्र बनेगा। 20 करोड़ 39 लाख रुपए से चिलुआ ताल के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर कहा कि भारत आज विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर निरंतर नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। वाराणसी में आगामी 4 और 5 जून को ब्रिक्स देशों के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक सहयोग और आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, पारदर्शी वितरण व्यवस्था और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक रहे प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आज मीडिया में बातचीत में कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष के 3679 पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में

0: निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, वहीं जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
0: नमस्कार, आदाब और गुड इवनिंग। इस खूबसूरत शाम में आपका स्वागत आपके अपने प्रोग्राम हेलो एफएम में। 7:04 हुए हैं और हेलो एफएम प्रोग्राम ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें आप हमें सीधे हमारे स्टूडियो के नंबर्स पर कॉल करते हैं और फोन करने के बाद सीधे ऑन एयर हमें अपनी फरमाइश बताते हैं जबानी, और उस फरमाइश को हम करते हैं पूरी। और ये है आपका आकाशवाणी लखनऊ रेनबो से सीधा कनेक्शन। आपकी दोस्त चंद्रकला है अभी आपके साथ, और बिना देरी के तुरंत हम देख लेंगे कि पहली कॉल आज के प्रोग्राम हेलो एफएम की किसकी लगी, किसकी जुड़ी हमसे, और उस कॉल के बाद सिलसिला चलता जाएगा। हो सकता है आए उसके बाद आपकी बारी। हेलो
3: हेलो मेरी प्यारी चंद्रकला दीदी, प्यार भरा नमस्कार और गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, अपना नाम बता दीजिए।
3: एफएम रेनबो पे हर वक्त धड़कने वाली चंद्रकला दीदी की छोटी सिस्टर रिंकी और पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: अरे वाह, दीवानों के शहर रायबरेली से।
3: बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एफएम रेनबो के इतने दीवाने हैं कि मैम बता नहीं सकते।
0: चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और हमारी खुशनसीबी है कि आप दीवाने हैं रेनबो के।
3: जी बिल्कुल, और आप लोगों की आवाजें इतनी प्यारी, इतनी क्यूट हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: चलिए, मतलब आपको पूरी संतुष्टि है कि आकाशवाणी ने अच्छी आवाजों की व्यवस्था कर रखी।
3: मतलब हम लोगों का पक्का दोस्त है एफएम रेनबो।
0: तो चलिए, आपकी बातों से तो लग रहा है कि ऐसा आकाशवाणी में जो है अच्छी खूबसूरत आवाजों की भर्ती हुई है। बढ़िया बढ़िया आवाज़ें।
3: क्योंकि मैम आपके तीनों कार्यक्रम सुनते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छे, मतलब तीनों चैनल सुनते रहते हैं, तीनों चैनल के सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सभी अनाउंसरों की आवाजें बहुत प्यारी लगती है।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए रिंकी पिंकी जी, आपसे एक बात, आपने बात की है तो मैं भी आपसे यही बात कहना चाहूंगी कि मतलब ये जो तारीफों के पुल आपने बांधे हैं, इसी तरीके से बांधते रहना चाहिए। पता है जब आप तारीफ,
3: आप लोग इतनी मेहनत से कार्यक्रम करते हो, बता 4-4 घंटे बोलते रहते हो, हम लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहते हो, अच्छे अच्छे गीत भी सुनाते हो, तो हम सभी श्रोताओं का भी कर्तव्य बनता है कि आपके बारे में अच्छा ही बोले और आप लोगों की हमेशा तारीफ ऐसे ही करें।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपकी तारीफ सुनकर के। बाकी भी बता रही हूँ,
3: थे और कॉल भी ट्राई कर रहे थे, मेरी सिस्टर ने कॉल लगाया, लग गया, और आज आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही, तो आपके लिए चाय भी बना के रखी है, पीने के लिए आ जाइए।
0: ऐसा मत कहा करिए, चाय बना के रखिए, हम आ सकते नहीं,
3: क्योंकि मैं अपने हाथों में चाय लिए बैठी हूँ मैम।
0: चलिए कोई बात नहीं, जो मेरे लिए बनाई है आपने वो आप खुद एंजॉय करिए।
3: आप, पता चला था आपके मतलब हाथ में चोट भी लग गई थी, तो आप कैसी हैं?
0: अभी तो ठीक हो रही हूँ, जुड़ने में और चोटों को ठीक होने में समय लगता है।
3: हम लोग दुआ भी करते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ और मस्त हो जाएं।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकी पिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी तारीफ सिर्फ रेनबो की ही नहीं, अपने दोस्तों की, घर वालों की, अपनों की, सबकी तारीफ करते रहनी चाहिए बीच बीच में। तारीफ करने से अच्छा लगता है ना।
3: कहना चाहती हूँ, हम लोग अपने श्रोताओं से इतनी दूर दूर रहते, पर हम लोगों का मतलब एक ऐसा

0: बन गया है, जो मतलब इतनी दूर होते हुए भी नहीं जानते फिर भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं रेनबो के माध्यम से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। और कोई बात आपको कहनी हो?
0: जी नहीं, बस इतनी ही कहनी थी, और बाकी श्रोता भी लाइन में होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी बारी कब आएगी, तो जल्दी से हम सॉन्ग बता देते हैं, कुछ डेडिकेट भी करना चाहेंगे।
1: बिल्कुल आप डेडिकेट कर दीजिए।
0: मूवी का नाम है धड़कन और गीत के बोला तुम दिल की धड़कन में रहते हो ये सॉन्ग सुनना है।
1: ठीक है, ये आपका
0: और
1: गाना,
0: ये गाना स्पेशली आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारी दोस्त है पूनम दीदी, समा परवीन, साहिब अंसारी, महक अंसारी, ममता दीदी, वकील अहमद भाई और जावेद अख्तर सर, विनीत भाई, तिवारी अंकल और मोहम्मद फैज और संजू भाई, बाकी जितने श्रोता सुन रहे हैं सबको स्पेशली डेडिकेट।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
0: दीदी,
1: करके।

0: और हमारी दोस्त है पूनम दीदी, समा परवीन, साहिब अंसारी, महक अंसारी, ममता दीदी, वकील अहमद भाई और जावेद अख्तर सर, विनीत भाई, तिवारी अंकल और मोहम्मद फैज और संजू भाई, बाकी जितने श्रोता सुन रहे हैं सबको स्पेशली डेडिकेट।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: नमस्ते दीदी, बाय बाय।
1: बाय बाय, नमस्ते। तो ये रिंकी पिंकी जी की बात चल रही थी और इनकी फरमाइश जो है अब सुननी पड़ेगी, एंजॉय करना पड़ेगा। ये जो खूबसूरत गीत इन्होंने बोला है इसे सुनते हैं, इनकी फरमाइश पूरी होती है और इस गीत के बाद आपकी होगी फरमाइश की बारी, आप ट्यून इन करिए।

0: अब देखते हैं कि कौन जुड़े अगले श्रोता हमारे साथ फोन कॉल पर. हेलो.
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम.
0: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए.
1: जी, हम गुलफ्सा सिद्दीकी बोल रहे हैं, संडीला से.
0: गुलफ्सा जी, कैसी हैं आप और कैसा है संडीला का मौसम?
1: जी, हम तो बहुत अच्छे हैं. पहले आप बताइए, आप कैसे हैं, आपकी चोट कैसी है?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुलफ्सा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हाल पूछने के लिए. और
1: मैम, संडीला का मौसम तो नहीं बता सकते क्योंकि इस वक्त हम अपने गांव में हैं.
0: अच्छा,
1: तो मेरे गांव का मौसम बहुत अच्छा है.
0: और आपका गांव कहाँ है?
1: जी, ये संडीला से थोड़ा आगे मौलवी खड़ा है, वहीं है.
0: अच्छा,
1: क्योंकि हमारा संडीला में भी घर है, यही यहाँ भी घर है.
0: अच्छा,
1: तो अभी इस वक्त हम त्योहार में गाँव आए थे.
0: अच्छा, तो मतलब
1: हम लोग त्योहार जो है गांव में ही करते हैं.
0: अच्छा, चलिए अच्छा लगा. और क्या बात आप कहना चाहेंगी?
1: जी मैम, फोन लग गया, बहुत खुशी हुई.
0: चलिए, आपकी खुशी बरकरार रहे और आप इसी तरीके से मुस्कुराती रहें. और आपका गाना तो हमने आपकी पसंद का निकाल लिया, और कोई बात?
1: जी मैम, कुछ नाम ले लें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ले लीजिए.
1: जी मैम, सबसे पहले आपको समा परवीर है, साहिब अंसारी है, साजी अंसारी है, मैक अंसारी, निशा अंसारी, ममता गौतम, रोशनी रावत, अमन आसिफ भाई.
0: अच्छा, ठीक है, आपके सारे
1: लोग सुन रहे हैं उन सभी को.
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपके सारे नाम शामिल हो गए और सभी श्रोता आपका जो ये आपने शामिल किया है नाम, ये सब सुन रहे होंगे.
1: जी मैम, थैंक यू.
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए गुलफ्शा. और फिर बात होती है, और गुलफ्शा जी की पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर आप और हम मिलकर सुनते हैं.

7:12 हो गए हैं और इसी तरीके से खूबसूरत फरमाइशें आपकी आती रहेंगी. प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम, आपकी दोस्त चंद्रकला है अभी आपके साथ. और पहली फरमाइश के बाद अब सिलसिला शुरू हो चुका है.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकलविहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री